नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक सम्वत 1948 की भद्रपद मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 सितंबर 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 30 सेकंड्स में प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति

0: आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय ये सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है मीठे पानी में झींगा पालन, संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का।
2: बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें झींगा पालन की। झींगा एक पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग में आने वाला जलीय प्राणी है। किसान भाइयों, भारत में मछली पालन काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है। ऐसे में झींगा मछली पालन के व्यवसाय के प्रति किसानों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। झींगा पालन को आम तौर पर तटीय क्षेत्र में पालना सबसे बेहतर माना जाता था, लेकिन अब तकनीकी सहायता के चलते किसान खेतों में बनाए गए तालाबों में भी झींगा पालन कर सकते हैं। झींगा मछली पालन से किसान 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बने तालाब से 4 से 5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, झींगा

0: का पालन अकेले अथवा अन्य मछलियों जैसे रेहू कतला के साथ किया जा सकता है। चूंकि झींगा नीचे स्तर पर रहने वाला प्राणी है, अतः इसके तालाब में कॉमन कार्प या मृगल का संचयन कम मात्रा में करना चाहिए। मटियाही या दोमट मिट्टी वाले एक एकड़ या इससे छोटे तालाब झींगा पालने के लिए उपयुक्त है। ग्रामीण भाइयों, तालाब की तैयारी की अगर हम बात करें तो झींगा के बीज संचयन करने के पूर्व तालाब की सफाई करवा लेनी चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार की खाऊ मछली या हानिकारक कीड़े नहीं रहें। तत्पश्चात मिश्रित मत्स्य पालन के पूर्व जिस प्रकार तालाब की तैयारी की जाती है उसी प्रकार से तालाब की तैयारी कर लेनी चाहिए। उक्त मछली को छिपने के लिए बांस, झाड़, पुराने टायर वगैरह तालाब में डालना चाहिए। ग्रामीण भाइयों, मत्स्य बीज संचयन की केवल झींगा पालन तकनीक में 20,000 झींगा के बीज प्रति एकड़ के दर से संचयन किया जा सकता है, जबकि अन्य मछलियों के साथ इसका 50% यानी 10,000 झींगा बीज का संचयन प्रति एकड़ किया जा सकता है। झींगा बीज को तालाब में छोड़ने से पहले इसके पैकेट को जिस तालाब में संचयन करना है उसमें कुछ देर रख दिया जाता है ताकि पैकेट के पानी और तालाब के पानी का तापमान एक हो जाए। उसके बाद ही संचयन हेतु बीज पानी में छोड़ा जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, जिस जगह पर झींगा बीज को संचयन हेतु छोड़ा जाता है उसी स्थान पर प्रथम 15 दिनों तक उन्हें भोजन के रूप में सूजी, मैदा, अंडा को एक साथ मिलाकर गोला बनाकर दिया जाता है। उक्त भोजन सुबह और शाम के समय एक ही स्थान पर प्रतिदिन दिया जाता है। 15 दिनों के बाद नवजात झींगा मछली सामान्यतः अन्य मछलियों को दिया जाता है, वही इनका भी भोजन होता है। झींगा पालन में इन्हें ऊपर से पूरक आहार का दिया जाना अति आवश्यक है, था भोजन के अभाव में ये आस पास में ही कमजोर झींगा को अपना भोजन बना लेती हैं। झींगा की वृद्धि की जांच के लिए समय समय पर जाल चलाकर वृद्धि की जांच करनी चाहिए। जब झींगा पूर्ण रूप से बड़ा हो जाए तो समय समय पर इसकी निकासी पर बेचा जा सकता है। बीच में बड़े झींगा को निकालते रहना चाहिए जिससे छोटे झींगा को बढ़ाने का अवसर मिलता रहे। यह प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है। ग्रामीण भाइयों, खुले बाजार में इसका मूल्य इसके वजन के अनुसार लगभग 300 रुपए से 400 रुपए प्रति किलो प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, झींगा मछली औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। थायराइड और झींगा रोगियों के लिए झींगा बहुत ही फायदेमंद होता है। झींगा मछली विटामिन डी से भरपूर होने के कारण इसका उपयोग त्वचा संबंधी रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। वास्तव में किसान भाइयों, झींगा पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। कार्यक्रम में ये हुई बातें मीठे पानी में झींगा पालन की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था मीठे पानी में झींगा पालन। संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान।

वानर सम्राट सुग्रीव की अपने चरणों में भक्ति और समर्पण देख श्रीराम ने उन्हें भरत की भांति अपना लिया और उनसे वे सभी उपाय करने का आग्रह किया जिससे सीता का समाचार प्राप्त किया जा सके। सुग्रीव के आदेश पर वानरों की विशाल सेना एकत्र हो गई। पार्वती को यह कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, वानरों की वो सेना मैंने देखी थी। उनकी संख्या इतनी थी जिसकी गिनती करने वाले को मूर्ख ही कहा जा सकता है। सभी वानर श्रीराम के सम्मुख आकर सिर झुकाते हैं। प्रत्येक वानर से श्रीराम उसकी कुशल क्षेम पूछकर उसे कृतार्थ

कर देते हैं। सुग्रीव ने असंख्य वानरों की विशाल सेना को सभी दिशाओं में जाकर सीता जी को ढूंढने का आदेश दिया और इस काम के लिए एक माह का समय दिया। अपने राजा के सामने एक बार फिर सिर नवाकर वानर श्री राम का स्मरण करते हुए विभिन्न दिशाओं में चल दिए। सबके अंत में जब पवन सुत हनुमान ने सिर नवाया तो श्री राम ने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श किया तथा अपना अनन्य सेवक जानकर उन्हें अपनी अंगूठी उतार कर दी। बोले, सभी प्रकार से सीता को समझा बुझाकर शीघ्र लौट आना।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस कान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है विनम्रता। आलेख एवं वाचन निर्मला तिवारी का।

कबीरदास जी कहते हैं, जो भी झुककर किसी को नमन करता है, प्रणाम करता है, वह दूसरों के लिए कम, अपने लिए अधिक लाभदायी है। जिस प्रकार तराजू का वही पड़ला नीचे झुकता है जो भारी होता है। कबीरा नवे सो आप को, पर को नवे न कोय, घाली तराजू तौलिए नवे सो भारी होए। इसी तरह फल से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान पद प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे उसके भीतर का अभिमान स्वार्थ शमन होने लगता है। वह विनम्र दयालु परोपकारी हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर उसका ज्ञान पद प्रतिष्ठा का कोई अर्थ नहीं। विनम्रता व्यक्ति का आभूषण है। इसके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व खूबसूरत बनता है, क्योंकि विनम्र होकर ही हम पात्रता अर्जित कर पाते हैं। विनम्र होकर हम दूसरों से जुड़ पाते हैं, उनके दर्द को महसूस कर पाते हैं। विनम्र व्यक्ति सम्मान भी पाते हैं और लोकप्रिय भी होते हैं। विनम्रता सहृदयता को दर्शाता है। यह वह कला है, गुण है, जिससे इंसान अपने आप पर नियंत्रण पाता है और दूसरों पर भी। अगर व्यक्ति के अंदर नम्रता नहीं है तो वह कितना भी धन दौलत अर्जित कर ले।

लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं पा सकता है। लोगों के हृदय में जगह पाने के लिए व्यवहार कुशल, विनम्र और संयमित होना चाहिए। उसकी वाणी संयमित होनी चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। छोटी सी उपलब्धि पर इतराना, अहंकारी होना, दूसरों को कमतर समझना व्यक्ति की अज्ञानता के परिचायक हैं। ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशवान व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देते हैं और उनकी सहजता दूसरों को भी विनम्र बना देती है। बड़े बड़े महापुरुषों, संतों, विद्वानों के जीवन के कई प्रसंग हैं जो उनकी सहजता, विनम्रता से अभिभूत करते हैं। एक समय की बात है, संत परमहंस से मिलने के लिए कलकत्ते के एक प्रसिद्ध डॉक्टर आए। वो उनसे मिलने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक माली फूल तोड़ रहा है। उन्होंने उससे कहा कि मुझे सुंदर सुंदर फूल दे दीजिए, परमहंस जी को देना है। उस व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर फूल उनको दिए। बाद में जब सत्संग में वो डॉक्टर साहब पहुँचे तो वहाँ पर परमहंस जी को देखकर हतप्रभ रह गए, क्योंकि वह माली कोई और नहीं, संत परमहंस जी थे। वो बहुत ही शर्मिंदा हुए, उनसे क्षमा मांगी और अपनी गलती के लिए पछतावा किया। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह विनम्र होता है, इसलिए हमें भी विनम्र होना चाहिए। मानव का सबसे बड़ा गुण मानवता है, विनम्रता है। विनम्र मनुष्य दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है। विनयशीलता, सदाचार ही उसे झुकने और सहने की शक्ति देते हैं। फलों से लदे वृक्षों की भांति वह जगों को देता ही देता है और यही गुण उसके व्यक्तित्व के कद को ऊंचा करते हैं। उसकी ऊंचाई में स्थिरता होती है। वह अधजल गगरी की तरह छलकता नहीं है, क्योंकि वह सकारात्मक, सहनशील, स्थिर भावनाओं, विचारों का मालिक होता है। इसलिए अपने जीवन को सरल, सहज, विनम्र बनाना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, विषय था विनम्रता, आलेख एवं वाचन निर्मला तिवारी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तृप्ति शाक्या के गाए चंद भक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना में तृप्ति शाक्या के गाए चंद भक्ति गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है हृदय रोग कारण एवं उपचार। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर अजय कुमार।
1: अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो हम ये देखेंगे कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी भी तरह से किसी भी बीमारी से वो ग्रसित दिखता है। हमारा जीवन शैली भी काफ़ी अव्यवस्थित हो गया है, हमारे खान पान का तरीका बदल गया है और हमारे उठने बैठने के तरीके में भी बहुत ही बदलाव दिखता है। तो ऐसे अव्यवस्थित जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियाँ आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और आपको इसका पता भी नहीं लगता है। एक ऐसी ही बीमारी है हृदय रोग, या जिसे हम दिल की बीमारी कहते हैं, उससे आप पीड़ित हो जाते हैं और फिर समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि हृदय रोग होने का कारण क्या है और इसका होम्योपैथिक पद्धति द्वारा आप किस प्रकार उपचार कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे इस स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आमंत्रित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार। अजय कुमार जी, स्वागत है। सबसे पहले हम जाने कि किस प्रकार हमारा दिल धड़कता है।
2: यह हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हार्ट हम लोग कहते हैं। हमारे शरीर में ये रक्त संचार इसके थ्रू होता है। पहले हम ये समझते हैं कि ये हार्ट काम कैसे करता है। ये हमारे शरीर में जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको शरीर से वापस लंग्स तक भेजता है। लंग्स में यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है और उस ऑक्सीजनेशन के बाद में ये फिर दोबारा हार्ट पे जाता है और हार्ट में जाने के बाद ये फिर पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में पहुँचाता है।
1: तो जो प्रमुख बीमारी है दिल की, वो कौन कौन सी है, लक्षण क्या है इसके, ताकि समय रहते हम इसका

0: उपचार कर सके।
1: आज के समय में हार्ट अटैक पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कॉज है डेथ का। हर 5 में से 1 मृत्यु का कारण हार्ट अटैक ही है, जो एक गंभीर विषय आज के लिए बना पड़ा है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, वैसे ही हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है काम करने के लिए। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कोरोनरी आर्टरी उसे प्रोवाइड करता है। इसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट काम करना बंद कर देता है, या पार्शियली हार्ट काम करने बंद कर देता है। इसी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, या फिर इस्केमिक आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। इसमें जैसे लक्षण में आएंगे चेस्ट पेन, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, पाल्पिटेशंस, सिनकोप्स, पेडल एडिमा, इस तरह के लक्षण आएंगे। थोड़ा सा इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चेस्ट पेन, आम धारणा बनी हुई है कि ये जो हार्ट अटैक में जो दर्द होता है वो लेफ़्ट साइडेड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लेफ़्ट साइडेड ना होके ये सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। ये डिफ्यूज़ इन नेचर होता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर जगह में नहीं होता। ऐसा लगता है कि पूरी छाती में ये दर्द भारीपन हो रहा है। इसका दर्द किस तरह का होता है, इसमें भारी वजन, ऐसा लगता है कि छाती पे कोई भारी वजन रखा हुआ है, या फिर कोई बेल्ट से ज़ोर से कस दिया है छाती को, इस तरह का पेन को हम लोग एंजाइना भी बोलते हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब हम लोग कोई एक्सर्शन करते हैं, यानी जब हम लोग कोई मेहनत वाला काम करते हैं।
0: तनाव से हम जब गुजरते हैं तो ये लक्षण भी दिखाई पड़ने लग जाता है।
1: तनाव से भी हम लोग गुजरते हैं। एक्सर्शन मतलब जैसे कि हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, थोड़ा देर लंबा चलते हैं, या कोई भारी वजन उठाते हैं, और इसमें इस तरह का पेन होना चालू हो जाता है, और वो भी कुछ देर के लिए होता है। जो कि हम लोग रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करने के बाद में ये आराम आ जाता है। इस तरह का दर्द को हम लोग एंजाइना बोलते हैं। ये चेस्ट पेन है, ये कार्डियक ओरिजिन का होता है। ये चेस्ट पेन 2-3 केसेस में नहीं होता है। जो पेशेंट डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उसमें ये चेस्ट पेन नहीं होता है। जो पेशेंट बुज़ुर्ग होते हैं, काफ़ी उम्र वाले होते हैं, उनको ये नहीं होता। और ये फीमेल पेशेंट को भी जनरली ये चेस्ट पेन नहीं होता है। कई बार लोग सीने में दर्द का भी बताते हैं, जो कि लोकल होता है, एक छोटे से जगह पे होता है। बोलते हैं कि चुभन जैसा दर्द हुआ। ये एक्चुअली में हार्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ये मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है। हार्ट अटैक का कोई ये संबंध नहीं है इससे। एक लक्षण हुआ शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसे हम कैसे समझेंगे कि ये कार्डियक ओरिजिन का है? जब सोने के समय 2-3 मिनट तक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दम फूलने लगता है, मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए दम फूलता है। सेम इसी तरह से पाल्पिटेशंस में भी होता है, दिल की धड़कन भी तेज होने लगती है लेटते समय, या फिर किसी तरह का हेवी काम करते समय बहुत पसीना भी आने लगता है, स्वेटिंग भी आने लगता है। तो ये सारे लक्षण मिलके सजेस्ट करते हैं कि ये कार्डियक ओरिजिन का है, यानी ये एंजाइना हार्ट अटैक का संबंधित है। इसके लिए हम लोग को तुरंत जाके इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: इस तरह के जो लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप चिकित्सक की सलाह लें। और डॉक्टर साहब, हम सावधानियां क्या रखें और खान पान में हम किन किन चीज़ों से दूरियां बनाएं ताकि ये बीमारी नहीं हो और हम स्वस्थ रहें?
1: इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन लोगों को यह ज़्यादा तकलीफ देता है, ये जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई शुगर है, जो बहुत मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ओवरवेट है, या जेनेटिक्स यानी जीन्स में ही हार्ट की गड़बड़ी आई हुई है, ये उन लोगों को काफ़ी तकलीफ देता है। और इसमें हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसमें हम लोग जो कंट्रोल करते हैं वो लाइफस्टाइल में सुधार करने से है। यानी जो स्मोकिंग करते हैं उनसे ये आग्रह किया जाता है कि अब आप इसको स्मोकिंग ना करें। तो जो ओवरवेट होते हैं उनको प्रॉपर एक्सरसाइज, वज़न कम करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। डाइट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फाइबर्स हमारे खाने में ज़्यादा हो उसका हम लोग प्रयोग करें। एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में ज़्यादा हो उसका प्रयोग करें। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जैसे फल, जैसे सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट अंगूर में होता है, काला वाला अंगूर में होता है, अमरूद में होता है, तो इस तरह के फलों का प्रयोग करें, जूस पिएं, फाइबर्स ज़्यादा खाएं। जैसे अब सेब खा रहे हैं तो उसका छिलका उतार के ना खाएं, छिलका सहित खाएं। इससे फाइबर्स भी हमारे शरीर को मिलेगा जो कि हार्ट को हेल्प करेगा। ओट्स, जिसे हम लोग हिंदी में जई बोलते हैं, जई का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा अगर हम लोग

0: चाय पीते हैं तो ग्रीन टी पिए, और अर्जुन का एक छाल आता है, अर्जुन के छाल को उबाल के उसको भी चाय जैसा हम लोग पी सकते हैं। तो ये तो सावधानी है, ये जो चीज़ है कि हम लोग क्या अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, क्या अच्छे खाने खा सकते हैं, हेल्दी रूटीन मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। अब हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए इसको दूर रखने के लिए, या जो भी पेशेंट जिनका हार्ट कमज़ोर है वो कोशिश करें कि एनिमल फैट ना खाएं। एनिमल मीट जैसे मटन हुआ, चिकन हुआ, फिश हुआ, एग योल्क हुआ, यानी अंडे के पीला वाला भाग, उसको ना खाएं। अब जैसे दूध भी अगर पीते हैं तो वो दूध में स्किम्ड मिल्क तो ही पिए तो ज़्यादा अच्छा है, यानी चर्बी रहित दूध अगर हम लोग पिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में भी तेल होता है, तो ये तेल भी दिक्कत है। तो इस ड्राई फ्रूट्स को हम लोग अगर रात में छोड़ दें और सुबह उठ के खाएं, इसका तेल भी हम लोग को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लास्टली तेल, आजकल हम लोग तेल बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दिए हैं, हर दिन के हर आहार में हम लोग का खाने में तेल होता है, तो इसको जितना कम से कम किया जा सके, तला भुना ऑयली फ्राइड फूड हम लोग ना खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा बात। इसको हम लोग होम्योपैथिक उपचार किस तरह से कर सकते हैं, तो दो तीन दवाइयां हैं जो कि अगर आपका हार्ट कमज़ोर है, अगर आपको पता है कि आपका हार्ट कमज़ोर है या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया हुआ है, तो दो तीन दवा हैं जो हार्ट के मसल्स को, हार्ट के वॉल्व्स को, हार्ट के सर्कुलेशन को यानी वेसल्स को भी डायलेट करके, तो ये रखता है। जैसे कि अर्जुना है, ये अर्जुना आयुर्वेदा में भी होता है, ये होम्योपैथी में भी होता है। ये अर्जुना एक अर्जुन का पेड़ होता है, उसका छाल को उबाल के पीने के लिए तो मैं पहले भी एडवाइस किया था। यही चीज़ हमारे होम्योपैथी में भी टिंचर फॉर्म में होता है, इसका डोज हम लोग लेते हैं 20 बूंद तीन बार एक चौथाई कप पानी के साथ। दूसरी दवा है कैक्टस, ये भी हार्ट की टॉनिक ही है और हार्ट का फंक्शन को ठीक करता है। ऐसे दो तीन और दवाइयाँ हैं जैसे कॉन्वोलेरिया, स्ट्रोफेंथस, कैम्फोरा और क्रैटिगस।
1: तो ये दवाइयाँ व्यक्ति स्वतः ही ले सकता है या चिकित्सक की सलाह से ले, जैसे अर्जुन की बात आपने करी?
0: जी नहीं, इसमें चिकित्सक की सलाह, होम्योपैथी में चिकित्सक की सलाह ज़रूरी होती है। उसमें ये ओरिजिन भी हम लोग देखते हैं। होम्योपैथी में हम लोग बीमारी को नहीं देखते हैं, बीमार को देखते हैं। पहले हम लोग उसकी सारी फिजिकल, मेंटल, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, क्रेविंग, एवर्जन्स, ये सारे चीज़ देख के उससे मैच करती हुई दवाइयाँ देते हैं। और प्लस
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रिय हरित प्राधिकरणस्य सम्मेलनम् अवलम्ब्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्राकृतिक विपदः जलवायु संरक्षणाय अस्मान् प्रेरयन्ति। तया प्रतिपादितं यत् जलवायु परिवर्तनं मानव जीवनस्य जैव विविधतां जल संपदं च दुष्यति। अतः जागतिक समुदायेन संघटितः प्रयासः कर्तव्यः। जलवायु परिवर्तनं जैव विविधतां जल सुलभतां भूसंसाधनानि च समाविश्य मानव जीवनस्य विविध पक्षेषु महंतं वैषम्यं जनयति। राष्ट्रपतिना आहूतं यत् प्रकृति पर्यावरणयोः संतुलन रक्षणं न हि केवलं प्रशासनिक कर्तव्यं प्रत्युत सकल मानव जातेः निरपेक्षं अस्तित्व साधकमस्ति। गुजरात राज्यं संप्रतिष्ठमाना राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः त्रिदिवसान् प्रवत्स्यति। श्वः तया केवड़िया नगरे राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्काराः वितरिष्यन्ते। वडोदरायां दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ति राष्ट्रपतिः ब्रह्मकुमारी संस्थायाः आध्यात्मिक केन्द्रं समुद्घाटयिष्यति। जोधपुरे प्रचलति वीर गार्डन 20-26 वायुसैन्याभ्यासे भारतीय वायुसेनाध्यक्षः एपी सिंहः जापानी समकक्षः जनरल ताकेहिरो मोरिता स्वदेशी युद्ध विमाने तेजसी सहैव उड्डयनम् अकार्ष्टाम्। वायुसेनाध्यक्षेण प्रोक्तं यत् भारतीय धरायां जापानी युद्ध विमानानां प्रथम प्रचालनम् उभयोः देशयोः रक्षा सम्बन्धेषु ऐतिहासिकं सोपानम् अस्ति। नवमे दिनांके आरब्धः एषः अभ्यासः श्वः पूर्णताम् एष्यति। कोलकाता नगरे मत्स्यपालन विभागः अद्य समीक्षा सभाम् आयोजयति। अस्यां सभायां केन्द्रीय मन्त्री राजीव रंजन सिंहः मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी च सहैव अध्यक्षतां विधास्यतः। पश्चिम बंगे मत्स्य संपदः विकासं लक्ष्यीकृत्य एतत् उपवेशनम् अकारि। एतेन विभिन्न योजनानां अनुपूर्विक प्रगतिः समीक्ष्यते तथा हि नूतन मार्गचित्रं प्रस्तूयते। 44वीं शतरंज ओलंपियाड स्पर्धायां प्रज्ञानंदः गुकेशः च उत्कृष्टं क्रीडित्वा नेदरलैंड दलं पराजितवन्तौ। अनेन भारतेन 3-1 इति अंकांतरालेन विजयः समासादितः। महिलानां स्पर्धायां भारतं पोलैंड देशेन पराजितम्। अवधेयं यत् संप्रति भारतं जर्मनी उज्बेकिस्तान दलानि 10 अंकैः सह शीर्षस्थाने वर्तन्ते। रूस देशीय युद्ध काले आयोजितं संसदीय निर्वाचनं ह्यः समाप्तम्। निर्वाचनायोगानुसारं 55.66% यावत् जनाः मतदानं कृतवन्तः। अमुष्मिन्नेव अवसरे युक्रेन दलानि 1000+ ड्रोनान् अपातयन्। अमेरिका राष्ट्रपतिः ट्रम्पः ईरान विषये निर्णयं विधातुम् उद्युक्तः अस्ति। ईरान देशः मध्यस्थ राष्ट्रैः सह होमोर्ज मार्गं मोचयितुं 7 नियमैः सह संधि परामर्शान् अप्रेषयत्। ईरानी राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन न्यूयॉर्क नगरं गमिष्यति। ट्रम्पः अकथयत् यत् तेषां पार्श्वे पूर्ण विनाशः आर्थिक प्रतिबन्धः संधिः च इति त्रयः विकल्पाः सन्ति। हौसी विद्रोहिणः अमेरिकी बलैः सह संग्रामं कर्तुं नैव स्वीकृतवन्तः। सुदीर्घकालस्य प्रतीक्षानन्तरं भव्य श्रीराम मन्दिरस्य निर्माणेन श्रीरामनगर्याम् अयोध्यायां नूतन स्वर्ण युगस्य अभ्युदयः सञ्जातः। कृत प्रयत्नेन अयोध्या पुनः एकदा वैश्विक धार्मिक पर्यटनस्य अथ सनातन धर्मस्य मुख्य केन्द्रम् अभवत्। सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयेन मन्दिर निर्माणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। दीपोत्सव सदृशैः भव्य आयोजनैः च अस्याः सांस्कृतिक वैभवस्य पुनरुद्धारः साक्ष्यसिद्धः अभवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं।
2: विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का

0: उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ETS ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और NIA ने 30 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में हैं और निकट भविष्य में बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर चर्चा की है। इसमें ईरान को पूरी तरह नष्ट करना, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना या फिर समझौता करना शामिल है। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने मध्यस्थों के जरिए 7 शर्तें रखी हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इसके अंतर्गत सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिका के कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की सभी यात्राओं के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये अलर्ट यमन के हौसी गुट की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया है। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल चुका है। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. On Wednesday, the President will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda at Vadodara. She will also launch Brahma Kumari's campaign, Spiritual Awakening for World Renewal, and inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center at Vadodara. The President will virtually launch the campaign Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building of Brahma Kumari's Nadiad on the occasion. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय

8:45 पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जोहार पलामू खेल विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियों पर आधारित होता हमारा ये कार्यक्रम। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10 बजे हिंदी में समाचार। 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। साथ ही 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई। कार्यक्रम होगा उजाले उनकी यादों के। 11 बजे रंग तरंग और 12 बजे यादों की महफिल।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार 1:05 पर होगा। अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से 1:10 पर आप सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से 1:20 पर। विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से 2 बजे। अंग्रेजी में समाचार 2:15 पर। हिंदी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से 2:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से 2:55 पर। प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से 3 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से 4 बजे। प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से 4:02 पर। विविध भारती के कार्यक्रम सेहतनामा आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से 5 बजे। प्रादेशिक समाचार 5:02 पर। विविध भारती के कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

0: शाम की सभा में शाम 5:35 पर महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा घर आंगन। 6:00 प्रादेशिक समाचार का समय होगा जिसे हम रिले करेंगे हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी। 6:30 पर कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा। 7:00 प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा बुनियाद। 7:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा एक रंग। 7:45 पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम कल्याणी आप सुनेंगे। 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 8:45 पर हिंदी में समाचार। 9:00 अंग्रेजी में समाचार। 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई। 10:00 आप सुनेंगे स्पेशल प्रोग्राम 20 एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 11:00 हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और हमेशा की तरह 11:10 पर हम अपनी सभा का समापन करेंगे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे झिरका भगत और इग्नेश कुमार की आवाज में चंद लोकगीत।
1: जया जया जया जया सारो साथी

ದದಕ ಮಾಡವಾದಯ ಗಹಜ ಡಮಕ ಚರೆ ದದಾಕೆ ಮಾಡವಾದಯ ದದಾಕೆ ಮಾಡವಾದಯ

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश में इग्नेश कुमार और झिरका भगत की आवाज़ में चंद लोकगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है गीत एवं गज़लों का कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के फनकार हैं गुलाम अली।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली से गज़ल, कार्यक्रम था स्वर सरिता। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंडमास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट

0: कंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
4: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
5: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
4: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
6: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो बढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
4: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से

0: नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत चार हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी प्रारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर तीन विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड

0: से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Gujarat beginning today to preside over National Film Awards presentation ceremony at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. External Affairs Minister S. Jaishankar to lead Indian delegation at the 81st session of UN General Assembly in New York. US President Donald Trump in deciding mode on Iran war says very big things going to happen soon. US issues security alert for its citizens and staffers in Saudi Arabia amid Houthi attacks. IMD forecasts heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Madhya Maharashtra today. And Indian men score emphatic 3-1 victory over Holland at the Chess Olympiad in Samarkand. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. We have more from a correspondent.
3: National Film Awards, recognizing achievements in Indian cinema for the year 2024, will be presented by the President tomorrow. Instituted in 1954, the National Film Awards are among the country's highest honors for excellence in cinema. Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026 by the chairpersons of the three juries. The awards are divided into three main sections: feature films, non-feature films and best writing on cinema. Along with the Dada Saheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema. Esika Shaw from Akashvani News.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly UNGA in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 20th.

0: Announcing the award, jury president Pablo Trapero praised Ang for his refreshing perspective, strength of filmmaking, and deeply resonant portrait of a world. And now, for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
1: Thank you, Abhishek. S. Jayashankar to lead Indian delegation at United Nations General Assembly, UNGA, address session on September 26th, reports the Hindustan Times. IAF, Japanese Air Force Chiefs fly Tejas formation sortie at Jodhpur, informs the statesman. The Hindu Court's Tata Trust are saying Tata Sons board did not meet conditions. Chandni Chowk's iconic town hall to get a new lease of heritage, reports the Pioneer. Research and Analysis Wing anniversary in spotlight. How its first chief, Rameshwar Nath Kao, built spy agency from shadows, reports the Indian Express, adding he gave it people, skills, culture needed to operate at highest level of national security. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to embark on three-day visit to Gujarat beginning today to preside over National Film Awards presentation ceremony at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. External Affairs Minister S. Jayashankar to lead Indian delegation at the 81st session of UN General Assembly in New York. US President Donald Trump, in deciding mode on Iran war, says very big things going to happen soon. US issues security alert for its citizens and staffers in Saudi Arabia amid Houthi attacks. IMD forecasts heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Madhya Maharashtra today. An Indian men score emphatic 3-1 victory over Holland at Chess Olympiad in Samarkand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani ka ye Ranchi kendra hai. Thodi hi der mein aap sunenge pradeshik samachar. वेक्टर जनित रोग मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
3: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: दीदी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बच्चे के जन्म को लेकर।
5: चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना, सब बहुत अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई।
6: पर खर्चा?
5: बच्चे का जन्म और दो रात अस्पताल में, माँ और बच्चे दोनों की देखभाल।
6: वो तो ठीक है, पर खर्चा?
5: अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना?
7: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना?
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: डॉक्टर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहू का पसाव अच्छे से हो गया, क्या आप जच्चा बच्चा को घर ले जाएं?
10: अभी माँ बहुत कमजोर है, उसे दो दिन यहीं रहने दें। प्रसव के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को संक्रमण और रोग का खतरा ज्यादा रहता है। सही देखभाल और संक्रमण से बचने के लिए माँ और बच्चे को प्रसव के बाद दो दिन अस्पताल में ही रहने दें। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की आज रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में होगी पेशी। रांची के बड़गाई इलाके की करीब 9 एकड़ विवादित जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा है मामला। उप राजधानी दुमका में अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्र की शुरुआत, सांसद निशिकांत दुबे ने किया उद्घाटन। अब राज्य में कुल केंद्रों की संख्या हुई 9। राज्यभर में कर्मा पर्व की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। लोहरदगा और हजारीबाग में बही लोक संस्कृति के बयार। आज रांची के ऑड्रे हाउस में सजेगा भव्य कर्म महोत्सव। राज्य में आज से 26 सितंबर तक मौसम का मिजाज रहेगा खराब। वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी के अंडर 17 फाइनल की तस्वीरें साफ। बालक वर्ग में खूंटी बनाम सिमडेगा और बालिका वर्ग में सिमडेगा और रांची के बीच होगा खिताबी मुकाबला।

0: और अब समाचार विस्तार से। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अहम सुनवाई होगी। यह पूरा मामला रांची के बड़गाई इलाके की लगभग 9 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा है। अदालत ने मुख्यमंत्री को आज शाम 4 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनिवार्य रूप से पेश होने का निर्देश दिया। उपराजधानी दुमका में अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्र शुरू हो गया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इसका उद्घाटन किया। श्री दुबे ने बताया कि इस केंद्र में आधार नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट और शिकायतों का निवारण एक ही छत के नीचे होगा।
1: ये जगह जगह जो केंद्र बने, जैसे आज हमने सिरसा का उद्घाटन किया है, इसके पहले देवघर का कर चुके हैं, एक बड़ा बेनिफिट क्योंकि आपको पता चेंज करना है, फोन नंबर चेंज कर, नाम में जो है कहीं कोई गड़बड़ी है, इस तरह के चीजों के लिए जो ऑनलाइन में भी कई एक दिक्कत होता है, जैसे दिव्यांग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कहीं जाने में आने में, या मान लीजिए कि नेट की सुविधा नहीं है, उनको जो असुविधा होती है, सारे सुविधाओं का ये आधार सेवा केंद्र है।
0: रांची UIDAI निदेशक ने कहा कि इस नए केंद्र के साथ ही अब राज्य में कुल 9 आधार सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं। रांची के पलाश सभागार में कल झारखंड प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि राज्य में आयुष मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को करीब 900 करोड़ रुपए की परियोजना रिपोर्ट सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: कॉलेज की स्थापना होगा, तो इस दिशा में मैं यहाँ आया था, मेरा जो फोकस है वो बेहतर करके ही लेंगे, हम तो जिद्दी भी है।
0: पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में भाजपा की प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने झामुमो और कांग्रेस पर MMDR बिल को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। रघुवर दास ने बंद खदानों की पारदर्शी नीलामी की मांग की और CAG आंकड़ों का हवाला देते हुए DMF फंड की 4000 करोड़ की अधिक की राशि के खर्च का ब्यौरा मांगा।
3: झारखंड में इस वित्तीय वर्ष में 1800 करोड़ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में राज्य सरकार को उपलब्ध हुआ। उस 1800 करोड़ में 800 करोड़ रुपया आज भी राज्य के राजस्व के पास पड़ा हुआ है, और जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में जो खर्च भी हुए हैं इस सरकार के, इस वर्ष का बात कर रहा हूँ, उसमें भी घोटाले।
0: रांची के पांचवें पेडिकॉन 2026 सम्मेलन का समापन हो गया है। 3 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के लगभग 200 बाल रोग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में बच्चों की मिर्गी, निमोनिया और हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के आधुनिक इलाज पर चर्चा हुई, ताकि झारखंड के युवा डॉक्टरों को वैश्विक स्तर का अनुभव मिल सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
0: लोहरदगा और

0: हजारीबाग में करमा पर्व की पूर्व संध्या पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोहरदगा के कुड़ू में राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने प्राकृतिक पूजा और भाई बहन के प्रेम के इस पर्व की महत्ता बताई। यहां छत्तीसगढ़ तक की नृत्य मंडलियां पहुंची थीं।
1: सब पर्वती मन के जय करम जय करम। पूर्व संध्या के माध्यम से कोहे लाशाई के विषय में हम के चर्चा करना चाहिए और गांव में के विषय झूलों करना है। ऐसे करने में एक्चुअली भी वो पूर्व संध्या का आयोजन होना है।
0: वहीं हजारीबाग के सरहुल मैदान में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की मौजूदगी में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ करम गीतों की गूंज रही। आज रांची के ऑड्रे हाउस में भी भव्य करम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर 7 दिनों से विराजमान गणपति बप्पा को कल पूरे विधि विधान के साथ विदाई दी गई। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने विशेष हवन आरती के बाद एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रतिमा का विसर्जन किया। केंद्रीय मंत्री ने देश की समृद्धि और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की सफलता की कामना की।
2: अगले साल जल्दी आना ताकि आपकी सेवा हो पाए। आप विराजते हैं तो साल भर के कष्टों के हर लेते हैं, तो आज विदाई की वेला में बाबा से आशीर्वाद मांग रहे हैं। कभी 76 साल के हमारे लाडले प्रधानमंत्री 17 सितंबर को हुए हैं, वो और दीर्घायु हो, स्वस्थ हैं।
0: मौसम। राज्य में आज से 26 सितंबर तक मौसम का मिजाज बेहद खराब रहेगा। मौसम विभाग ने आज राज्य में गरज चमक के साथ तेज हवाओं और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कल और 23 सितंबर को रांची, जमशेदपुर और धनबाद सहित मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। रांची में जारी राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के अंडर 17 फाइनल की तस्वीरें साफ हो गई हैं। बालक वर्ग के खिताबी मुकाबले में खूंटी का सामना सिमडेगा से होगा। वहीं बालिका वर्ग में फाइनल में सिमडेगा और रांची की टीमें आमने सामने होंगी। इसके अलावा अंडर 15 बालक वर्ग में सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने टीएसपीसी सुप्रीमो के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, टीएसपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंजू को यूपी एटीएस ने मार गिराया। प्रभात खबर लिखता है, वरीय लेखा अधिकारी के आवास से 60 लाख रुपए की संपत्ति के कागजात जब्त। हिंदुस्तान के शब्द हैं, बेटियों ने पहले ही दिन चांदी पर साधा निशाना। दैनिक जागरण ने लिखा है, 43 लावारिस शवों का जुमार नदी तट पर सामूहिक अंतिम संस्कार। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की आज रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में होगी पेशी। रांची के बड़गाई इलाके की करीब 9 एकड़ विवादित जमीन को अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा है मामला। उपराजधानी दुमका में अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्र की शुरुआत, सांसद निशिकांत दुबे ने किया उद्घाटन। अब राज्य में कुल केंद्रों की संख्या हुई 9। राज्यभर में करमा पर्व की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। लोहरदगा और हजारीबाग में बही लोक संस्कृति के बयार। आज रांची के ऑड्रे हाउस में सजेगा भव्य करम महोत्सव। राज्य में आज से 26 सितंबर तक मौसम का मिजाज रहेगा खराब। वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी के अंडर 17 फाइनल में तस्वीरें साफ। बालक वर्ग में खूंटी बनाम सिमडेगा और बालिका वर्ग में सिमडेगा और रांची के बीच होगा खिताबी मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अरे पोस्टमैन साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, बच्चों के टीकाकरण के बारे में कुछ जानकारी दो ना हमको।
4: अरे भोला, इसके लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करो।
3: अच्छा,
4: इतना ही नहीं, गर्भवती महिला की जांच और देखभाल, खेल मनोरंजन की जानकारी, परिवार नियोजन की सलाह जैसी बहुत सी जानकारियां अब झारखंड सरकार उपलब्ध करा रही है।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
5: झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: बच्चों के विकास के लिए विटामिन ए है बहुत जरूरी।
7: विटामिन ए बच्चों को बनाता है तंदुरुस्त, दूर करता है शरीर की कमजोरी।
6: हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ, दूध और दूध से बने उत्पाद, पीले फल, मांसाहारी भोजन, ये है विटामिन।

0: आने का प्रमुख स्रोत।
1: तो अपने बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए 6 माह के बाद बच्चे को विटामिन ए युक्त भोजन खिलाएं।
0: साथ ही 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो चलिए बिना देर की आपको सुनवाते हैं फिल्म धर्मवीर का गाना, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है कभी कभी, आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की है।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं, वह बदलाव पहले स्वयं में लाइए। महात्मा गांधी ने यह विचार हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी समझाता है। वो ये बताता है कि हम अक्सर चाहते हैं कि दूसरे लोग अच्छा व्यवहार करें, समाज में बदलाव आए और परिस्थितियाँ बेहतर हो, लेकिन किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे स्तर से होती है और वह शुरुआत स्वयं से ही हो सकती है। अगर हम दूसरे को सम्मान करना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, तो हमें भी दूसरों, हम ये चाहते हैं कि कोई हमें सम्मान करे, तो दूसरों को भी सम्मान देना चाहिए। अगर हम अपने आसपास स्वच्छता चाहते हैं, तो शुरुआत अपने घर से, अपने आसपास से करनी चाहिए।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। अब आइए आपको मौसम का हाल बता दें। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज ह्यूमिडिटी रहेगी 93% तक। आज सूर्यास्त का समय होगा 5:51 पर और कल सूर्योदय का समय होगा 5:41 पर।

आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक से सूर्य हमारे बीच से गायब हो जाए तो क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन सुनिए क्या होगा। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि सूर्य की रोशनी, गुरुत्वाकर्षण दोनों के प्रभाव के बदलाव पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड्स के बाद पहुंचेगा, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को इतना ही समय लगता है पहुंचने में। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड्स तक पृथ्वी पर हमें कोई अंतर महसूस नहीं होगा। सूर्य की रोशनी सामान्य रूप से आती रहेगी और पृथ्वी अपनी कक्षा में सामान्य रूप से घूमती रहेगी। इसके बाद अचानक सूर्य का प्रकाश दिखाई देना बंद हो जाएगा। दिन के समय भी आकाश अंधकारमय हो जाएगा, सूर्य दिखाई नहीं देगा। पृथ्वी का तापमान गिरने लगेगा। सूर्य पृथ्वी की सबसे बड़ी बाहरी ऊर्जा स्रोत है, उसके बिना पृथ्वी लगातार ठंडी होती जाएगी। हालांकि तापमान तुरंत शून्य नहीं होगा, पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों और जमीन में पहले से मौजूद ऊष्मा कुछ समय तक बनी रहेगी। समय बीतने के साथ सतह बेहद ठंडी होती जाएगी। पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा जीवन के लिए अत्यंत प्रतिकूल हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पौधों पर पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश न मिलने से प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, पौधे अपना भोजन बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। इसके बाद खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी, पहले पौधे पर निर्भर जीव, फिर उससे जुड़े अन्य जीव और अंततः मानव खाद्य व्यवस्था भी गंभीर संकट में आ जाएगी। जल चक्र भी प्रभावित होगा। सूर्य की ऊर्जा के बिना सामान्य वाष्पीकरण और जल चक्र का बहुत कमजोर पड़ जाएगा। वर्षा का सामान्य स्वरूप बदल जाएगा और सामान्य पृथ्वी पर जो पर्यावरण है वो भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण समाप्त होने पर पृथ्वी सूर्य की वर्तमान कक्षा में परिक्रमा नहीं करेगी, वह लगभग उस दिशा में सीधी रेखा में आगे बढ़ने लगेगी जिस दिशा में वह उस समय सूर्य की परिक्रमा कर रही थी। मानव सभ्यता पर इसका सबसे गहरा असर पड़ेगा। मानव सभ्यता के लिए अत्यंत ही गंभीर संकट होगा। खेती, प्राकृतिक खाद्य उत्पादन, मौसम और पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह प्रभावित होंगे। मनुष्य कुछ समय तक कृत्रिम प्रकाश, भूमिगत संरचना और परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और संग्रहित भोजन जैसे तकनीकों की मदद से कुछ स्थान पर जीवित रहने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वर्तमान मानव सभ्यता जिस बड़े प्राकृतिक तंत्र पर निर्भर है उसका लंबे समय तक चलना बहुत ही कठिन है। तो धीरे धीरे करके मानव सभ्यता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस मानव सभ्यता का मान रखिए, एक दूसरे से प्यार से मोहब्बत से रहिए और ये गाना सुनिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। अब आइए बात करते हैं आज सेहतनामा में सौंफ के बारे में। सौंफ तो हमारे आपके सबके घर में किचन में होता ही है और ये एक ऐसी सामग्री है जो आप खाने में तो यूज करते ही, इसे माउथ फ्रेशनर के तौर पे भी यूज किया जाता है और इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे कि पाचन में मदद करता है। सौंफ भोजन के बाद होने वाली गैस और पेट फूलने जैसी सामान्य पाचन संबंधी परेशानी में राहत देने में सहायक सिद्ध होता है। मुंह की ताजगी बढ़ाता है। सौंफ चबाने से मुंह की ताजगी अच्छी हो जाती है और खुशबू भी अच्छी आती है। एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। सौंफ में कई पौधे आधारित यौगिक होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज पाई गई है। पेट में ऐंठन में पारंपरिक उपयोग किया जाता है। इसका सौंफ का इस्तेमाल लंबे समय तक पाचन संबंधी असहजता के लिए पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता रहा है। पोषक तत्व सौंफ में फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम और कुछ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। हमारे रसोई घर में मौजूद कई मसाले केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाते बल्कि पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य से भी जुड़े रहे हैं। ऐसी ही एक चीज है सौंफ। भोजन के बाद सौंफ चबाने की आदत भारत में काफ़ी पुरानी है और इसकी खुशबू मन की ताजगी बढ़ा देती है और इससे कुछ प्राकृतिक यौगिक हैं जो पाचन की क्रिया में मदद भी करते हैं।

श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते बस यही कहना है कि आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते और स्वस्थ रहे। कार्यक्रम जोहार पलामू से अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दें, नमस्कार। और हम आपको बता दें कि बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
1: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
2: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गांव से हुई थी।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
2: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
1: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
2: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
2: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559

0: पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
1: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
0: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी।

0: ये घटना अमेरिका की है।
1: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
0: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
1: मोटर गाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
0: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं वे भी खस्ताहाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
1: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
0: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
1: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
0: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सब ने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
1: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
2: माँ।
3: हाँ बेटा।
2: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
3: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: हाँ पर
3: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
2: पर माँ हमारे
3: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
2: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
3: अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: लेकिन माँ सुनो ना।
3: अरे बेटा, मैंने
2: कहा। अरे सुनो, उफ माँ।
3: अरे बेटा, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: माँ, कोई सुनता भी तो नहीं है। मुझे इस समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं?
1: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
0: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
3: लो बेटा। अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, बताओ

0: बताओ क्या सोच रही हूँ।
1: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
0: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
1: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
0: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
1: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
0: बेटा
1: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
0: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा? क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
1: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
0: लेकिन क्या बेटा?
1: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ। दे दो ना माँ, दे दो।
0: अरे बेटा सुनो तो
1: माँ, एक लालटेन दे दो।
0: देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा। और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
1: अरे माँ लालटेन दे दो।
0: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है, जैसा तुम सोचो।
2: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है? करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह? यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
3: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
4: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
3: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुंचा।
1: माँ माँ माँ!
0: अरे अरे, बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
0: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
1: नहीं माँ, एक भी नहीं।
0: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
1: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
0: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
1: हाँ माँ,
0: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
3: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
4: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
3: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
4: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गाँव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
3: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
4: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर

0: जरूर करना चाहिए और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
1: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
0: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,

0: ले।
1: हाँ भैया, आ तो रही है।
0: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
1: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है।
2: पेंडुलम?
1: वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे।
2: आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
0: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
1: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
0: मट्टू बोले,
3: हाँ हाँ जरूर।
0: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
3: देखो, ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा, यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
0: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
4: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो।
0: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
3: हाय, ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
0: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
5: पढ़िए और समझिए।
0: कान लगाना,
5: ध्यान देना।
0: रक्कास,
5: नाचने वाला।
0: ताब,
5: ताकत, बर्दाश्त।
0: हिंसा,
5: नंबर, अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक,
0: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे।
5: सवाल नंबर दो,
0: घड़ी की आवाज कैसी थी।
5: सवाल नंबर तीन,
0: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था।
5: सवाल नंबर चार,
0: चट्टू, टिल्लू, खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे।
6: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। उसके बाद आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी को उसके 15वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में सेकी ने भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा को आगे बढ़ाने और देश के स्वच्छ ऊर्जा तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इन हवाई अड्डों का विकास पुरुलिया के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालूर घाट, अलीपुर द्वार के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाईकुंडा में किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने संघर्ष को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमरीका के सामने 7 शर्तें रखी है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. President Draupadi Murmu will be on a three-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. More from our correspondent.
1: Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026 by the chairpersons of the three juries. The awards are divided into three main sections, feature films, non-feature films and best writing on cinema, along with the Dada Saheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema. Esika Shaw from Akashvani News.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly, UNGA, in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jayashankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. Union Minister of New and Renewable Energy, Prahlad Joshi, has congratulated Solar Energy Corporation of India, SECI, on its 15th Foundation Day today. In a social media post, Mr. Joshi said that SECI has played an important role in advancing India's renewable energy journey and strengthening the country's clean energy ecosystem in the past 15 years. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan will flag off the fourth phase of the Nasha Mukt Punjab Yatra from Talwandi Sabo in Bhatinda today. He will be accompanied by Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini. The Yatra is focusing on three major challenges presently confronting Punjab. These are growing drug menace, deteriorating law and order, and corruption at every level of governance. In a historic first, Ang, directed by Naga filmmaker Theja Rio, has won the Platform Prize 2026 at the Toronto International Film Festival, TIFF. Ang was one of 12 films selected for this year's Platform Program, TIFF's only competitive section. Beginning with the 2026 prize, winning the TIFF Platform Prize gives a non-English language film a direct pathway to eligibility for consideration for the Academy Award for Best International Feature Film. Iran has ruled out reopening the Strait of Hormuz or returning to the previous framework of negotiations with the United States until Washington meets Tehran's conditions. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf said as tensions between the two countries continue to escalate, Mr. Ghalibaf said Iran has conveyed its demands to the United States through intermediaries and would not reconsider its position until Tehran's conditions were fulfilled. The United States has issued a security alert for its mission in Saudi Arabia, requiring U.S. government employees working in the country to obtain special authorization for all official and personal travel to the cities of Taif and Yanbu. U.S. mission in Saudi Arabia said the restrictions were imposed due to the ongoing security situation and urged American citizens in the kingdom to remain vigilant and follow recommended security measures. The alert comes after Yemen's Houthi group launched attacks towards Saudi Arabia, including a ballistic missile directed at Riyadh. U.S. President Donald Trump will meet Ukrainian President Volodymyr Zelensky in New York tomorrow to push efforts to secure de-escalation between Russia and Ukraine, with the two leaders expected to discuss steps towards reducing hostilities and reviving negotiations. The meeting is being organized on the sidelines of the UN General Assembly in New York. Trump repeatedly urged Zelensky during the call to halt Ukrainian strikes on Russian oil refineries, with the attacks being linked to disruptions in fuel supplies and higher diesel prices. In the Asian Games, India has clinched the third silver medal in the men's 10 meters air rifle team event in Nagoya, Japan. Suchika Tarial also won the bronze medal in the women's traditional mixed martial arts 60 kilogram event. And that is the end of this news bulletin.
2: जनवरी में उतरे हम लोग जनवरी में।
3: हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा, और छोड़ा और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता, और वो चले गए छोड़ के,
2: बम्बई छोड़ के चले गए,
3: नहीं नहीं घर में छोड़ के चले गए।
2: जी जी।
3: और शाम को आए, शाम को वापस आया तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैंने कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एले एब्रियो की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे।
2: जी जी।
3: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहाँ चले गए, वहाँ देखा तो उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके, तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है। बोले पहले बजाता? बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला वबला सब उसके अंदर, सुर बहुत है उसके पास। बोले ओके ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गया।
2: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही हो?
3: 12।
2: 12 वर्ष। अच्छा मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
3: मम्मी के थे बहुत सी यादें हैं।
2: पहले नाम बता दें।
3: डैडी के हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह।
2: जी जी।
3: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी, उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था
2: जी,
3: हिंदी में
2: जी।
3: जो ज्ञानी जो लोग पास करते थे तो वो ज्ञानी, जैसे आज बीए या एमए है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
2: अच्छा।
3: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर।
2: जी जी।
3: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से।
2: अच्छा।
3: आज जो पाकिस्तान में है।
2: हाँ।
3: और मदर थी कुजरावाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे, तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे।
2: जी जी जी।
3: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए, तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गई थी।
2: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप।
3: जी डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई
2: जी,
3: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपने, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे
2: जी।
3: 2-3 महीने ही, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना। तो मैं उनसे शायद 1.5 से 2 साल सीखा हूँ।
2: क्या बात है।
3: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका, वायलिन में पोलका होता है
2: जी।
3: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया, वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको बताऊं
2: वो कहानी में आगे आएगा।
3: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज हुए।
2: बाप रे, 10-12 घर
3: 2 साल में
2: जी।
3: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरीबंदर गुरुद्वारा था वहां रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, माटुंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही
2: जी।
3: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
2: बाप रे बाप।
3: ये लोग सुन के बहुत हैरान होंगे।
2: 13.5 घंटे
3: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक।
2: ओहो।
3: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है।
2: अरे बाप रे।
3: 4:30-5
2: तो कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेलें?
3: नहीं,
2: बच्चों के साथ खेलें
3: कभी हुआ ही नहीं, कोई यही जिंदगी थी। डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म होगी बात,
2: बस उसके आगे
3: माँ ने कहा है खत्म होगी बात
2: जी,
3: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता है कि मैंने कह दिया तो तुमने तुमको करना ही है।
2: कितनी सुंदर बात है।
3: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी माइंड में ही नहीं आया।

0: दो साल निकल गए मुंबई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर।
1: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
0: अच्छा वायलिन। हाँ मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे, किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहां पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
1: अच्छा
0: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहाँ ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद शफी चाचा हैं जो बड़े डायरेक्टर हैं, नौशाद साहब के असिस्टेंट हैं
1: जी,
0: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
1: जी बिल्कुल।
0: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया, और रात को 9 बज के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
1: 12 घंटे
0: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था।
1: जी जी
0: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक तो 13 घंटे हो गए।
1: हाँ
0: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस बिल्कुल।
1: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं,
0: का वो भी
1: मोहम्मद शफी के साथ।
0: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है बड़ा रिदम विदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
1: अच्छा
0: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग।
1: जी
0: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
1: मोहम्मद शफी के घर,
0: मोहम्मद शफी के माहिम में। और वहां जब पहुंचे सब जाके हम लोग हॉल में बैठ गए। अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था, या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए
1: जी,
0: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है। तो आके कुर्सी में बैठ गए, तो सभी से बाहर आया, हाँ पीटर आ जा। उनका नाम पीटर था। बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे,
1: फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती जी।
0: तो उन्होंने आया, पीटर आ जा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायलिनिस्ट है, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता है ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने, चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे, सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने बजाई
1: नोटेशन रख दिया,
0: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1, 2, 3, 4 में चौथे में था, 5, 6, 7, 8 हो गए या 9 हो गए, 8 हो गए, जो भी था याद नहीं। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया। आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटेशन, ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया। और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया मैं, चाचा समझ गया, उन्होंने बोला हाँ तू मेरे से फट से आ गया, तुम बजाओ। मैं नहीं बजा सका उससे,
1: अरे बाप रे,
0: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं बजा सका उससे। मैं, मुझे हुआ क्या? शाम को नीचे चले गए, फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना है यहाँ, पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
1: जी,
0: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया, तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए,
1: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी,
0: 10 रुपए पूरे दिन के, तो सबको 10-10 रुपए दिए। तो 10 रुपए देख के ही हम सब लोग ऐसे हो गए, और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
1: तो 15 हो गए।
0: मुझे 5 रुपए और दिए, तो मुझे बोला ये 5 रुपए जो दे रहा हो ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे। शर्ट फटी होगी
1: जी जी,
0: ध्यान नहीं है
1: जी जी।
0: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए, तो 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, बहुत बड़ी बात,
1: इतनी बड़ी रकम
0: कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं बोला, डैडी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, तो मम्मी को 10 रुपए दिए, जो पैसे दिए, वाहेगुरु जी को मथा टेका कि आज बच्चे की पहली कमाई आई है।
1: 12 बरस की उम्र में?
0: नहीं 14 बरस हो गया।
1: अच्छा
0: 62
1: जी जी
0: 14 बरस
1: जी।
0: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे अगले चलो उठो चलो चलते हैं। कहाँ? चलो ना, निकल पड़े। तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी, दादर गए। दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं। तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी।
1: गजब।
0: 2 मेरे लिए, 1 अपने लिए, और मुझे लगता है शायद अपने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट।
1: क्या बात है।
0: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आ रहा था, डैडी को लेके गया। बोले इसको, लड़के को आप बाबा जी क्या, रामप्रसाद जी क्या डालो।
1: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के, प्यारेलाल जी के पिताजी,
0: प्यारेलाल जी के पिताजी,
1: ट्रम्पेट बजाया करते थे।
0: ट्रम्पेट बजाया करते थे और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने बड़े टीचर थे वो, इतने, जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना वो हमने महसूस की है और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है हमने
1: जी। कोई उनका नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे।
0: बाबा जी बोलते, नहीं तो अदरवाइज पुराने जमानों में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था
1: जी।
0: ये बाबा जी थे हमारे,
1: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने।
0: महत्वपूर्ण शिष्य था, और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूँ।
1: बहुत सख्त थे वो
0: दूसरों के लिए,
1: आपके लिए नहीं?
0: मेरे लिए।
1: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे?
0: लाडला बच्चा भी कहते थे और मुझे राम सिंह कहते थे।
1: अच्छा।
0: ये कहते ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था।
1: हाँ।
0: राम सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे। राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे। इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटो में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है,
1: राम सिंह जी की देन है जी।
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं
1: नोटेशन
0: लिख रहे हैं।
1: गजब।
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म हुआ, उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी।
1: ये रफ्तार
0: थी, जैसे
1: टाइप कर रहे हैं,
0: टाइप करते ना जैसे स्टेनो, जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा ऐसा लिखते थे वो
1: जी।
0: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे, ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह।
0: सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो बट ये मेरा राम सिंह है।
1: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे
0: जो भी था
1: उस वक्त। प्यारेलाल जी,
0: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था।
1: अच्छा।
0: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर, और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसमणि।
1: हाँ, 63 में आ गई थी।
0: 63 में आ गई थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था, और प्यारे भाई वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे। उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
1: जी, एंथोनी गोंसाल्विस,
0: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा।
1: अरे बाबा।
0: मैं भी उनके पास गया था। तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा, और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पर किसी को दिया ही नहीं जाता। आमतौर पर किसी को भी ये चीज नहीं मिलेगी। उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन।
1: अरे बाप रे। और आपकी इतनी कम उम्र?
0: इतनी कम उम्र, ये शायद 63-64 की बात है। मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े
1: जी जी, शेख मुख्तार,
0: शेख मुख्तार, उनकी फिल्म थी वो।
1: वाह।
0: 6 फुट के थे,
1: 6 हट्टे कट्टे,
0: उनकी फिल्म थी वो। इनका बैकग्राउंड मुझे चाचा कर रहे थे। वो बैकग्राउंड में 7 दिन हमने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया, और एक हमारे साथ और भी थे वो लिख रहे। हमने 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया। आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ है
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है।
0: एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
1: बाप,
0: 15-16 साल की उम्र।
1: कमाल।
0: वहां से एक कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा, नौशाद साहब का
1: जी।
0: तो हम सब बजा रहे थे, मैं शायद 3rd रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था। तो मुझे ऐसे बोला, तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
1: वाह वाह।
0: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन? मैंने कहा हाँ चाचा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद साहब की, जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है।
1: कौन सी फिल्म है
0: वो? मुझे याद थी। क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो है फिल्म नहीं हुआ करती थी
1: जी जी जी,
0: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करती थी, टाइमिंग
1: अच्छा।
0: पर बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस। आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना।
1: हाँ, वो ऐसा नहीं होता,
0: ऐसा नहीं होता था।
1: गजब। तो 64 में किसी फिल्म में आपने बजाया?
0: तो वो सोलो बजाया, वो मेरा पहला सोलो था।
1: वाह वाह।
0: आप देखिए वो एक अंधेरा सामने छा गया।
1: हाँ।
0: मैं 8-10 लोगों में नहीं बजा सका, और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम।
1: क्या बात है।
0: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब, पीटर साहब भी उसमें थे,
1: वाह
0: पीटर साहब और दोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ।
1: गजब गजब, क्या बात है,
0: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तूने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
1: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं। ओहो
0: ये 64 की बात है।
1: जी,
0: अब फील ही फील है।
1: ये कहां से आया?
0: ये लग गई मेरे बात, मैंने कहा फील क्यों नहीं है।
1: हाँ,
0: पहला सोलो था,
1: जी
0: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं,
1: जी
0: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं।
1: बिल्कुल,
0: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई,
1: एक वायलिनिस्ट की
0: Somebody is there.
1: एंट्री हो गई।
0: Somebody is
1: जी,
0: there.
1: बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में हैं तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए। आप बताएंगे कौन सा गाना सुने?
0: 1960 में फिल्म आई थी मुगले आजम, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो हाँ क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा, ऐसा काम,
1: जी
0: हम लोग सब यही होते थे यार, ये ऐसा काम कैसे हो सकता है,
1: करिश्माई
0: कौन
1: काम है।
0: करिश्माई का। और वो गाना देखिए 1960 का जो गाना है रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा,
1: हाँ,
0: जब प्यार किया तो डरना क्या,
1: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं,
0: इस गाने को सुनते हैं।

0: कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहाँ मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर होके आती है,
1: कलर होके आती है और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है। तो नौशाद साहब के कानों में गया, तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूँ अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूँ और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो भी बातें हुई वो फिर हमारे पास आई, तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम मुगले आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
0: पूरा म्यूजिक भी,
1: पूरा म्यूजिक
0: मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
1: सब, सब सब सब सब सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है। तो मतलब वही
0: भव्यता
1: चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो और हमारे पास मुगले आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
0: जी बिल्कुल,
1: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
0: सारे हैं
1: और उस ट्रैक में
0: हिसिंग भी है,
1: ये चल रही है।
0: अरे बाप रे,
1: 1960 की पिक्चर है, इसको कहां से निकालोगे। तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकालता हूं। तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे थे वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
0: जी जी
1: 50% अभी भी था। वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय गजर जो आवाज स्टूडियो का मालिक था,
0: जी जी,
1: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए
0: जी,
1: उसके बाद में क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
0: बाप रे,
1: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा पूरा। जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया,
0: जी
1: अच्छा अब नोटेशन तो लिख लिया गाना क्योंकि गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने है। लिख लिया, अब बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है। ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
0: मैं जानता हूँ।
1: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है। पूरा स्कोर लिखा गया,
0: बैकग्राउंड का पूरा
1: स्कोर लिखा गया है।
0: ओ गॉड,
1: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए।
0: और गानों के नोटेशन करने
1: वो
0: में
1: भी,
0: क्योंकि
1: वो भी, हाँ, वो
0: अलग
1: भी
0: अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे कि वायलिन के ये हुए, वायोला के हुए।
1: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए तो हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
0: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाए,
1: पार्ट बाय पार्ट।
0: अच्छा,
1: उस टाइम तो लाइव थे
0: जी, यहाँ तो अभी ट्रैक थे।
1: और इस मुगले आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 वायोला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मद्रास से मंगाए थे।
0: बाप रे बाप रे,
1: ये हमने मद्रास से म्यूजिशियन आए, यहाँ रहे 7 दिन। 7 दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
0: गजब।
1: खाली वायलिन के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया। ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लग गए इसको।
0: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के,
1: आराम से।
0: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए,
1: पूरे,
0: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई,
1: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही। आपको, आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
0: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक जो डॉल्बी आप लोगों ने किया था,
1: जी, जी।
0: उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूज बम्प्स आ जाते हैं। मुझे याद है

0: मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसे से बहुत लंबे, बहुत लंबा पीस है,
1: बहुत लंबे
0: ढाई तीन मिनट
1: सारे
0: का
1: किए हुए
0: जी।
1: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो दो सितारे बज रही हैं, वो रखा हुआ पहले का।
0: हाँ हाँ उसी के ऊपर बजा दिया,
1: उसी के ऊपर बजा हुआ। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना माइन्यूट काम है। जैसे
0: इस तरह से,
1: जैसे पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
0: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
1: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा मजे की बात यह है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1,60,00,000 रुपए खर्चा हुआ था
0: जी।
1: उस टाइम का मतलब, तो आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा हुआ। अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है।
0: जी जी
1: बकायदा बिल्स हैं हर चीज के, 1 करोड़ रुपए पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया वो तो सब जो है सो है सो।
0: जी
1: मतलब तो उस टाइम पे भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
0: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म,
1: आज भी अगर 6-7-7-8 करोड़ खर्चा किया है तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने
0: जी बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
1: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
0: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखें तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए।
1: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाइए,
0: जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद।
1: क्योंकि क्या है उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज,
0: बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वो जिस तरह से ऊपर जाता है पूरा, वाह वाह। कुमार साहब पर फिल्म आ गया,
1: ये सुनाइए
0: सुनते।

0: देखिए, बातों को थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है
1: जी जी।
0: कि ये संगीत आपने,
2: यहाँ मैं एक बात बता दूं, इस दौरान जो है ना मेरा जो लड़का है गुरमीत
0: जी,
2: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर।
0: जी जी जी,
2: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है, वायलिंस की डबिंग है, वो सब लिखना वो सब उसने किया हुआ है। बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई।
0: जी जी जी, क्या बात है। वापस चलते हैं 1964 के जमाने में जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
2: देखिए जी, नौशाद साहब क्या थे, उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि मोहम्मद सफी साहब थे
0: जी,
2: लेकिन उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
0: इतना लंबा समय निकल गया
2: जी, क्योंकि सफी साहब काम करते थे, हम लोग बजाते थे
0: जी।
2: जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ, मैं घर गया
0: जी,
2: चाय पीने, चाय पीते हैं, चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है,
0: आशियाना
2: आशिया। मैं कहा चाचा यहाँ क्या, चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए, रूम में बैठ गए, नौशाद साहब ऊपर से आए, बोले आओ सभी मियाँ, किसको ले आए, इसको किसको ले आए, ये कौन है, देखा तो हुआ है इसको, अपनी रिकॉर्डिंग बजाता है ना, शायद वायलिन बजाता है। हाँ जी वायलिन बजाता है, तो क्यों लाए उसको यहाँ पे। मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा।
0: गजब,
2: क्योंकि मैं अब मेरे से अब काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा, तुमको इतना भरोसा है इस पर। बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा, कर लेगा ये पूरा काम। बोले हाँ, वो पहली मुलाकात थी।
0: वाह वाह वाह, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है।
2: नौशाद साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ, तो बोले ठीक है तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी, वो बैठते थे, एक सामने कुर्सी थी
0: जी जी,
2: जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूँ, तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
0: आज भी है वो उसी जगह,
2: आज भी वो कुर्सी, और उस कुर्सी पर
0: रफी साहब भी बैठते थे,
2: बड़े बड़े सिंगर बैठे
0: जी,
2: गुलाम अली साहब से ले आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के, रफी साहब, लता जी, आशा जी, सब उस कुर्सी बैठते, वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे जी। आओ उत्तम, आओ उत्तम साहब, ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है
0: जी जी।
2: तहजीब और इज्जत
0: जी,
2: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
0: क्या बात है,
2: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना
0: जी,
2: कभी तुम बोलते नहीं सुना, तो मुझे उत्तम साहब, तो मैं उनको जी, नाम तो मैं उनका ले नहीं सकता था तो जी जी जी करके बात करता था, या अंकल बोल देता था। कल सफी मियां आपको छोड़ के गए और कह गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का? मैंने कहा जी आप जो दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप बताओ क्या लोगे। ये देखिए ये बात है 72 की
0: जी जी,
2: क्या उम्र होगी मेरी, 48 58 68, 24 साल की उम्र
0: जी जी,
2: 23 24 के
0: जी।
2: तो मैंने कहा अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए
0: जी,
2: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। हंस पड़े, बोले हाँ सही बात। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूं।
0: अरे बाप रे,
2: उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का।
0: हाँ।
2: मैंने कहा अंकल 750 रुपये रखेंगे आने का।
0: हाँ हाँ।
2: वैसे उस टाइम पे 200 250 300 रुपये में काम कर रहे थे लोग,
0: तो ये 3 गुना मांगा,
2: 750 रुपये आ गए
0: जी।
2: बोले ठीक है,
0: 750 रुपये एक गाने
2: एक गाने का।
0: गजब,
2: बोले ठीक है। और यूनुस साहब ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो, वो जो बोलेगा वही करना।
0: वाह।
2: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया।
0: बाप रे, 35 साल नौशाद साहब के साथ काम करना, मतलब एक पूरे युग को जीना,
2: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम हाँ कितना नजदीक आ गए होंगे, कितना समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहाँ गई सीखने के लिए।
0: अच्छा।
2: हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है
0: जी।
2: तो प्रीति बोले डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अबू के पास, अबू के पास ले चलिए। मैं ले गया, वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा, मैं उत्तम हो गया।
0: वाह वाह वाह वाह, प्रीति की वजह से ही हुआ।
2: प्रीति की वजह से, मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, वो इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो मतलब वो अबू और वो प्रीति, अबू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं। उत्तम कहाँ है? मैं कहा बड़े बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग जब
0: नाम लेके पुकारे,
2: नाम लेके पुकारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी,
2: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे।
0: हाँ।
2: पता नहीं क्या बात है।
0: अरे
2: हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो, उत्तम जी आ गए बेटा।
0: वाह।
2: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया, और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था।
0: जी, नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे, यहाँ पहले उनका एक गाना सुनते हैं। अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है, उसको
2: नहीं, पहले नौशाद साहब का एक गाना सुना दीजिए जो मेरा उनके साथ पहला गाना है।
0: जी,
2: माई फ्रेंड का गाना है वो।
0: हाँ हाँ,
2: रफी साहब का गाया हुआ गाना है, नैया मेरी बहती जाए, ये मेरा पहला गाना उनके साथ।
0: वाह वाह वाह, ये सुनते हैं, उसके बाद
2: ये सुनिए, उसके बाद फिर हम मदन साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी, ये गाना हमने सुना। एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का,
1: जी जी,
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुनाया है। हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी, ये शायद 1963

0: 64 की बात होगी,
1: जी
0: जब उनके यहाँ डैडी 2-3 दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं,
1: हाँ बहुत बिजी थे। हाँ
0: बिजी रहते थे। और उस टाइम पे म्यूजिशंस जाते थे सुनाने, तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4थी बार चांस मिल गया। मदन साहब मिल गए बाहर, उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके,
1: जी जी
0: वो बाहर बैठे हुए। तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूरी साहब अंदर गए, तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके, हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए, नमस्ते की उनको, हाँ जी आइए आइए बैठिए। बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सो एंड सो है। ये कौन है? बोलते इज माय फादर, मेरे डैडी बोलते हैं उनको, इज माय फादर। तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू यू मीन सर? वो कहते हैं ना, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन। यू मीन दैट? यस। हाँ क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है। अच्छा सुनाओ। तो मैंने वायलिन खोली, और वही पोल का बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया। तो फेलिक्स
1: की दास्तान आप पहले बता चुके हैं,
0: फेलिक्स हेल्डे साहब ने वो पोल का सिखाया था।
1: जी
0: वो पोल का, कुछ 9-10 मिनट का है, और वो पोल का ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है। तो वो सुनते रहे
1: जी,
0: क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने सब देखा हुआ था। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। 10 मिनट के बाद में जब मैं ऐसे, मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे। फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ। तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया,
1: गजब।
0: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया।
1: वाह।
0: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए। यूनुस जी आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है आई वॉज कंडक्टिंग।
1: क्या बात है, मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे, तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा।
0: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था
1: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरे ख्याल है 1975 में आई थी ये फिल्म।
0: तो
1: मौसम,
0: हाँ, इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी। तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था।
1: मास्टर जी यानी सोनिक जी,
0: सोनिक साहब। हाँ, इनका एक अरेंजर आ गए थे ज्ञान वर्मा,
1: जी जी जी,
0: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा, उसके बड़े भाई, जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था।
1: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे,
0: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे, अरेंजर मुझे याद नहीं।
1: जी
0: जी, रवि साहब क्या उन्होंने बहुत काम,
1: हाँ
0: रवि साहब क्या बहुत काम किया। तो हम सब बजाते थे साथ में, ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था। तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग, तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए। तो मदन साहब आए 9:45 के करीब,
1: जी
0: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब। हाँ ज्ञान सुनो। तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने। फिर उन्होंने बोला म्यूजिक 1 सुनाओ, म्यूजिक 1 सुनाया। तो वो बैठ गए, एक्चुअली खड़े हुए थे तो कुर्सी में बैठ गए, और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
1: पसंद नहीं आ रहा है
0: कुछ, इनको म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। तो गाना था हर तरफ अब यही अफसाने, तो ये गाना था, और मैं बजाते चले गया।
1: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गाना,
0: हिंदुस्तान की कसम, और मैं ये गाना बजाता चले गया। 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है और एक लड़का वायलिन बजा रहा है।
1: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा
0: उसके
1: है,
0: उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहता।
1: ये किस धुन पे किया था?
0: पता नहीं, आई डोंट नो
1: जी,
0: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
1: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर था।
0: लेकिन लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा
1: जी,
0: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था।
1: हाँ
0: मैं उनका ही गाना दारारी रारी यही बजा रहा था। बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया
1: अपनी तरफ से,
0: अपनी तरफ से बज गया।
1: वाह,
0: मैंने जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया। तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते व्हाट डिड यू प्ले? मेरे तो पसीने छूट गए, एसी में मुझे पसीना आ गया। सर आई सेड सर नथिंग, व्हाट डिड यू प्ले जस्ट नाउ? एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी। मैंने, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ अपने, सर या आई प्लेड दिस।

0: जान, ये जो उत्तम बजारा है ये फर्स्ट म्यूजिक होगा एंड सोलो वैलिड होगा एंड उत्तम विल प्ले सोलो वैलिड।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: यहां से यूरजी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन,
0: बहुत गानों में सोलो बजाया
1: जी। कुछ गानों का जिक्र हो जाए,
0: मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं
1: जी।
0: हाँ, ये गाना याद है मुझे।
1: जी
2: हर तरफ

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का पहला

रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: ऋषि पाठक की आवाज में यह पारंपरिक भजन आप सुन रहे थे। हनुमान अंश फिल्म से ऋषि पाठक का ही संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

प्यार का पहला खत इस एल्बम से आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये कलाम जिसे लिखा राजेश रेड्डी ने। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कासिम कुरैशी का कलाम भूपेंद्र सिंह की आवाज में और इसे हमने लिया है नशीमन एल्बम से।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

इंतजारे सबा इस एल्बम से पंकज उदास की आवाज में आप सुन रहे थे जमीर काजमी का कलाम। अली गनी ने इसे संगीत से सजाया।

0: उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

रूप कुमार राठौर, सोनू निगम और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सरफरोश फिल्म से ये गीत, इसरत अंसारी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मोहब्बत कर ले। इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे शामक दावर और साथियों की आवाज, तरुण आनंद, नितिन रायकवाड़ के बोल और राम संपत का संगीत।
1: जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

आई लव यू इस एल्बम से उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा फैज अनवर ने, संदेश शांडिल्य का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

ये हसी पल यू न खोना, दूर मुझसे अब तू न हो ना, फासले आजा मिटा दे लग जा गले।

गणेश हेगड़े की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। मनोज संतोषी और विजय शर्मा ने इसे, माफ कीजिएगा, वीकी शर्मा ने इसे लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे विविध भारती पर रंग तरंग, और अब आपको सुनवाते हैं सुनो तो दीवाना दिल, इस एल्बम से कमाल खान की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है वीके मेहता ने, कमाल खान का संगीत।

सुनो तो दीवाना दिल इस एल्बम से आप सुन रहे थे कमाल खान की आवाज में गीत वी के मेहता के बोल, कमाल खान का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कैलाश खेर की आवाज में सुनिए अगला गीत जिसे उन्होंने लिखा है। कैलाश खेर, परेश और नरेश ने संगीतबद्ध किया है। एल्बम है कैलाशा।

कैलाशा, इस एल्बम से कैलाश खेर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगुनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकुवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने 2रा स्थान प्राप्त किया जबकि चीर ने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुंटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

गीत गाता चल। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। आज है फिल्मकार ताराचंद बड़जात्य की पुण्यतिथि, तो उनकी फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते नदिया के पार फिल्म से ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि पर उनकी फिल्मों के गीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपने सुना दोस्ती फिल्म के इस गीत में। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जीवन मृत्यु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या को याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर उन्हीं की फिल्मों के गीतों के जरिए। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत उपहार फिल्म के इस गीत में।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन के बोल। उन्हीं के संगीत से सजा था ये गीत सौदागर फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं अखियों के झरोखों से। इस फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं संगीत और बोल रविंद्र जैन का।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बरजात्या की फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं।

चित्चोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे येसुदास और हेमलता की आवाजों में, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं पिया का घर फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। येसुदास हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों के बाद।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये जानकारी देने की सूची में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
2: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
3: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
2: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नबीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबिक खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुनटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कांग्रेस प्रदेश अनुशासन समिति ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साफ को पार्टी विरोधी बयानबाजी पर जारी किया कारण बताओ नोटिस, 3 दिनों में मांगा जवाब। राज्य में एसआईआर पर छिड़ी राजनीतिक जंग, भाजपा ने प्रक्रिया को बताया पारदर्शी तो झामुमो ने वोट बैंक को निशाना बनाने का लगाया आरोप। रांची स्थित आईआईएआरजी ने मनाया 130वां स्थापना दिवस, वैज्ञानिकों के बीच आपसी समन्वय और अनुसंधान गतिविधियों को साझा करने पर दिया गया जोर। धनबाद के सिंफर लेडीज क्लब की आदिवासी महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़ने की अनूठी पहल। मोटे अनाजों से पौष्टिक खाद्य उत्पाद बनाने का दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। और प्रकृति पर्व कर्मा की पूर्व संध्या पर राज्य में उत्सव का माहौल, रांची के मोराबादी में ट्राइबल फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मची धूम। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन कमेटी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पार्टी विरोधी बयानों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कमेटी के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव ने उन्हें 3 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। हाल ही में मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और गठबंधन नेतृत्व के खिलाफ उनके आपत्तिजनक बयानों को गंभीरता से लेते हुए ये कार्रवाई की गई है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दुमका में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है।
1: इन लोगों के गलत नीतियों, चोरी को रोकने के लिए एमएमडीआर एक्ट आया है। भारत के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जिस तरह उड़ीसा का कोयला बिकता है, छत्तीसगढ़ का कोयला बिकता है, बंगाल का कोयला बिकता है, उसी तरह झारखंड का कोयला बिके। ये केवल कमीशन खोरी मारपीट, आपको पता है बीसीसीएल के चेयरमैन के ऊपर चार जो है एससी एसटी के केस डाल, क्योंकि चोरी चकारी करना है तो चोरी चकारी रुक जाएगी, इस कारण से इतनी बड़ी समस्या है।
0: झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने एसआईआर मामले पर भाजपा पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा गैर भाजपा मतदाताओं को निशाना बनाकर मतदाता सूची से उनके नाम कटवा रही है ताकि जनाधार खसकने के बाद भी उन्हें आगामी चुनावों में फायदा मिल सके।
2: जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, उनको टारगेट करके उनका नाम डिलीट करते हैं ये। खास करके झारखंड में तो अभी कोई जनाधार ही नहीं है भाजपा का, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा वोट वो काटेंगे हर समुदाय हर तबका का, ताकि उनको आने वाले दिनों में राहत मिले, चुनाव में वो जीत दर्ज।
0: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एसआईआर नोटिस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी है।
3: तो मुझे लगता है ये तो एक शानदार उदाहरण है कि कहीं भी विसंगति पाई जाती है तो कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, वो एक बार इलेक्शन कमीशन जरूर उसकी तहकीकात करता है। और तहकीकात करने का मतलब ये थोड़ी कि वो डिलीट हो गए, वो डॉक्यूमेंट्स देंगे, नाम उनका आएगा। यार डिलीशन का कोई इश्यू नहीं है, किसी की भी थोड़ी सी विसंगति पाई गई तो नोटिस होता है कि साहब आप अपने पक्ष को रखें।
0: धनबाद स्थित देश के प्रमुख शोध संस्थान सीएसआईआर सिम्फर का लेडीज क्लब आदिवासी महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और स्वावलंबन से जोड़ने की अनूठी पहल कर रहा है। क्लब के अध्यक्ष मीरा मिश्रा ने बताया कि महिलाओं को मिलेट्स यानी मोटे अनाजों के पोषक तत्वों की जानकारी के साथ साथ इससे आधुनिक खाद्य उत्पाद तैयार कर स्वरोजगार अपनाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
4: हमारी एक छोटी सी पहल है, हमारा एक था कि स्वास्थ्य से स्वावलंबन की ओर इनको ले जाना है। ये लोग मेहनत तो बहुत करती हैं, लेकिन इनको जागरूक नहीं है। ये कोई एनीमिया से ग्रसित होती है, खून की कमी होती है, किसी के हड्डियों में दर्द होता है, आजकल पोलियो की बहुत बीमारी चली हुई है, बहुत सारी समस्याएं इनको रहती है, लेकिन इनको पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है।
0: भारतीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में कल संस्थान का 103वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि संस्थान के उप महानिदेशक डॉ. राजवीर सिंह ने वैज्ञानिकों के बीच समन्वय पर जोर दिया। इस अवसर पर वार्षिक पत्रिका लाक्षा 2026 का विमोचन किया गया और हिंदी पखवाड़ा के विजेताओं को सम्मानित किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में पेश है आकांक्षी जिला योजना पर हमारी ये रिपोर्ट।
5: नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला चतरा जिला आज औद्योगिक और सामाजिक उन्नति की नई मिसाल है। बीते 10 वर्षों में यहां स्थापित 1980 मेगावाट का NTPC पावर प्लांट और पेपरवार में कोल इंडिया का 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट देश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। इस विजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है,
6: साथियों, इन 100 से ज्यादा पिछड़े जिलों में जिसे हम अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, 20% बस्तियां ऐसी थी जिन्होंने आजादी के बाद से सड़क ही नहीं देखी। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से अब ऐसी ज्यादातर बस्तियों को भी सड़कों से जोड़ा जा चुका है।
5: औद्योगिक तरक्की के साथ साथ चतरा की 70% कृषि आबादी अब विज्ञान और नई तकनीक के बल पर आत्मनिर्भर बन रही है। जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार और कृषि विज्ञान केंद्र चतरा के सघन प्रशिक्षण से यहां के किसान अब परंपरागत खेती छोड़ वैज्ञानिक पद्धति और मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ा रहे हैं। लाभुक इस बदलाव की कहानी खुद सुना रहे हैं।
7: मैं धनंजय तिवारी, पूर्व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चतरा। आकांक्षी जिला से चतरा जिले को एक लाभ मिला है कि चतरा पहले उग्रवाद और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था और आज पिछड़ापन भी दूर हो रहा है और उग्रवाद भी समाप्त के कगार पर पहुंच चुका है।
8: चतरा जिला एक कृषि प्रधान जिला है। केंद्र प्रायोजित PM कुसुम योजना और केंद्र किसान और किसान कल्याण मंत्रालय की DGCS ऐप सुविधा किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।
5: स्पष्ट है कि चतरा आज झारखंड में जस्ट ट्रांजिशन और ग्राम विकास का एक रोल मॉडल बन चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए चतरा से डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: लोक पर्व कर्मा कल पूरे राज्य में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज पूर्व संध्या पर मोरहाबादी में सांस्कृतिक उत्सव आयोजित हो रहा है जिसमें ट्राइबल फैशन शो मुख्य आकर्षण है। रांची नगर निगम ने सभी 289 सरना स्थलों और अखड़ा में साफ सफाई और पेयजल की पुख्ता व्यवस्था की है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,50,000 रुपए प्रति किलो है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 461 अंक बढ़कर 74,756 पर और निफ्टी 55 अंक बढ़कर 23,401 पर था। और अब मौसम। राज्य में आज से 26 सितंबर तक मौसम का मिजाज बेहद खराब रहेगा। मौसम विभाग ने आज राज्य में गरज चमक के साथ तेज हवाओं और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। कांग्रेस प्रदेश अनुशासन समिति ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साफ को पार्टी विरोधी बयानबाजी पर जारी किया कारण बताओ नोटिस। 3 दिनों में मांगा जवाब। राज्य में SIR पर छिड़ी राजनीतिक जंग। भाजपा ने प्रक्रिया को बताया पारदर्शी तो झामुमो ने वोट बैंक को निशाना बनाने का लगाया आरोप। रांची स्थित IIARG ने मनाया 130वां स्थापना दिवस। वैज्ञानिकों के बीच आपसी समन्वय और अनुसंधान गतिविधियों को साझा करने पर दिया गया जोर। धनबाद के सिम्फर लेडीज क्लब की आदिवासी महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़ने की अनूठी पहल। मोटे अनाजों से पौष्टिक खाद्य उत्पाद बनाने का दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। और प्रकृति पर्व कर्मा की पूर्व संध्या पर राज्य में उत्सव का माहौल। रांची के मोरहाबादी में ट्राइबल फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मची धूम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने दिया और हमारे साथी अलग अलग बातें भी लिख भेज रहे हैं। हमारे साथी मोहम्मद रफी की आवाज पहचानना तो बिल्कुल पहचान ही सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुबान से तो झूठ पकड़ा नहीं जाता मगर आंखें सब बयां कर देती हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जो बात जुबान नहीं बोल पाती आंखों से पता चलता है। कई बच्चे तो आंखों में ही डरते हैं, इन्हीं आंखों में हम कई सपने सजाते हैं लेकिन आंख खुली और सपना जैसे आंखों से ओझल हो जाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि क्या कोई बता सकता है कि मेरा कमेंट शामिल क्यों नहीं होता, शायद किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता। तो शायद जवाब भी आपको साथ ही साथ आपने दिया है। हालांकि कमेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी कुछ कमेंट्स उनमें गुम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने आपकी बात पढ़ी हो तो हम जरूर उसे शामिल कर लेते हैं। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि जब आंखों में आंसू हो और दिल जानता हो कि इन आंसुओं की वजह कौन है, फिर भी दिल उसी के लिए सजा नहीं दुआ मांगे, तो समझिए वहां नफरत से कहीं ज्यादा दोस्ती और इंसानियत बची हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नयन निगाहें आंख लोचन चक्षु पर बातें होंगी। आंखों का एक गुणधर्म है, वो अधिक खुशी और गम दोनों पर छलक जाती हैं। वाह क्या बात आपने कही। और एक खेल हुआ करता था जो बचपन में हम खेला करते थे, जिसमें एक दूसरे से नजरें मिलाकर रखे रहना होता था बहुत लंबे समय तक, और जो पहले पलकें झपकाता था वो हार जाता था। तो क्या आपने वो खेल खेला है और क्या आप उसमें जीता करते थे या नहीं, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम इस गाने को जब सुनते हैं जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, तो अजीब सी उधेड़ बुन में होता हूँ कि नजरों का निशाना भी कहीं चूक जाता है। ये तो ऐसा कमाल का हथियार है कि बिना किसी रसायन बिना टेक्नोलॉजी का ऐसा बम है कि जिस पर गिरता है हाय करके बस रह जाता है। आमना सामना हुआ कि दुश्मन चारों खाने चित, वो दाएं बाएं भाग भी नहीं सकता, खुद ही शिकार के पास पहुंच जाता है और समर्पित भाव से निवेदन करने लगता है कि दिल जिगर के साथ मेरी सारी संपत्ति सब तुम्हारा है, बस हमारी जान बख्श दो। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने मजे के तौर पर लिख दी है, लेकिन कभी कभी तो निशाना चूक भी सकता है। तो क्या कभी निशाना चूका आपका, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी ने बड़ी मजाहिया बात लिखी कि आंखों ही आंखों में मोबाइल बस गया, देखते ही देखते चश्मा लग गया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, हमें सारी बातें आप बताइए। और कार्यक्रम ही कुछ ऐसा है जिसमें आपकी बातें आप हमें बता सकते हैं, जो कार्यक्रम में शामिल भी हो सकती हैं। और कार्यक्रम में आप शामिल हो रहा है एक ऐसा गीत जिसके बारे में आप हमें बताइए कि किस फिल्म का गीत है।
1: झुके जो तेरे नैना

कंगन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजों में। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जब दो दिल एक दूसरे की धड़कन सुनने को बेताब हों तो दिल की बातें बताए बिना नहीं रह सकते, पर परिस्थिति बस कहा भी ना जाए तब भी आंखें एक दूसरे से बात करती हैं, कोई शोर नहीं करती पर चोर जरूर करती हैं। वही हमारे एक साथी का कहना है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो किसी के सामने कुछ भी बोल देता था, और जब मैं आंख से इशारा करती कि चुप रहे तो सबके सामने बोलता था कि मम्मा आंख से इशारा करती हैं, तो सब हंसा करते थे। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अब बेनी बुनना सीख रही हूँ, 35 टाके की नातू के लिए इधर उधर ध्यान गया तो कांटा चूक गया। ऐसा होता है, मतलब उसमें नजर ध्यान रखना जरूरी है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के सभी पति अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नाचते हैं, यही सत्य है। भाई कितना सत्य है तो सब पति पत्नी ही बता सकते हैं। वही हमारे एक और साथी का कहना है, वो आंखों के बारे में कह रहे हैं कि निगाहों से शुरू हुआ जो सफर वो इशारों में खो गया, कभी हंसाया इन आंखों ने तो कभी अशकों में भिगो दिया एक नन्हा सा सपना जो सजाया था पलकों पर, न जाने वो पलक झपकते ही कहां गुम हो गया। तो हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि नजर भी अजीब शह है, दो की चार हो जाए तो प्यार कहलाती है, झुकी झुकी नजर हो तो प्यार का इजहार होती है, कुछ लोग बॉस की नजर में चढ़ने के लिए दिन को रात और रात को दिन कहने से नहीं चूकते, दूसरी ओर मेहनती आदमी देर से ही सही मगर नजर जरूर आता है, उधार लेने वाला नजरें चुराता है और वसूलने वाला उसे खा जाने वाली नजर से देखता है। भाई क्या बातें कही आपने। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब किसी से नजर मिलती है तो अक्सर बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह जाती है, आंखों में खिले छोटे से सपने, नजरों के इशारे और दिल में उठते प्यार की नजरें, प्यार की लहरें मन को एक अनोखी खुशी देती है, कभी नजरें उठती हैं तो प्रेम झलकता है, कभी झुकती हैं तो शर्म और अपनापन, और कभी आंसुओं में छिपा दर्द सामने आ जाता है, यही नजरों और नैनों के अनकही किस्से प्रेम को और भी खूबसूरत बना देते हैं। वैसे नजरों के या कहें आंखों के रंगों के ऊपर भी कहा जाता है अलग अलग भावों के लिए, कि जब कोई गुस्सा होता है तो आंखें लाल कर देता है, और इस तरह की बातें भी होती हैं। क्या आप भी ऐसे कुछ किस्से या बातें जानते हैं या कुछ कहावतें भी आप हमें बता सकते हैं, और साथ ही बता सकते हैं कि किस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहने कि मैं तो सोचती हूँ घर की शांति बनाए रखने के लिए आंखों से ही बातें हों तो दुनिया एक शांतिमय जगह हो जाए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि झुके तो तेरे नैना गीत बहुत दिनों के बाद सुना, उन्हें अच्छा लगा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आंखें नेमत हैं और शायद सबसे कीमती चीज जो हमारी है, जो हैं वो हमारी दो आंखें हैं। ये आंखें हैं जो हर भाषा को पढ़ने का हुनर रखती हैं। जीवन के सबसे कठिन पलों में अपने सबसे करीबी साथी को आंखों ही आंखों में सहारा देकर देखना। जीवन में जिसने आंखों की मूक भाषा पढ़ ली, समझ लो उसने आधी दुनिया का सच समझ लिया। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जहाँ शब्द अधूरे रह जाते हैं, नैनों के इशारे काफी होते हैं। हृदय की अनकही भावना बिना बोले नजर ही कह देती है। आंखों की हल्की सी हरकत, पलकों का उठना, शर्मा कर झुक जाना, यही प्रेम की पहली और सच्ची लिपि है, जिन्हें बिना छुए सिर्फ रूह महसूस करती है। वही हमारे एक साथी ने कहा कि आंखें माँ की ममता भी माँ की ममता भरी नजर के सामने सब फेल है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में पिता की आंखों की भूमिका ही प्रभाव डालती है। बच्चों और अन्य पर अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम आंख ही होती है। आंखों के इशारे से ही प्यार झलकता है, सहम भी जाता है और दुखी भी होता है। वही हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे कई बार स्कूल कॉलेज में कंफ्यूजन होता था कि स्कूल के टीचर मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं या पीछे वाले से। ये शायद टीचर जिस तरह से देखा करती होंगी उससे इन्हें ऐसा लगता होगा। हमारे एक और साथी ने एक बड़ा ही मजेदार किस्सा लिखा कि सालों पहले मैं मेरे पति का हाथ बटाने शॉप पे जाया करती थी। एक बार एक सेल्समैन आया जिनसे मेरे पति मिलना नहीं चाहते थे। उसने मेरे पति का नाम लेकर पूछा कि भाई साहब नहीं है, कब मिलेंगे। मैंने तिरछी नजर से उनकी तरफ देखा, उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे मना किया और मैंने सेल्समैन से कहा कि भाई साहब 2 दिन बाद मिलेंगे। 8 दिन बाद वो ही सेल्समैन मुझे मिला तो हंसकर पूछने लगा कि आप इतनी जल्दी कैसे भाई साहब के इशारे को पहचान गई, यानी कि उन्होंने देख तो लिया था लेकिन इस बात का मान रखा। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि कभी कभी हमें नजरों की भाषा समझ नहीं आती पर नजर लग जाती है, खासकर छोटे बच्चों को, नई ब्याहता बेटी बहू को ऐसा लोग कहते हैं, होता भी है। इसलिए हर माँ अपने बच्चों को

काजल का टीका लगाती है नजर से बचाने के लिए। भाई ये भी माँ की ममता का ही एक रूप है, लेकिन कभी कभी जब माँ गुस्से में आती हैं तो उनकी नजरें देखकर बच्चे का जो हाल होता है वो तो वही समझ सकता है। क्या कैसा ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ हमें बताइए, और हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत जिसमें आपको पहचानना है कि किस फिल्म का गीत है।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया और हमारे साथियों ने कहा कि नई फिल्म के गीत हैं, हमने हाथ खड़े कर लिए हैं। कोई बात नहीं, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंखें कभी प्यार छलकाती है, कभी आंसुओं से भर जाती हैं, तो कभी दर्द और बेबसी में सुलगते से अंगारे बन जाती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब दिल टूटता है तो सबसे ज्यादा सजा आंखें ही भुगतती हैं, जो हर एहसास को चुपचाप सहती हैं। निसंदेह ये कविता केवल आंखों के मेल मिलाप की नहीं बल्कि उस टूटे हुए विश्वास की कहानी है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। वही हमारे एक साथी का कहना है, कभी जो निगाहें दिल का हाल मुस्कुराकर सुनाती थी, आज वो पलकें आंसुओं का बोझ छुपाने में थक जाती हैं। वो नैनों की भाषा अब बस खामोशी से रोती है, जब मोहब्बत अधूरी हो तो रातें आंखों में ही कटती हैं। और एक और साथी का कहना है कि कभी कभी दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक नजर ही काफी होती है, और जब निगाहें मिलती हैं तो जैसे अनकहे इशारों में ही मोहब्बत की कहानी लिख दी जाती है। आंखों में सजते हैं छोटे छोटे सपने, फिर इंतजार करती पलकें, और कभी नैनों में प्यार छलकता है, कभी यही नजरें झुककर शर्माती हैं तो कभी दूर होकर यादों में बस जाती हैं। इनमें कभी विरह के आंसू उतर जाते हैं और कभी वही आंखें शिकायत बनकर सवाल करने लगती हैं। वही तो आंखों की खूबसूरत भाषा है जिसे दिल पढ़ लेता है, अगर उसे सुरों में ढाल दें तो एक सुरीला मधुर गीत बन जाता है। तो ये तो बात हो गई, एक सुरीला मधुर गीत आपका इंतजार भी कर रहा है इस कार्यक्रम में, और आपकी बातें तो आप भेज ही रही हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आप नजरों से या इशारों से कोई बात किसी को कहें लेकिन वो व्यक्ति आपकी बातें समझता ही नहीं या समझती ही नहीं, तो क्या करते हैं आप ऐसे मामले में? और हमें पूरा यकीन है कि जो गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आपको पता होगा किस फिल्म का ये गीत है, और नायक का नाम बताएंगे तो और भी अच्छा होगा।

बाजीगर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, शाहरुख खान इसमें नायक हैं और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, और अगर खुशी होती है तो आंखों में ही चमक पहले होती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि इस समय मेरी नजरें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के ऑफिशियल फेसबुक के पेज पर सुरीला सफर की पोस्ट पर है और कान रेडियो की तरफ, जो सुरीला सफर प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो उसका जवाब देने के लिए इस तरह से बिल्कुल लगे हुए हैं, ऐसा कहना होगा। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि जब देखूं गुलाबी लाल पीली अंखियां, ये बात तो एक डॉक्टर किसी मरीज से पूछते हैं, पता नहीं कौन से फिल्म का गीत है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि निगाहें कभी खामोश नहीं होती, बिन कहे भी बहुत कुछ कह जाती हैं, कभी प्यार की रोशनी बनती है, कभी दर्द की कहानी कह जाती है। किसी की एक निगाह में अपनापन मिलता है तो किसी की एक नजर में पूरा संसार। निगाहें दिल का आईना होती हैं, जो छुपा हो दिल में कर देती हैं इजहार। वहीं हमारे एक साथी ने एक सवाल पूछा है, बड़ा ही गंभीर सवाल। उनका कहना है कि अगर किसी की नजर लग जाए तो नजर उतारने के लिए क्या करें। भाई हमें तो इसके बारे में यही पता है कि अगर किसी की नजर लग जाए तो आप भी उन्हें नजर लगा दें। वैसे हमारे साथी बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आंखों के कलर की बात हो गई, रंगों की बात हो गई, तो कई रंग आंखों के हमने देखे हैं और उन पर गीत भी बने हैं, तो ऐसा कोई गीत आपको याद आता है और कौन कौन से रंगों की आंखें आपने देखी हैं, हमें बता सकते हैं। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। बताइए किस फिल्म का गीत किसने लिखा है।

0: आवारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। असर जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना। हमारे एक साथी कह रहे कि मैं तो इकलौता बेटा था, तो माँ की आंख का तारा था, कभी आंखें तरेर कर उन्होंने हमें देखा ही नहीं, ये हमें मतलब देखा हो ऐसा हमें याद नहीं। हाँ, पिताजी ने गुस्से में पढ़ाई को लेकर आंखें लाल पीली की तो माँ ने हमेशा बचाव किया, उनकी नजरें रास्ते पर टिकी रहती जब मैं स्कूल जा रहा होता या आ रहा होता। हमारे मास्टर ने स्कूल में एक बार दो डंडे मारे थे तो माँ मास्टर को खा जाने वाली नजरों से देखकर उन्हें ऐसी फटकार लगाई थी कि वे आंखें ही नहीं मिला पा रहे थे। सारे क्लास की बच्चों की नजरें मेरी माँ पर थी। कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी पूरी बातें नजरों आंखों और इन बातों पर लिखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, खुशी हो तो आंखों में चमक पहले होती है। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना कमेंट किया है जिसे हम हिंदी में कहने वाले हैं। हम वो कह रहे हैं कि आंखें सिर्फ हमारे चेहरे पर ही नहीं होती, बल्कि आंखें मानव शरीर में हर जगह होती। हमारे कान, हमारी जीभ, हमारे सूंघने की शक्ति, हमारे छूने की शक्ति, स्पर्श की, जो सारी चीजें होती हैं, वो सारी जो इंद्रियां होती हैं, वो उन सभी की अपनी अपनी एक आंखें होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार और सबसे ज्यादा नजर आने वाली ये जो आंखें हैं हमारी, वो हमारे दिल की आंखें होती हैं माफ कीजिएगा। और उनका कहना है कि इन आंखों से हम बहुत सी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन वो चीजें दूसरे लोग नहीं देख सकते। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हेलो, फरमाइश की रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हमारा नंबर नहीं लगता। भाई, हमारी तो यही उम्मीद है, यही हमारी शुभकामना है कि आपका नंबर भी जरूर लगेगा। लेकिन अभी नंबर आ गया है गीत का, तो दूसरा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और इस गीत को किस अभिनेता पर फिल्माया गया हमें बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए।
1: निगाहें मस्ताना देख, समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना। ओहो।

पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और देव आनंद इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात, आपने सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं, आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे नसीब में आंखें मिलाना लिखा ही नहीं था, बच्चे भी मुझसे नहीं डरते क्योंकि मैं शासन नहीं करना चाहती। और हमारे साथी कह रहे हैं कि आंखें मिलाने का खेल मैंने खेला जो हमने पूछा था और हमेशा मुझे हार मिली है। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नहीं नाच सकता और ये बात मेरे सभी दोस्त जानते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब कोई मेहमान आता था तब हम सारे बच्चे वहां घूमते टहलते रहते थे क्योंकि टेबल पर सजाई गई भोज्य सामग्रियां हमें खूब लुभाती थी कि शायद हमें भी कुछ मिल जाए, लेकिन फिर माँ और ताई जी आंखों से इशारा करती कि चलो भागो यहाँ से। जब उनका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता तो सीधे साफ शब्दों में बोला जाता कि जाओ बाहर जाकर खेलो। वहीं हमारे एक साथी कहने, ये आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी या फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे तो आंखें काली भूरी सुनहरी नीली देखी है, पर फिल्मी गीतों में गुलाबी आंखें और कत्थई आंखों वाली लड़कियां भी देखी हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गुलाबी आंखें छोड़कर सभी आंखें हमने देखी होंगी। और एक साथी कह रहे हैं कि पड़ोस में जब कोई मेहमान आता था तो अपनी बेटियों को आंखों के इशारे से समझा देती थी कि किस प्रकार की चाय और नाश्ता देना होता है। आंखों के रंग से मुझे एक बात याद आई, हमारे एक साथी ने कहा कि लंकापति रावण की आंखें हमेशा लाल हुआ करती थी। भाई इसके बारे में हमें तो कुछ नहीं पता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बांके बिहारी जी का वृंदावन में पर्दा जब बार बार बंद और खुलता है, ऐसा मानते कि ये छलियां हैं, कहीं किसी से अगर उनकी आंखें मिल गईं तो उसके साथ ही चल देते हैं। तो चलिए हम भी चल देते हैं इशारों इशारों में बातें करने, क्योंकि कार्यक्रम का अंतिम गीत पहुंच चुका है आपके सामने और अब आप बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और वक्त ने इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: United Nations that delivers for all. Tensions between the United States and Iran remain high, with both sides issuing fresh threats to each other, while there are also indications that diplomatic opening might be emerging in the conflict. Iran's military has claimed it has information about U.S. preparations to resume attacks on Iran and has warned that any new U.S. attack would trigger retaliation against American bases and interests across the West Asia region. IRGC said they would attack new targets and deploy new weapons if the U.S. launches further attacks on Iran. We have a report.
1: Iran has claimed that U.S. is preparing for launching fresh wave of attacks on them. IRGC said that they will retaliate any such action by attacking new targets and deploying new weapons on American bases in the region. While U.S. President Trump has warned Iran of severe economic and political consequences if it does not reach a deal, he also suggested that he is possibly open to meet Iranian President Pezeshkian at the UN General Assembly in New York. U.S. has also warned its citizens against traveling to Iran amid possibility of further escalation in the conflict. Shipping through the Strait of Hormuz continues to remain slow, but fall in oil prices today reflect hopes for some diplomatic solution. Manish Shiva for Akashvani News from Dubai.
0: Russia's ruling United Russia Party has taken the lead in the country's parliamentary election, according to preliminary results released by the Central Election Commission. The party secured about 57.5% of the vote, while overall turnout stood at 56.66%. Final results are expected by September the 25th. The United Russia Party won 324 seats in the previous election. The election took place amid the ongoing conflict with Ukraine and a major overnight drone attack launched by Kiev. Russian officials said more than 1,900 drones were involved, killing at least two people and damaging an oil refinery. In the Asian Games, India secured a double podium finish in the men's 10-meter air rifle event in Nagoya, Japan. Himanshu Dhillon won the silver medal with a score of 252.4, while Rudraksh Patil clinched the bronze with 230.9. Earlier, India had also won the silver medal in the men's 10-meter air rifle team events. In mixed martial arts, Suchikata Riyal bagged the bronze medal after losing 0-2 to Singapore's Hui Hoon Tsui in the women's 60-kilogram traditional semi-final. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. According to IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-New Zealand free trade agreement finalized comes into force on 20th October, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Union Minister Anupriya Patel says Indian pharmacopoeia gains recognition in 25 countries, reflecting the country's remarkable journey of self-reliance. Releases 7th edition of National Formulary in New Delhi. BJP says Congress is deeply influenced by communist ideology, condemns former Vice President Hamid Ansari's remarks. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to lead Indian delegation at 81st session of UNGA in New York. Russia's ruling United Russia Party takes lead in parliamentary election. IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटीए 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
3: This strategic partnership.
4: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
5: Today we have around 1150.
6: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
5: Which will make a big change in times to come.
2: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
5: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
6: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
5: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
2: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
6: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
7: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों, तेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमासानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
8: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के 4th चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
9: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
2: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
10: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
11: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
10: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
12: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
10: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक, पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
13: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मधुमति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं परवरिश फिल्म से ये अगला गीत। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के बोल, दत्ताराम वाडकर का संगीत।

0: आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं फागुन फिल्म के इस गीत में आशा भोसले को। कमर जलालाबादी ने से लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: फागुन फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले को। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा ओपी नैयर की तर्ज।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: सीआईडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सुनते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। जमशेदपुर के सरकारी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने सोमवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को साझा करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पोस्ट में कहा गया है, उच्च न्यायालय के निर्देश के 7 महीने बीतने के बाद भी जमशेदपुर के अस्पतालों और नर्सिंग होम में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। नेता प्रतिपक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वर्ष 2023 से 2026 तक झारखंड में हुई नियुक्तियों की सीबीआई जांच जरूरी है। गिरिडीह में भाजपा नेता ने कहा कि सरकार बिचौलिए को गिरफ्तार कर रही है जबकि बड़े अधिकारियों को बचा रही है। श्री मरांडी ने आधे दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लेते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की।
1: एससीसी और जेपीएससी के द्वारा 2023 से 2026 में जो भी नियुक्तियां उसमें से अधिकांश बेचा गया और आप तो उसके कई प्रमाण पहले सरकार इनकार कर रही थी, सीआईडी भी इनकार कर रहे थे।
2: जेपीएससी में एक ख्यामती की कार्रवाई हुई, बाकी जो बोर्ड के मेंबर है वो कहाँ है, अभी तक उनसे कोई पूछताछ ही नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सहयोग से माय भारत पोर्टल पर CSIR विज्ञान और नवाचार प्रश्नोत्तरी शुरू की है। युवाओं के लिए तैयार यह प्रश्नोत्तरी 20 से 26 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद स्थित देश के प्रमुख शोध संस्थान CSIR सिम्फर का लेडीज क्लब आदिवासी महिलाओं के साथ स्वास्थ्य, पोषण और स्वावलंबन से जोड़ने की अनूठी पहल कर रहा है। क्लब की अध्यक्ष मीरा मिश्रा ने बताया कि महिलाओं को मिलेट्स यानी मोटे अनाजों के पोषक तत्वों की जानकारी के साथ साथ इससे आधुनिक खाद्य उत्पाद तैयार कर स्वरोजगार अपनाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजमहल के झामुमो सांसद विजय हांसदा ने कांग्रेस नेता योगेंद्र साव की ओर से सरकारी अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने कहा कि सरकारी कार्यों में बाधा डालने वाले के साथ सरकार सहयोग नहीं करती।
3: मेरा यही सबसे निवेदन रहेगा कि सही कार्य के लिए अगर आप लड़े तो उसमें मुख्यमंत्री और सभी का सपोर्ट आपके साथ रहेगा, लेकिन जहां पे कि सरकारी कार्य अगर कुछ हो रहा है और उसमें बाधा करने का प्रयास हो रहा है और उसके बाद अगर चाहे कि सरकार की ताकत हमारे साथ रहे, तब तो वो कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर जा रहा है।
0: रांची के धुरवा स्थित जुडिशियल एकेडमी में 4 अक्टूबर को अधिवक्ताओं और लिपिकों के लिए एक दिवसीय ऑफलाइन ई कोर्ट्स और केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम CIS पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में अदालती कामकाज के दौरान डिजिटल तकनीकों और ई कोर्ट सेवाओं के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण के लिए राज्य के विभिन्न जिलों और अनुमंडलों के बार एसोसिएशन से अधिवक्ता मास्टर ट्रेनरों का नामांकन किया गया है। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने पाकुड़ परिसदन में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और उसका निदान निकालने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि SIR की वजह से प्रशासनिक अधिकारियों की व्यस्तता है, इसके बावजूद लोगों की समस्याओं का निदान हो, अधिकारी यह सुनिश्चित करें। प्रकृति पर्व करम कल पूरे राज्य में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज पूर्व संध्या पर मोरहाबादी के दीक्षांत मंडप में करम पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ट्राइबल फैशन शो मुख्य आकर्षण है। रांची नगर निगम की ओर से राजधानी के सभी 289 सरना स्थलों और अखड़ा में साफ सफाई और पेयजल की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: माही सहेली
1: हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। चंचल वर्मा का और हम स्वागत करते हैं सखी सहेली कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का, सखियों का, सखाओं का। और नमस्कार नेहा आपको भी।
2: नमस्कार चंचल जी आपको और सभी सुनने वालों को भी। नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: तो आज इस मंच पर बहुत दिन बाद हम मिले हैं और बताते हैं कि आज किन विषयों पर हम मिलजुल कर बात करने वाले हैं अपने सुनने वालों के साथ।
2: हाँ, ये आपने सही कह दिया कि सुनने वालों के साथ किन विषयों पर बात करने वाले, क्योंकि हम तो आपस में बहुत सारे विषयों पर बात करने वाले हैं। लेकिन आज कथा सुधा में बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसका दूसरा भाग हम सुनने वाले हैं।
1: तो बिल्कुल हम इस बात को नहीं भूले हैं कि पहला भाग सुन चुके हैं सुनने वाले और दूसरा भाग सुनेंगे। तो भूलने से मुझे याद आया कि भूलने की जो धीरे धीरे शुरुआत होती है, आगे चलकर ये एक बीमारी में भी तब्दील हो सकती है। तो इसके शुरुआती लक्षण जब हो तभी से पहचान लेना चाहिए, यानी कि हम बात करें अल्जाइमर या डिमेंशिया, इस तरह की बीमारियों की। और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है, इस पर कुछ बातचीत होगी।
2: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और मन में शांति बनी रहती जब अच्छा खाना खाने मिले, इसलिए प्रादेशिक व्यंजनों में आज हम लाए हैं कश्मीरी व्यंजन हाक साग और ल्योदूर चमन।
1: तो ये हाक साग जो है ना, कुछ कुछ पालक से मिलता जुलता साग होता है, लेकिन बनाने की विधि सबकी थोड़ी अलग होती है। तो हमारे श्रोता वो हमें भेज रहे हैं इसकी रेसिपीज, वो हम बाद में सुनेंगे और पढ़ेंगे इसे। लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।
2: हाँ,

0: ये बहुत सुंदर गाना था ना। और बहुत दिन बाद जब ऐसा गाना सुनते हैं ना तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। बहुत दिन पहले गाना मैंने सुना था और कहते ना कि हम भूले नहीं इस गाने को,
1: जी
0: और आज याद आई तो हमने लगा दिया।
1: तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने, हमें भी याद दिला दिया जो हम तो भूल ही चुके थे इस गाने को, या कहें कि हमें तो पता नहीं था इसके बारे में।
0: और क्या होता है जब कोई चीज हम किश्तों में सुनते हैं ना, इनकी एक भाग सुना ना सुना दूसरा, तो वो अधूरापन सा रह जाता है। इसी तरह से कोई कहानी है, आधी सुन ली हो आधी ना सुने, तो वो बड़ी उत्सुकता रहती है जानने की कि आगे क्या होगा। तो कथा सुधा में जिन्होंने ये कहानी पहले सुनी है, बड़े भाई साहब पहला भाग, तो उन्हें उत्सुकता है इसका दूसरा भाग सुनने की। तो देर नहीं लगाते हैं, सुनवा देते हैं कहानी
1: जी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना,
4: अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा, भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
5: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
4: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
3: आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
4: लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास

0: पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन डाले। मैं और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस समय अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले,
1: अरे रे रे, इन बाजारी लाउंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो 1वें दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट थे। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौओं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझ

0: मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजर्बा है। चाहे तुम MA, DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं पढ़ पाए। लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराएं न बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ कमाया है और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA है कि नहीं, यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1,000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम करता कौन है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं।
1: मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, जी हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले,
0: कनकवे उड़ाने को मन नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है।
1: संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक झुंड पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: नेहा, अभी हम सुन रहे थे कथा सुतामय बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग, और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है।
1: जी
0: तो हमारे सुनने वाले भी बताएं कि क्या उनके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो चीज़ों को भूल जाते हैं और वो उनकी इस चीज़ को देखा अनदेखा कर रहे हैं। हमारी सखियां अक्सर कई बार अपनी चीज़ों के साथ में बहुत चीज़ों को हल्के में लेती हैं,
1: हाँ
0: और जब हल्के में हम चीज़ों को लेते हैं तो आगे चलकर वो कोई बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल हम सुन लें एक गीत।
1: जी

नेहा, अभी हमने सुना सीआईडी फिल्म का गाना जिसमें आवाजें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे।

0: का उपचार कैसे करना है और इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होती है। और 1994 में इस दिन की शुरुआत हो गई थी। अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल यानी कि ADI नामक एक संस्था है, उसने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर पहली बार इस दिन को मनाया। 2012 से पूरे सितंबर महीने को ही वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के रूप में भी हम मनाते हैं।
1: हाँ, और अल्जाइमर या डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है अल्जाइमर जो है। WHO के अनुसार दुनिया में करीब 55 मिलियन से ज्यादा लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, और इसमें लगभग 60 से 70% मामले अल्जाइमर के ही हैं। और एक एक बात के तौर पर अगर हम बताएं तो हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले इसके सामने आते हैं। और इस समस्या को सामने आने पर दिमाग में बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जमा होने से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, और इसका ही नतीजा होता है कि याददाश्त और सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
0: बिल्कुल। और ये महिलाओं के साथ में मैंने भी, जो हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, घर की ही महिलाएं हैं, कईयों से सुना है कि धीरे धीरे ना चीजें वो भूलने लगती हैं, लेकिन इन
1: जी
0: चीजों को अगर हल्के में ले लेंगी तो वो समस्या बड़ा रूप ना ले। इसीलिए इसके बारे में चेत जाना पहले से जरूरी होता है।
1: जी
0: और जब हम ये दिन मनाते हैं जागरूकता के लिए, तो हर साल कोई ना कोई एक थीम भी होती है, और इस साल जो थीम रखी गई है वो है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू डिमेंशिया डायग्नोस मैटर्स। इसका मतलब है कि जितना जल्दी जल्दी आपको पता लगेगा उतना जल्दी आप कर पाएंगे। और ये थीम नेहा इसलिए भी रखी गई है क्योंकि इस साल इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि समस्या का निदान जल्दी होने पर इसका इलाज, देखभाल और सहयोग सही समय पर जो भी पीड़ित है उनको मिल
1: जी।
0: सके।
1: और वाकई अगर किसी शुरुआती लक्षण में ही जब हम पहचान लेते हैं तो जल्दी आसानी से हम उसका इलाज भी करवा
0: हाँ
1: सकते हैं। तो जैसे ही कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो नजरअंदाज ना करें, जैसे कि हाल में ही बातें बार बार आप भूलने की आपको ऐसी
0: जी
1: आदत नजर आ रही, रोज के काम करने में भी अगर दिक्कत आने लगे, समय और जगह को लेकर अगर भ्रम होने लगे, या बोलने में सही शब्द आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहते हैं, या आपका मूड और व्यवहार अचानक बदल रहा है, तो इस तरह की जो लक्षण है, मतलब आमतौर पे हम छोटी मोटी चीजें भूलते
0: जी
1: हैं जो कि आम है, लेकिन कुछ ऐसा भूल जाना कि आपने कभी तुरंत ही वो किया है,
0: यस
1: किस
0: बिल्कुल
1: जगह हैं
0: ऐसा।
1: आप, अगर ऐसा आप हो रहा है तो फिर आपको इस पर ध्यान देना बहुत
0: और कई
1: जरूरी
0: बार
1: है।
0: किसी चिर परिचित को हम जानते हैं लेकिन उसका चेहरा याद है, हम उसे पुकारना चाहते हैं लेकिन उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा होता है।
1: हाँ
0: हमें कोई चीज किसी से मंगवानी है कि भाई वो चीज हमें लाकर दे दो, लेकिन उस चीज का हमें नाम याद नहीं आता है। आपको अगर पेन मंगाना है, कोई किताब मंगानी है,
1: हाँ
0: तो आपके सामने उसकी छवि पूरी है लेकिन आप सामने वाले को बयां नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका नाम आपके जहन में नहीं होता।
1: हाँ
0: तो यही इस तरह के लक्षण होते हैं। और भारत में हम देखें तो लगभग 53 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, और पहले गांवों में इसे बुढ़ापे की समस्या समझकर लोग
1: हाँ
0: नजरअंदाज करते कि समय है, उम्र बढ़ रहा है, तो ये चीजें होना लाजमी है, लेकिन इस बारे में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और वैसे तो कहना चाहिए कि पूरा कोई पक्का इलाज है नहीं इस समस्या का, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं तो इसके जोखिम को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं।
1: हाँ जैसे कि हम रोजाना अगर व्यायाम करते हैं या योग करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, धूम्रपान और मदिरापान से दूर होते हैं, सामाजिक मेलजोल ज्यादा बढ़ाते हैं, दिमागी कसरत की चीजें होती है जैसे किताबें पढ़ना या वर्ग पहेलियां जो आती हैं, अलग अलग तरह की पहेलियां हल करना, तो ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है तो इन्हें कंट्रोल में रखने की भी हम अगर कोशिश करते हैं तो इससे भी बहुत फायदा होता है। साथ ही अगर हम अच्छी नींद लेते हैं और अपने तनाव को कम करते हैं तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल। और हम कह सकते हैं कि ये जो दिन हम मना रहे हैं इसका संदेश भी यही है कि भूलने को उम्र का कोई सामान्य हिस्सा नहीं समझे कि
1: जी
0: भाई उम्र बढ़ रही है तो ये समस्या आनी ही है, ऐसा नहीं है। इसकी जल्दी अगर पहचान कर लेते हैं, सही जानकारी हो इसकी, तो परिवार का प्यार अगर हमें मिलता है तो वही इसकी सबसे बड़ी दवा है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक
0: और
1: साथी ने लिखा है कि विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल ADI की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और आगे उन्होंने बताया कि नामकरण इस मानसिक बीमारी का नाम जर्मन मनोचिकित्सक और न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1901 में पहली बार एक महिला में इस विकार की खोज की थी।
0: इसी तरह से एक और संदेश हमारे पास आया है। इस संदेश में लिखा गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय अच्छा, ये तो शांति दिवस के बारे में, तो जब हाँ, शांति की बात करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल। अभी तो हमने अल्जाइमर के बारे में बात की, और भूलने की जो समस्या है अक्सर तब भी आने लगती है जब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
0: तो देखियो ना, मैं भी भूल गई कि हम बात कर रहे थे अल्जाइमर डे के बारे में और शांति दिवस का संदेश पहले पढ़ने लगी, तो ये भूल ना हो पहले गाना सुन लेते हैं।

0: तो भाई बहुत शांति है ना अभी स्टूडियो में इस समय।
1: हाँ, और ये गाना अगर ऐसे गाने सुने तो मन में कितनी शांति लगती भी है, और एक अच्छा मौका भी है शांति का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है आज, और 21 सितंबर को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्पित ये दिन है, जिसका एक ही संदेश है कि युद्ध को नहीं, शांति को चुनो।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि शांति एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे शक्तिशाली ताकत है, और ये हमारी पहुंच में है अगर हम इसे चुनते हैं तब।
0: बिल्कुल, यानी कि अगर हम क्रोध नफरत को चुनना चाहें तो उसे भी चुन सकते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन अगर एक बेटर और बेहतर ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, एक अच्छा विकल्प हम चुनते हैं, तो वो
1: हाँ
0: शांति ही हो सकता है। और 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की। 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से 21 सितंबर को वैश्विक युद्ध विराम और अहिंसा के दिन के रूप में इसे

0: घोषित किया। इस दिन सभी देशों और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि 24 घंटों के लिए ही सही, लेकिन इस चीज को यानी कि जो हिंसा है उसे रोकने की कोशिश वो जरूर करें अपने आप से, जो कोशिश उनसे हो सकती है।
1: हाँ, और जैसा कि हमने बताया कि हर वर्ष कोई थीम होती है हर दिवस की, तो इस वर्ष की शांति दिवस की थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि अगर आपको शांति प्रिय एक विश्व चाहिए तो उसके लिए अभी प्रयासरत होना होगा। और ये थीम याद दिलाती है कि शांति अपने आप नहीं आती, इससे बनाना पड़ता है साहस, समझौते और कार्रवाई से।
0: और ये कार्रवाई भी हमें ही करनी होती है, कोई और आके ये काम नहीं करेगा। और शांति का मतलब केवल युद्ध को रोकना या युद्ध नहीं करना ये नहीं होता। इसका अर्थ है कि न्याय, समानता, मानवों के अधिकार, सबका सम्मान, ये सब चीजें होनी जरूरी हैं। और इसीलिए विश्व शांति का महत्व, इसको अगर हम समझेंगे तो सबका सहयोग और सबका योगदान होना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सब मिलकर ये काम नहीं करेंगे, कोई भी काम अगर सब मिलकर करते हैं तो ही सफलता हासिल हो सकती है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकास और शांति एक दूसरे से जुड़े हैं। दुनिया के 10 सबसे कम विकसित देशों में से ज्यादातर किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं। तो जहाँ शांति होती है वहाँ परिवार जुड़ते हैं, समुदाय फिर से बनते हैं और बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, खेल पाते हैं।
0: और जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, तभी तो उस देश का भविष्य जो है वो उज्जवल बनेगा।
1: जी।
0: और इस दिन जो है, यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं विश्व शांति दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस की, तो इस दिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहां पर पीस बेल यानी कि शांति का घंटा वो बजाया जाता है। और ये घंटा दुनिया भर के लोगों द्वारा जो दान किए गए सिक्के हैं या पदक हैं उनसे बनाया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में शांति दिवस पर शांति मार्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतर धार्मिक संवाद आयोजित किए जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो इस तरह से जो सफेद कबूतर होता है ना, शांति का प्रतीक माना जाता है, उन्हें भी उड़ाते हैं।
1: और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि शांति हम सबका काम है। नफरत से भरे शब्द ना बोलें, अपने आसपास सम्मान की भाषा बोलें, सबको समान भाव से देखें, फर्जी खबरें जो होती हैं उन्हें फैलाने से रोकें। और शांति का मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है चंचल जी, क्योंकि छोटे छोटे रोज के अगर हम कदम उठाते हैं तो उससे ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे दूसरे को सुन लें, दूसरे को समझें, और कोई हिंसा अगर करता भी तो उसका जवाब हिंसा से ना दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, समझाएं किसी तरह से, अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
0: तो आपने कहा दूसरों को सुने, समझें, तो भाई हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लेते हैं। उनका कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है और लगता है इसीलिए मेरा ऑफिस जाने से पहले तक सखी सहेली यानी सखी यानी मेरी धर्म पत्नी शांति बनाए रखी है और मेरी क्लास लेते हुए लेक्चर उन्होंने नहीं दिया है। काश हर रोज अलग अलग शांति दिवस हो।
1: हमें तो लगता है कि इन्होंने भी हमारी सखी को तंग करने का कुछ आज प्रयास नहीं किया होगा
0: जी।
1: इसी वजह से ये शांति बनी हुई है, क्योंकि जब कहते हैं कि एक कार क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, तो वो प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि क्रिया शायद नहीं हुई है आज
0: जी।
1: तो ऐसा वो भी बनाए रखे शांति, ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम के रोचक विषयों को पढ़ा तो पता चला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, मगर हमारे घर में आज सुबह से ही बर्तन बजने शुरू हो गए। देखिए प्रतिक्रिया हो रही है क्रिया की। और वो कह रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी और मेरी सुबह सुबह ही दूध लेने जाने की बहस शुरू हो गई। मैं मस्त था सुरीला सफर कार्यक्रम के संभावित शब्दों से गीत सोचने में बड़ा व्यस्त था। घर में दूध ना होने के कारण चाय नाश्ते में देरी हो रही थी। शांति दिवस के मौके पर हम दोनों पति पत्नी ने घर में वो अशांति फैलाई कि बच्चे भी देख देख कर हंस रहे थे। बच्चों को हंसता देख मैंने पत्नी के सामने सरेंडर किया, डोलची उठाई और चुपचाप से दूध लेने चला गया। दूध आने के बाद फिर सबने हंसी खुशी चाय नाश्ता किया और अशांत हुआ घर का वातावरण एक बार फिर से शांति वाले माहौल में तब्दील हो गया। तो आप सबको हमारी ओर से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुभकामनाएं और ढेरों बधाई।
0: हम भी सबको शुभकामनाएं देते हैं और ऐसा हंसी खुशी का वातावरण सभी के घर में बना रहे। सुनते हैं ये गीत।

0: चंचल जी, मैं भी ये सोच रही थी कमेंट पढ़ते हुए कि हमारे साथी ने कहा कि वो दूध की वजह से जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने देखिए हमारा नाम भी साथ में लिया। उन्होंने कहा कि विविध भारती की जो सुरीला सफर की जो पोस्ट आई थी उसकी वजह से वो गाने सोच रहे थे और नहीं जा रहे थे ना, तो हम तो ये कह रहे कि रास्ते में भी सोचते सोचते जा सकते थे, है कि
1: बिल्कुल
0: नहीं?
1: सही बात है। आप जब जा रहे हैं दूध लेने तो रास्ते भर उन शब्दों को अपने जहन में रखते हुए जाइए, और जब आ जाएंगे तो इत्मीनान से वो सारे गाने लिखकर आप पोस्ट पर डाल सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं ल्योदुर चमन की, जो कि एक कश्मीरी व्यंजन है। और ल्योदुर चमन का मतलब होता है ल्योदुर मतलब होता है पीला, और चमन का मतलब होता है पनीर। और इस रेसिपी की खास बात यही होती है कि इस पे प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनकी बहुत ही साफ सुथरी, कहते हैं ना कि मीठी सी रेसिपी होगी जिसमें तीखापन ज़्यादा नहीं
0: कुछ भी
1: होता।
0: नहीं डालते मसाले, कुछ नहीं डाल रही, क्या बात है भाई।
1: इसमें जो ग्रेवी है वो दूध, सौंफ, सौंठ, इस तरह के मसालों से बनाई जाती है। तो सामग्री इसके लिए चाहिए 300 से 400 ग्राम मोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ पनीर, और 1.5 से 2 कप फुल फैट वाला दूध, यानी कि जिसमें मलाई होती है
0: मलाई
1: वैसा वाला
0: जी,
1: दूध। सरसों का तेल चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच, वो चाहिए हमें पनीर तलने के लिए और ग्रेवी के लिए। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंफ पाउडर 2 छोटे चम्मच, सौंठ पाउडर 1 छोटा चम्मच, हींग चाहिए 1/4 छोटा सा चम्मच, स्याह जीरा चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, खड़े मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और नमक स्वाद के अनुसार। अब पनीर को पानी में उबालने और भिगोने के लिए पानी चाहिए पनीर को उबालने के लिए, और भिगोने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी चाहिए, यानी कि 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने के लिए पनीर को तैयार करना है। एक बड़े बर्तन में पानी को उबालें, उसमें 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डालें। पनीर के टुकड़ों को इसमें डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से निकालकर सुखा लेना है। अब
0: जी
1: एक कढ़ाई में सरसों का तेल तब तक गर्म करना जब तक उसमें से अच्छा सा धुआं ना निकलने लगे। आंच को धीमा करके पनीर के टुकड़ों को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक तल लेना है। तले हुए पनीर के टुकड़ों को कढ़ाई से निकालकर तुरंत एक बर्तन में जिसमें गुनगुना नमक वाला पानी हो उसमें डाल देना है। ऐसा करने से पनीर रबड़ की तरह खिंचा हुआ नहीं होता बल्कि नरम और स्पंजी रहता है। और ग्रेवी का तड़का तैयार करने के लिए कढ़ाई में बचे जो तेल बच गया है उसी को थोड़ा सा गर्म करना है, और इसमें अगर कम लगे तो आप तेल और छोड़ दीजिए। और इसमें जीरा, हींग, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारे मसाले एक साथ डाल देने। कुछ सेकंड जब ये मसाले चटकने लगेंगे और इसमें इनकी खुशबू आने लगेगी तब आंच को धीमा करना है, गैस बंद कर देनी है। इसमें हल्दी पाउडर, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर डालना है। सूखे मसाले ना जलें इसके लिए तुरंत इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देना है।
0: जी
1: दूध को अब इसमें थोड़ा सा मसाले डालने के बाद

0: में दूध डालना है, और जब दूध डालेंगे तो कलछी से लगातार चलाते रहना ताकि दूध वो फट ना जाए, और जब दूध में अच्छा सा उबाल आने लगे तो स्वाद अनुसार नमक डालना है। जो भीगा हुआ पनीर था उसको हाथों से निचोड़ कर इस उबलती हुई ग्रेवी में डाल देना है, और कढ़ाई को ढक देना है, धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक इसे पकने देना है। पनीर जब सभी ग्रेवी के साथ में सारे स्वाद को सोख लेगा और ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, घी या तेल जो भी है वो सतह पर तैलने लगेगा, तो ऊपर से एक चम्मच हल्का सा है तो घी डाल देना है, या मलाई डाल सकते हैं आप, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर फिर गैस बंद कर दीजिए, और गर्मा गर्म लियोदुर चमन जो है वो तैयार हो जाएगा इस तरह से।
1: फिर भीनी भीनी से खुशबू रहेगी इसमें, ऐसा लगता है ना। और एक हाक साग के बारे में भी आपने बताया था, तो हाक साग को अगर हम बताएं तो कश्मीर का सबसे पसंदीदा और रोजमर्रा के खाने में बनने वाला पारंपरिक व्यंजन है। तो कश्मीरी कोलार्ड ग्रीन्स या हरी पत्तियों का एक साग होता है जो वहां मिलता है, और इसके बहुत ही कम मसालों के साथ इसे भी पकाया जाता है ताकि साग का जो स्वाद है वो बना रहे। इसके लिए हाक की पत्तियां, सरसों का तेल, हींग, सूखी लाल मिर्च और नमक, बस इतना ही चाहिए। और इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल, जैसे कि आपने कहा, इसमें भी नहीं होता है। ये इसका स्वाद हल्का तीखा और बेहद ताजा होता है, तो आमतौर पर इसमें उबले हुए चावल के साथ इसे परोसते हैं और ऐसे खाया जाता है इसे। लेकिन इसको मतलब बस सब्जियों को इसी तरह से बनाया जाता है। सब्जी को आप हल्का सा तोड़ कर या काट कर आप इस तरह से छोंक दीजिए, छोटे जो थोड़ी सी जो हमने सामग्री ली है
0: जी
1: उसमें आप इसको छोंक दीजिए, और बस वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और बस ऐसे कह सकते हैं कि पहले वो जो पनीर की सब्जी है जिसका नाम मैं तो भूल चुकी
0: लियोदुर
1: हूँ जी,
0: चमन
1: लियोदुर चमन और हाक साग बड़ी आसानी से बन जाता है ये भी। जैसे हम भाजी बनाते हैं ना, जो ताजी
0: जी
1: सब्जियां जिस तरह से थोड़े से मसालों
0: हाँ
1: के साथ में ऐसा डाल के

0: चंचल जी, हमारे एक साथी ने लिखा कि उन्हें मेरे पति को भूलने की बीमारी की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अभी कुछ ज्यादा नहीं है, बढ़ती उम्र में होता है, कुछ एक्सरसाइज और रोजमर्रा के काम नियम करने से बताया है। मैं भी कुछ चीजें रखकर भूल जाती हूँ, किसी समय याद आ जाता है, किसी का नाम या जगह के नाम भी वो भूलती हैं, ऐसा कह रही हैं।
1: तो
0: तो
1: बस
0: अपना
1: आप समय
0: ख्याल
1: पर
0: रखें।
1: उपचार करिए, ध्यान रखिए अपना। और अभी कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है, तो हम लेते हैं इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
0: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा में आज सुनते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र को। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू विविध भारती मुझे यहाँ बुलाने के लिए। यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला, मेरी आवाज इतने लोगों तक नॉट ओनली इन मुंबई बल्कि पूरे भारत में पहुंचेगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कम उम्र में आपने हमें इसका मौका दिया, उसके लिए थैंक यू।
1: तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है?
2: उम्मीद नहीं किया था कि 40 के पहले मैं यहाँ जाके लोगों से अपना जो भी नॉलेज या जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बारे में, जो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है, मतलब किसी
3: सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
4: Which will make a big change in times to come.
5: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्यों को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। बठिंडा के तलवंडी में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की संभावना है। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से सुसज्जित स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबिक खाड़ी पहुंच गए हैं। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालन तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बड़ी अलग तरह की जानकारी आपने दी कि लोग डायग्नोस नहीं करते थे, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि लोग अवेयर हो गए।
2: करेक्ट, अच्छी है, बट उसका एक्चुअल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट। मतलब हम स्कैन कर रहे किसी और चीज के लिए और उसमें दिख गया है तो स्ट्रोक भी है इनको। फिर बाद में पूछा जाता है आपको कैसे हुआ, तो बोले हाँ हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन काफी कॉमन है, बीपी का प्रॉब्लम हुआ था बट दवाई लेना बंद कर दिए, दिन भर सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम हो रहे, जंक फूड बोलो खाते जा

0: करें और चलना या एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं वो एक तरह से मेजर कारण है और जिसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप उम्र बढ़ने से स्ट्रोक होता है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट उसको आप रोक नहीं सकते हो। बट उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे सॉल्ट और बीपी कंट्रोल करना, इस चीज़ को आप एज अ पर्सन उसको रोका जा सकता है।
1: तो कारण भी एक तरह से आपने बता ही दिया है, लेकिन कई बार आपने कहा जो ब्रेन हैमरेज होता है, तो आपने कहा कि टेंशन और इस वजह से भी होता है, तो टेंशन और एक कारण और भी है, क्रोध, गुस्सा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि आग बबूला हुए हैं, लाल हुए हैं
0: करेक्ट
1: बिल्कुल,
0: करेक्ट। तो
1: तो ये सब भी कारण हो सकता है
0: वो
1: क्या
0: एक
1: जिस
0: ही
1: पर?
0: कारण नहीं है, बट उससे एक है कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, रक्त दाब, वो कंफर्म है बढ़ता ही है उस वक्त। तो जितना ब्रेन में खून जाना चाहिए वो बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी। और जो ब्रेन की नसें हैं जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, उसका जो कैपेसिटी है उस खून को टॉलरेट करने का,
1: जी
0: प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो नस फट गई। तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, और 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है। बट जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो ब्रेन हेमरेज, जिसमें काफी पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते।
1: तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है मरीज को कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, होने वाला है?
0: ब्रेन का ऐसा है कि हर एक हिस्सा ब्रेन का जो है कुछ ना कुछ उसका एक डेजिग्नेटेड काम है। जैसे अगर दाएं तरफ ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई तो उसका जो असर है वो शरीर के बाएं तरफ होगा। जैसे ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सारे पेशेंट में पूरा हाथ पैर काम बंद कर देगा ऐसा नहीं है। अगर छोटा स्ट्रोक है तो कुछ कमजोरी आएगी, पेशेंट चल रहा है तो उनको लगेगा कि उनका शरीर बाएं तरफ धीरे धीरे स्विंग होते जा रहा है।
1: ओहो
0: अगर यही स्ट्रोक ब्रेन के बाएं तरफ आती है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डोमिनेंट ब्रेन, मतलब जिसमें काफी ज्यादा फंक्शन होते हैं। तो उसमें छोटा स्ट्रोक भी अगर रहे तो दिक्कत ज्यादा होती है। तो
1: जी
0: उसमें खास करके चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते हो तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हकला के बात कर रहा है, जबान वजन हो जाना, और उसका असर बाएं तरफ का जब स्ट्रोक है तो उससे बात करने के अलावा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो वो अच्छा है, अच्छा मतलब
1: ठीक है।
0: रिकवरी का जो समय है वो काफी कम रहता है और परमानेंट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है। बल्कि जब लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हो तो छोटा स्ट्रोक भी काफी ज्यादा ब्रेन को
1: ओ
0: इम्पैक्ट करता है। तो
1: जी
0: कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उससे काफी ज्यादा लक्षण जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम। लेफ्ट इज बैड, राइट है तो स्ट्रोक ओवरऑल खराब बीमारी, बट राइट इज कंपेरेटिवली थोड़े ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ जाते हैं।
1: तो ये अचानक होता है, शरीर पहले से कुछ संकेत देता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे आपने कहा ब्लड सप्लाई ठीक रहे, तो इस सब के लिए कुछ कोशिश
0: स्ट्रोक
1: प्रयास किया जा सकता है ठीक करने
0: यूजुअली
1: का?
0: ऐसा एकाएक ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है। मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है, जैसे अब मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ तो सारी सुविधा अवेलेबल है, सीटी स्कैन, एमआरआई, ऑलमोस्ट बम्बई के किसी भी हिस्से में आप देखो 10 मिनट में स्कैन हो ही जाता है। दिक्कत वही है, पेशेंट को जब भी हाथ पैर में दिक्कत हो तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो। वो क्या सोचेंगे, मेरे सोने का तकिया मैंने चेंज कर दिया, मुझे पैर
1: ओ
0: में मोच आ गई,
1: जी जी
0: उसके कारण
1: जी
0: मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एक ही है कि थोड़ा भी डाउट रहे तो तुरंत जाके एक बार न्यूरो से कंसल्ट करवाइए। खुद के लेवल पे जब इलाज करने की कोशिश करो तो दिक्कत होती है कि जो इनिशियली 3-4 घंटे का हमारा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो समय निकल जाता है। तो ये गोल्डन पीरियड का क्या कंसेप्ट है, जब भी स्ट्रोक के लक्षण आए, आपने जाके डॉक्टर को दिखाया अपने न्यूरो को, या न्यूरो समझो अवेलेबल नहीं है, एक अच्छे एमडी फिजिशियन भी है वो भी काफी बार डायग्नोस कर लेते हैं, और अगर हमने एमआरआई किया उसमें दिख गया कि छोटा सा स्ट्रोक है, वो 3-4 घंटे का समय ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे दो खून पतला करने का जिससे वो स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस हैं। दिक्कत तब आती है जब पेशेंट पेरिफेरी में है, वहां से न्यूरो के सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जब आए तब ऑलरेडी वो 24 घंटे का समय निकल गया, तो उसके बाद हम उनको इंजेक्शन दे भी नहीं पाते हैं। तो उसमें जो इलाज रह जाता है हमारे पास वो सिर्फ खून पतला करने की दवाई दो, बट उसमें दिक्कत यही है कि जो डैमेज हो गया है आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो।
1: जी
0: तो सिर्फ खून पतला करने की दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी, बट इससे काफी बार पेशेंट डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो
1: ओके
0: इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, मतलब जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचो उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं।
1: जी तो डॉक्टर अजीत, हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है, क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई, तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज
0: करेक्ट,
1: होते हैं,
0: बहुत
1: तो इसका क्या संबंध
0: खून
1: है?
0: अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है, तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए और पाइपलाइन छोटी होती जा रही है।

0: है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो
1: ओ
0: जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है एज अ न्यूरो, हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है। तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयाँ, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छे हैं, काफ़ी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है।
1: जी। तो डॉक्टर तक पहुंचने के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है? मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए क्या
0: ये एक
1: बिल्कुल?
0: मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पालपिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफ़ी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखी है जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन, और उसको तुरंत खा लो। तो ये किसी हद तक हार्ट में भी अच्छी चीज़ है, बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना।
1: ओहो
0: क्यों, क्या दिक्कत होती है? जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है, बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है, और
1: ओहो
0: दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है।
1: जी
0: तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की, और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था, और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, तो वो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन
1: जी जी
0: हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
1: ओके
0: तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना। द
1: जी
0: मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच सको पहुंच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फोन पे एक बार बात कर लूँ। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है।
1: बिल्कुल। और एक जमाना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है ना?
0: उसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो
1: हाँ
0: उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हम बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि फ़ोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूँगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन, एंजियोग्राफी की सुविधा हो। वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले एक पता होना चाहिए, बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए।
1: जी जी
0: उससे
1: जी
0: भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आपका पूरा जो खर्च है वो
1: जी
0: एक साथ सब साफ हो जाता है।
1: जी जी
0: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं, अपेंडिक्स बोलिए, हर्निया, वो ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं, बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है, बट हो तो बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई, और हम एक जरूरी बात आपको याद दिला रहे कि यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, बताइए कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: पसंद का, मैं विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव, साथिया तूने क्या किया, बाय आई थिंक SP बालसुब्रमण्यम,
1: जी,
0: वो
1: SP
0: सुनना चाहूंगा।
1: बालासुब्रमण्यम की आवाज है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना जरूरी होता है?
1: तो दवाइयों का जो रोल है इसमें या डॉक्टर्स का जो रोल है वो पहले 5-7 दिन, 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर। अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए घर पे सुविधा, जो उनको उठा के बिठाए, चलाए, वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको महीना, 2 महीना स्पीच फिजियोथेरेपी। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया, ऑलरेडी स्ट्रोक काफी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को महीना, 2 महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाते हैं। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज्यादा मैं बोलूंगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए परिवार
1: की? सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहे। परिवार का ये उम्मीद, एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, 2 दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा। तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहे, 3 दिन से अस्पताल में रखे फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफी पेशेंट मान जाते हैं, फैमिलीज काफी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है। अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज 2 अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन, दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही सही था। बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीमारी का जो आउटकम है वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है।
0: जी,
1: ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको समझाना काफी मुश्किल बोल सकता हूँ।
0: जी, और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार, कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए।
1: तो वो जो ये जो है कि मेरे गांव में तो ऐसा हुआ था, हमने उनको एक ऐसा सिरप पिलाया तो आप भी कुछ दे दीजिए। तो जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, बट जब भी ऐसा है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, पेशेंट उनकी फैमिली वो सारी कुछ कोशिश करेंगे, मतलब अदर देन एलोपैथी, कुछ होम्योपैथिक पिल्स दे दो, कुछ आयुर्वेदिक का ये पिला दो। तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको जिस पे भरोसा है वो कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से गिन के 3-4 जो भी दवाइयां हैं वो कंटिन्यू करो, आपको जिससे फायदा हो जाए वो।
0: लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी इसका इलाज मेडिकल साइंस जो एलोपैथ में ही है। अच्छा, एक बार स्ट्रोक आने पर क्या दोबारा खतरा बना रहता है?
1: काफी पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुए और वो इतने खुश हो जाते हैं 6 महीने साल भर में कि मैं तो खुश हो गया, डॉक्टर मुझे जबरदस्ती दवाइयां खून पतला करने की, जो भी कॉमन नाम इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, जबरदस्ती डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं उनके फायदे के लिए, बंद कर देते हैं, कुछ नया एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की

0: कमजोर होते जा रही है, अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं।
1: ओहो
0: तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है। इट इज अ
1: अच्छा
0: मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, दो
1: जी
0: साल 5 साल, और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी की हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते हैं। तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयाँ शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो फिर अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू।
1: जी
0: दोज
1: जी
0: आर एकदम सेफ दवाइयाँ रहती है। मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग, किडनी, लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए। अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा कि इससे आपको दिक्कत ना हो,
1: बिल्कुल।
0: ऐसा।
1: और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। और हमें यहाँ पर आंख बंद करके एक गाना सुन लेना चाहिए। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: अब मैं सुनना चाहूंगा, एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूं।
1: जी सुनते हैं, कभी कभी फिल्म का गाना
0: जी हाँ।
1: सुनते हैं ये।

0: डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात हम कर रहे थे गाने से पहले।
1: जी
0: एक बड़ी बीमारी है, हमें तो लगता है कि हर कोई उससे पीड़ित है, और सिर पकड़ के बैठ जाना, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर हो, कि सिर दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को सिर दर्द बाई तरफ होता है, कुछ लोगों को दाई तरफ, कुछ को पूरे सिर में। तो इसका क्या फंडा है, क्या कारण है और क्या इलाज है इसका?
1: इसको हम हेडेक बोलते हैं। आई थिंक अभी भी
0: जी
1: जो भी न्यूरो, नॉट ओनली इन मुंबई, आई थिंक जहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है, उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है। पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज़ वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो।
0: जी
1: तो उसका हमारा भी एक आंसर है कि अगर

0: आपको पता है आपको माइग्रेन है,
1: तो दवा
0: तो
1: ले
0: नेट
1: लो
0: पे उसका एक इलाज भी अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते हो।
1: बिल्कुल
0: तो सारे हेडेक जो हैं उसके लिए
1: हाँ
0: ऐसा कुछ कंपलसरी सिटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा नहीं
1: हाँ
0: है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहा है। काफ़ी बार हम पेशेंट देखते हैं, कुछ बेसिक दवाइयाँ लिख दिया उसको, जो आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं। पेशेंट को 10 दिन दवाई देने से दर्द एकदम गायब हो गया, और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने, तो वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख के डाउट आता है। हमने
1: जी
0: पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आंखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ वर्ड्स निकल नहीं पा रहे, चेहरा टेढ़ा हो रहा है। हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया
1: जी
0: या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
1: जी
0: अदरवाइज अभी भी ऐसा है, 90 से 95% जो हेडेक के पेशेंट है वो बेसिक दवाइयों से एकदम आराम हो जाते हैं। और
1: जी
0: दवाइयाँ ऐसी भी नहीं है कि जिसको लंबे समय तक खाना पड़े। कुछ हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, इतने बजे खाना खाइए, इतने बजे सोइए, सोते वक्त फ़ोन को आधे घंटे पहले छोड़ दीजिए, और कुछ दवाइयाँ जो ब्लड में जो फ्लो है उसको कम ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं, उसी से आराम हो जाता है। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं।
1: जी
0: और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज़ ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज़ ये है कि उसको जो दवाइयों का कोर्स है वो काफ़ी लंबा चलता है।
1: जी जी
0: तो काफ़ी लोगों को कॉफ़ी पीने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ऐसा कोई झाड़ू मार रहा है, कोई डस्ट है उससे एलर्जी है, उससे दर्द होता है। बट काफ़ी दर्द ऐसे भी हैं जो कारण सिर में है ही नहीं, उसका कारण है दांतों में, आंखों में, चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, कान में कुछ इन्फेक्शन है, साइनस की बीमारी है, तो आप इसको ठीक करो, सिर का दर्द अपने आप गायब हो जाता है।
1: जी सिर दर्द क्या डॉक्टर साहब पेट की समस्या से भी होता है और ये नाक बंद होने या साइनस की वजह से भी होता
0: एग्जैक्टली,
1: है?
0: जैसे मैंने बताया चश्मा,
1: हाँ
0: नाक, किसी को दांत में इन्फेक्शन हो, जिसको हम बोलते हैं रूट कनाल
1: जी
0: करवाना
1: जी
0: है, दांतों में कीड़ी लग गई है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है,
1: इसकी वजह से भी
0: तो
1: सिर दर्द होता है?
0: अल्टीमेटली सारा जो जाएगा सिग्नल
1: ओ
0: वो जाना है ब्रेन पे ही। काफी बार
1: हाँ
0: लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया तो मुझे दर्द होने लगा, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं,
1: हाँ
0: दिक्कत
1: हाँ
0: है पेट की। पेट में
1: हाँ
0: जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है
1: जी जी
0: उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप कुछ ना खाओ तो अल्टीमेटली उसका भी सिर पे दर्द। तो ये सब जो दर्द के कारण है उसके लिए हमको कोई स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी
0: हम 10 मिनट मरीज से बात करो, पेन का पैटर्न कैसा है, कब होता है, क्या करने से अच्छा लगता है, उन बेसिक दवाइयों से ही आराम हो जाता है।
1: जी
0: तो पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पड़ोसी को ऐसे ही था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकल गया था, तो मैं भी जाके एक एमआरआई करा लूं। तो हमारे लिए एमआरआई करवाना एकदम आसान चीज है, मैं लिख दूं 10 मिनट में उसका एमआरआई कहीं जाके हो भी जाए।
1: जी
0: तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं हम चाहते हैं कि बिना एमआरआई के आप कैसे उस बीमारी को डायग्नोस कर सको,
1: जी जी
0: तो वो न्यूरो का काम है कि आप कंसल्ट करो, ना कि खुद से एमआरआई कराओ। उसमें कुछ लिखा रहेगा कि साइनसाइटिस है, फिर

0: हमारे लिए मुश्किल काम होता है कि जो
1: जी
0: पेशेंट गूगल से पढ़ लिख के आते हैं,
1: जी
0: दैट इज अ
1: जी
0: हाफ इंफॉर्मेशन,
1: जी और गूगल आजकल बहुत बड़ा डॉक्टर बन
0: हाफ डॉक्टर बोल सकता हूँ
1: गया है
0: मैं।
1: जी, और उससे नुकसान ज्यादा होते हैं फायदे कम,
0: करेक्ट
1: तो इसलिए
0: करेक्ट
1: सिरदर्द भी अगर हो रहा है तो इग्नोर करने की बजाय
0: करेक्ट करेक्ट
1: डॉक्टर से
0: करेक्ट
1: संपर्क
0: करेक्ट
1: कर
0: तो
1: लें।
0: वो जो
1: और
0: 5% के पेशेंट है जिसको एक्चुअली ब्रेन में दिक्कत है, हमारा टारगेट रहता है हम उसको कैसे कैच कर सके। जैसे
1: जी
0: ब्रेन हेमरेज है तो सिर दर्द हो रहा है, वो खुद से डिस्प्रिन की गोली घर पे खा ले तो ब्रेन हेमरेज बढ़ना ही है, तो हम बोलते हैं आइए हम देखेंगे जांच
1: ओ
0: कौन सी करनी है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, एंजियोग्राम करना है, बहुत सारी जांच है, तो उसके लिए कौन सा नेसेसरी टेस्ट है वो आई थिंक बिना देखे बोलना मुश्किल है, उसके लिए
1: जी
0: हमको मरीज को चेक करना ही पड़ता है।
1: जी बिल्कुल। और स्ट्रोक जब आता है तो ब्रेन स्ट्रोक, इसके बाद क्या मरीज एकदम सामान्य जीवन जी पाता है या फिर उसको कहीं तकलीफ होती है कि एबसेंट माइंड होना, याददाश्त पर असर पड़ता है?
0: किस स्टेज पे आते हैं, काफी बार ब्रेन स्ट्रोक इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें हमको सूजन कम करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है,
1: अच्छा।
0: तो इसका ऐसे कोई ग्रॉस परसेंटेज बोलना काफी मुश्किल है कि कितने स्ट्रोक में पेशेंट कितना रिकवर होगा। एक अगर आप पूछे कि स्ट्रोक होने से डेथ का चांस कितना रहता है, एक जो ओवरऑल आईसीएमआर जो अपने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 से 20% डेथ होते हैं अभी भी भारतवर्ष में, तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं है। तो ये जो 16 से 20% है इसको हम अभी भी रोका जा सकता है, प्रोवाइडेड पेशेंट एकदम समय पर अस्पताल आ जाए। कुछ ना कुछ जो बोलते हैं परमानेंट पैरालिसिस बोलो, या भले ही पैरालिसिस ना हो पर उनके जो चलने का पैटर्न है डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो उसका एक परसेंटेज रहता है कि हाथ कितना काम नहीं कर रहे हैं, चेहरा कितना टेढ़ा हुआ है, जैसे सिर के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि सिर पे मार दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वो एकदम गलत नहीं है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो अब
1: अच्छा।
0: उसका मेन काम रहता है आंखों की रोशनी प्रोवाइड करना, तो अगर किसी को उस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो काफी बार एक आंख की रोशनी चली जाती है।
1: जी, तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऐसा कोई भी सिम्टम, कोई लक्षण आपको लगता है, दिखाई देता है, तो डॉक्टर से संपर्क कर लें।
0: करेक्ट,
1: और हमें इस समय बताइए कि कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाए हम श्रोताओं को।
0: लापता लेडीज का एक फेमस सॉन्ग है अरिजीत का, वो सुनना पसंद करूंगा मैं, सजनी रे,
1: जी
0: बहुत ही
1: सुनते
0: फेमस
1: हैं,
0: सॉन्ग है वो।
1: जी सुनते हैं ये गाना, अरिजीत सिंह की आवाज में है
0: जी
1: ये
0: करेक्ट।
1: गाना।

0: गाने से पहले हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपसे जानकारियां चाहेंगे कि आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन हो चला है। पहले हम ब्रेन ट्यूमर तो एक सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं था, अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोग बहुत सजग भी रहते हैं। तो ये क्या है और क्या एक तरह से कैंसर है क्या?
1: थोड़ी तो खतरनाक बीमारी है। एक ही
0: जी
1: अच्छी चीज़ है कि ओवरऑल जो शरीर में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफ़ी कम हैं। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है,
0: जी
1: ब्रेन ट्यूमर इज हार्डली 5 से 7%। तो इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है।
0: जी
1: बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका जो इलाज है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन का ढांचा है वही धीरे धीरे ट्यूमर के कारण खराब होते जा रहे हैं। पर जैसा आपने पूछा कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, आंसर इज नो। ऑलमोस्ट 70 और 30 ऐसे हैं, 70% ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें एक बार आप ट्यूमर निकाल दो सर्जरी करके, रेडिएशन या जिससे भी, क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 30% ट्यूमर है जिसको सबसे कॉमन बोलते हैं हम ग्लायोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है। तो जो भी एक निगेटिव माइंडसेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी तो मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है। तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है। तो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है। दिक्कत यही है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिर दर्द हुआ, कहीं गिर गए या देखने में प्रॉब्लम है, MRI किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4। ये मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना। एक ही अच्छी चीज़ है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है। एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे तो वो नंबर एक 40 से 50 हज़ार के आसपास है।
0: जी जी,
1: फिर MRI आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि MRI के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। तो इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते, अचानक कोई तेज सिर दर्द और अचानक?
1: जैसे ब्रेन स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत। ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, नॉन स्पेसिफिक मतलब
0: आने वाली बीमारी।
1: करेक्ट। तो काफी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयां खा के चल रहे ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे वो दर्द का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है, तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि MRI कराइए। दूसरा वॉमिटिंग होती है इसमें, तो पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीजें सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तब ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोलो जाके MRI कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में है, मुंबई में है, तो यहाँ तो MRI इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी tier 3 सिटी में जाइए, पेरीफेरी में, वहाँ MRI छोड़े आपको न्यूरो के पास पहुंचना ही इतना मुश्किल हो जाता है, तो हर एक का MRI करना मुश्किल होता है।
0: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं जिससे?
1: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप देके रखे हैं, दैट इज जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए दो ही ट्यूमर

0: होते हैं, कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर। तो एक ऑलमोस्ट 70% नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
1: जी, तो यहाँ पर एक गाना सुन ले डॉक्टर साहब।
0: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद करूंगा।
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह ही दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत जरूरी है। तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही जरूरी होता है ब्रेन ट्यूमर में?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो MRI देख के वो जानकारी लग जाती है कि ये कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत मेरे श्रोताओं को न पड़े तो अच्छा है।
0: बिल्कुल।
1: मेनिंजोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है
0: हाँ,
1: जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं। स्लो मतलब हर साल में 2 mm 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं।
0: जी
1: तो अगर मरीज बहुत जल्दी अगर आता है, एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह वो मशीन होगी। उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ मशीन या साइबर नाइफ मशीन। तो इसमें शब्द नाइफ यूज किया जाता है, बट ये सर्जरी नहीं होती है, ये एक प्रकार का रेडिएशन है जिसमें आप एक सिंगल रेडिएशन का शॉट लेके वो ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो हम कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोज करते हैं। जब मरीज आता है और उसमें ट्यूमर का साइज कितना है, 2-3 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं।
0: जी।
1: प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, वो कम जगह पे है। जैसे आपने बोला दवाइयों से, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम ट्यूमर को पिघला सके। तो या तो आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
0: जी, तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद की जो सावधानी है वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं अस्पताल में। एवरेज स्टे फॉर ब्रेन ट्यूमर 5-7 दिन में मरीज जैसे थे उसी कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने का देख 10-15 दिन आफ्टर एनी मेजर सर्जरी, जो हम बोलते हैं 10-15 दिन आराम कीजिए, जो भी टांके हैं सिर पे 2 हफ्ते बाद निकाल के, महीने भर में ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मरीज जो रहते हैं उनका चलना फिरना, खाना, बाहर की लाइफ एक्टिविटी, वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं। अनलेस एंड अंटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते चले जाते हैं। बट जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है, अब तो ये दोबारा काम पे नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है। मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। सर्जरी का एम ही यही है कि वो एक अपनी नॉर्मल सामान्य जिंदगी जी सके। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट्स आने का कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये 2-3 चीज में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।
0: डॉक्टर साहब, फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई, हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ, अचानक चक्कर आया, फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना जरूरी?
1: एक लक्षण है उसका। काफी बार हमने MRI किया, पेशेंट को फिट्स आया था, MRI करके देखे, MRI एकदम नॉर्मल है। तो MRI करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या, वो देखने के लिए। बट नॉर्मल MRI है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है
0: जी।
1: तो दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है वो कहीं कुछ हिल गया है, या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है, उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। तो उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का।
0: जी जी।
1: तो वहां अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफी कॉमन बीमारी है।
0: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है।
1: करेक्ट।
0: तो उसके क्या लक्षण है? तो
1: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं।
0: ट्यूमर वही है।
1: तो बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है। जैसे बाकी शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए, कुछ भी हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है। बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज है।
0: जी, तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
1: MRI हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है,
0: और तो फिर
1: उसके हिसाब से इलाज डिसाइड होते हैं। सादा गांठ है, मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, 2-3 साल हमने फॉलोअप कर लिया, साइज उतने पे ही रुका हुआ है और मेन उसको दर्द नहीं है, फिट्स नहीं आ रही है, साइज ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें
0: जी
1: उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए, कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है, या महिलाओं में ज्यादा, पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ?
1: ऐसा जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी, समहाउ दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15 से 20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाया। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना जरूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60 वाला एज जो है वो कॉमन। बट ऐसा मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने
0: जी
1: पीने से कोई संबंध, आंसर इज नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो, फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहते हैं, सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ खराब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से एक यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है, किसी को नहीं पता।
0: जी
1: जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर, इसका एक काफी स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लगा आप पूछो कोई कारण है, आंसर इज नो। एक दो जेनेटिक बीमारियां हैं बट उसके नंबर्स इतने कम है फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
0: जी, तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है, किस तरह की डाइट?
1: स्ट्रोक, यस, स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली, बहुत मीठा, शुगर बढ़ते जा रहे हैं तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। बट ट्यूमर में संभाव कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
0: जी, और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
1: 100% यस। जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो वो सब निकालना आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो जाते हैं। जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है, अगर उसके बीचों बीच है तो वहां तक पहुंचना थोड़ा सर्जिकली, जो हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ ना कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है और ट्यूमर पूरी तरह से निकाल नहीं पाते, तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज है, रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में समहाउ वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है, जो आसानी से मरीज ले सकता है।
0: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
1: तो ट्यूमर को तो ऐसा एक प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी।
1: जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज, बीपी का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन हैं, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहिए, दिक्कत नहीं है फिर भी। स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे आप जाके अब न्यूरो को दिखाइए, बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज की दवाई खा रहा हूँ, बीपी की दवाई खा रहा हूँ, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी। तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े, तो उसी के लिए हम बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डायग्नोज रादर देन उसको मिस करना, क्योंकि एक बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो जो आजू बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले।
0: जी जी,
1: तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीज है नशा बंद कर दो, बहुत फायदा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों में कुछ भी फायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफी खराब चीज है, जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियां जो है सिकुड़ती जाती है, तो वो बंद करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम कर।
0: जी, तो ये जो जंक फूड की बात कही है, तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेन जी जो सुन रहे हैं और नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद बात है ये।
1: करेक्ट, तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है ऑलमोस्ट
0: जी
1: सारे छोटे सिटी में भी, काफी सस्ते में मिल जाते हैं,
0: जी
1: बनाने में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया।
0: हाँ
1: और दिक्कत है कि उनका इमीडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या
0: जी
1: ही
0: जी
1: होगा, बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
0: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिरदर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिरदर्द सुबह उठते से ही होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिरदर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है, तो
1: बिल्कुल,
0: इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए,
1: तो
0: जरा
1: हर
0: बताइए।
1: पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है, तो
0: जी
1: बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था हम भी वही दवाई खा ले क्या।
0: जी जी
1: अब ऐसे बाकी फैमिली मेंबर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किससे हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हार्मोन्स एंजाइम सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग, तो जो पैटर्न ऑफ हेडेक हम बोलते हैं जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर

0: या सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम करे। कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट अजीब सा होता
1: करेक्ट,
0: है।
1: उस
0: तो ये क्या कोई न्यूरो
1: न्यूरो रिलेटेड
0: प्रॉब्लम?
1: ही है, उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60+ एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना, और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांपने लगते हैं। तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहा है, तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया, उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो
0: जी
1: उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है, मेडिकल टर्म उसको बोलते हैं फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज करते हैं, बट ये दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाता है। ऐसे पेशेंट में हमको सीटी स्कैन एमआरआई नहीं, हम
0: जी
1: फैमिली को एक एडवाइस देते हैं कि जब भी उनका पैर ऐसे हिलना शुरू हो, उसका एक वीडियो बना लीजिए। तो ये जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है, उससे एज अ डॉक्टर हमको काफी फायदा होता है। तो हमको डाउट ये है कि कहीं वो फिट्स तो नहीं था, कहीं उनको ट्रेमर या पार्किंसंस तो नहीं है। तो अगर वो फैमिली मेंबर्स ने उसका वीडियो बना लिया, और अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे, तो हम उस चीज को डायग्नोस कर लेते हैं।
0: जी
1: बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है।
0: जी तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा
1: चलो
0: कर रहे हैं। नमस्कार।
1: चलो, नमस्कार एवरीवन, थैंक यू जी।
0: थैंक यू। सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला ओ गडिले
3: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। नेता प्रतिपक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वर्ष 2023 और 2026 तक झारखंड में हुई नियुक्तियों की सीबीआई जांच जरूरी है। गिरिडीह में भाजपा नेता ने कहा कि सरकार बिचौलिए को गिरफ्तार कर रही है जबकि बड़े अधिकारियों को बचा रही है। श्री मरांडी ने आधे दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लेते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की। राजमहल के झामुमो सांसद विजय हंसदा ने कांग्रेस नेता योगेंद्र साव की ओर से सरकारी अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने कहा कि सरकारी कार्यों में बाधा डालने वाले के साथ सरकार सहयोग नहीं करती। जमशेदपुर के सरकारी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने सोमवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को साझा करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सहयोग से माय भारत पोर्टल पर CSIR विज्ञान और नवाचार प्रश्नोत्तरी शुरू की है। युवाओं के लिए तैयार यह प्रश्नोत्तरी 20 से 26 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। प्रकृति पर्व करम पर कल पूरे राज्य में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज पूर्व संध्या पर मोरहाबादी के दीक्षांत मंडप में करम पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ट्राइबल फैशन शो मुख्य आकर्षण है। रांची नगर निगम की ओर से राजधानी के सभी 289 सरना स्थलों और अखड़ा में साफ सफाई और पेयजल की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। धनबाद स्थित देश के प्रमुख शोध संस्थान CSIR सिम्फर का लेडीज क्लब आदिवासी महिलाओं को स्वास्थ्य पोषण और स्वावलंबन से जोड़ने की अनूठी पहल कर रहा है। क्लब की अध्यक्ष मीरा मिश्रा ने बताया कि महिलाओं को मिलेट्स यानी मोटे अनाजों के पोषक तत्वों की जानकारी के साथ साथ इससे आधुनिक खाद्य उत्पाद तैयार कर स्वरोजगार अपनाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

लोरियां, दुनिया की सबसे पवित्र रचनाएं, दुनिया की सबसे पवित्र कविताएं हैं हर भाषा की लोरियां। लोरियां बची रहें, बचा रहे बचपन, बची रहे ममता। आइए इस लोरी को सुने जो दो अलग अलग आवाजों में आप तक पहुंचेगी।

तुम्हारी आंखों से रोशन हैं हमारी शाम और सुबह, हमारी दुनिया में रंग हैं तुम्हारी आंखों की वजह से। तुम हमारी दुनिया की चमक हो, तुम्हारी आंखों में बो रखे हैं हमने अपने कुछ सपने। देखो संभाल कर रखना हमारे सपनों की ये नाजुक दुनिया।

0: क्या है।
1: आज के छायागीत में थे ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से आकाशवाणी का ही डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

प्रबंधन आज की बात में अंतर्वर्ती खेती के लाभ और भेंटवार्ता आप सुनेंगे आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई। विषय होगा नवजात बछड़ों की देखभाल और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। मल्चिंग विधि, इस विषय पर आप आज की नसीहत में सुनेंगे। 6:02 का समय होगा ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी। इस कार्यक्रम में फसलों में जिप्सम का महत्व, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही कुल्थी की खेती में प्रबंधन, इस विषय पर भी आप चर्चा सुनेंगे। और कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे से लेकर भेंटवार्ता सुनेंगे। विषय होगा जाड़े की अगेती सब्जियों की बुआई एवं रोपाई और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।

7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग 7:30 पर 7:45 पर आप सुनेंगे कल्याणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दंत चिकित्सक गढ़वा के डॉक्टर ताहा रिया से ली गई भेंटवार्ता। विषय होगा दांतों में सड़न, कारण और बचाव, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार आप सुनेंगे, और 10:20 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हर रोज की तरह सभा की समाप्ति होगी रात्रि 11:10 पर।

0: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। घर आंगन सुनने वाले तमाम बहनों को नमस्कार। बहनों आइए कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।
1: तार सप्तक, मंद्र सप्तक,

जी हाँ बहनों, तनाव मुक्त रहें इस विषय को लेकर हम अब आपसे बातें कर रहे हैं। तन मुक्त रहे यानी शरीर स्वस्थ, रोग मुक्त और हल्का रहे, यह सुखी जीवन का पहला सुख है। जी हाँ बहनों, शरीर को निरोगी और तनाव मुक्त रखने के लिए आप कुछ बातों को अगर ध्यान रखेंगी तो निश्चित ही तनाव मुक्त रहेंगी। जैसे कि सबसे पहले तो आप संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, साथ ही गहरी सांसें और ध्यान करें, और सकारात्मक दिनचर्या जो है बहनों, सकारात्मक दिनचर्या को अपनाएं, और इस तरह से अगर आप रहती हैं तो निश्चित ही तनाव मुक्त रहेंगी। और अब आगे हम बढ़ते हैं और चलिए सबसे पहले फिलहाल सुनते हैं जयपूर्णा विश्वकर्मा की वार्ता। विषय है बदलते समय में हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का योगदान।

बदलते समय में हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का योगदान। नमस्कार। समय की सबसे बड़ी विशेषता है उसका निरंतर बदलते रहना। समय बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो अभिव्यक्ति के माध्यम भी बदलते हैं। कभी विचार ताड़पत्रों और पांडुलिपियों में सुरक्षित होते थे, फिर छापा खाने में उन्हें पुस्तकों और समाचार पत्रों तक पहुंचाया। रेडियो आया तो शब्दों को स्वर मिला, टेलीविज़न ने शब्दों को साथ दृश्य जोड़े और आज इंटरनेट, स्मार्टफोन तथा डिजिटल तकनीकी ने पूरी दुनिया को मानो हमारी हथेली पर समेट दिया है। पर इस बदलते समय के बीच कुछ ऐसा भी है जिसकी आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य की अभिव्यक्ति, सत्य की खोज और संवेदना की अनुभूति, और इन्हीं तीनों को सहेजने में हिंदी साहित्य और पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इसी भाव को कुछ पंक्तियों में यूँ कहा जा सकता है। समय बदलता रहा, शब्द चलते रहे, दिन बनकर अंधेरों में जलते रहे, युग ने बदले भले अपने कितने निशान, शब्द मानव हृदय में मचलते रहे। साहित्य समय का दर्पण और समाज की संवेदना। साहित्य को प्रायः समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन साहित्य केवल दर्पण ही नहीं है। दर्पण तो हमारे सामने उपस्थित दृश्य को दिखाता है, साहित्य कई बार उस दृश्य के पीछे छिपे सत्य को भी सामने लाता है। साहित्य हमें बताता है कि किसी समय में मनुष्य ने क्या देखा, क्या सहा, क्या सोचा और किस बेहतर भविष्य का सपना देखा। हिंदी साहित्य की विशाल परंपरा को देखें तो कबीर के शब्दों में सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध निर्भीक चेतना दिखाई देती है। तुलसीदास सूर के साहित्य में लोक जीवन, भक्ति और मानवीय अनुभूतियों का अद्भुत संसार मिलता है। आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य को नई चेतना प्रदान की। प्रेमचंद्र ने किसान, मजदूर, स्त्री, गरीब और वंचित समाज की पीड़ा को कथा साहित्य के केंद्र में स्थान दिया। महादेवी वर्मा की करुण संवेदना, निराला का स्वाभिमान और विद्रोही स्वर तथा रामधारी सिंह दिनकर की ओजस्विता, ये सब केवल साहित्य उपलब्धियां नहीं हैं, ये अपने अपने समय की चेतना के जीवंत दस्तावेज भी हैं। साहित्य का कार्य केवल मन बहलाना नहीं, वह मन को जगाता भी है, वह प्रश्न करता है, वह असहमति को स्वर देता है और सबसे महत्वपूर्ण, वह हमें किसी दूसरे मनुष्य की पीड़ा को महसूस करना सिखाता है। इसीलिए जहाँ पीड़ा को भाषा मिली, साहित्य वहीं जन्म लेता है। जहाँ मौन को वासा मिली, साहित्य वहीं जन्म लेता है। कलम जब मनुष्य के आंसू को अपना अर्थ बना लेती है, वहीं से समाज बदलने का एक नया स्वप्न जन्म लेता है। बदलते समाज और बदलता साहित्य। आज समाज उन परिस्थितियों में बहुत अलग है जिनमें 100 वर्ष पहले का साहित्य लिखा जा रहा था। आज हमारे सामने नए प्रश्न हैं। तेजी से बढ़ते शहर, गांवों में पलायन, बेरोजगारी, पर्यावरण संकट, बदलते पारिवारिक संबंध, स्त्री अस्मिता, सामाजिक समानता, वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद और तकनीक पर बढ़ती निर्भरता, इन सभी ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। एक समय पत्र की प्रतीक्षा में कई दिन गुजर जाते थे, आज संदेह कुछ सेकंड में दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। दूरी कम हुई, लेकिन कई बार मनुष्य के भीतर का अकेलापन बढ़ा है। हमारे पास संपर्क के साधन पहले से कहीं अधिक हैं, लेकिन क्या संवाद भी उतना ही बढ़ा है? यह प्रश्न आज साहित्य हमसे पूछ रहा है। आज की कविता मोबाइल की स्क्रीन पर भी पढ़ी जा रही है। कहानी अब केवल पुस्तक में नहीं, डिजिटल पत्रिकाओं और ऑनलाइन मंचों पर भी उपलब्ध है। साहित्य के स्वरूप और माध्यम बदल रहे हैं, परंतु उसका मूल उद्देश्य आज भी वही है, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना। पत्रकारिता समाज की सहज और लोकतंत्र की आवाज़। अब बात पत्रकारिता की। यदि साहित्य समाज की संवेदना है तो पत्रकारिता समाज की सहज आंख है। पत्रकारिता घटनाओं को केवल दर्ज नहीं करती, वह प्रश्न पूछती है, तथ्य खोजती है और
नागरिकों को उनके आसपास घट रही घटनाओं से परिचित कराती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उस समय समाचार पत्र केवल खबरों के पन्ने नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के वाहक थे। हिंदी पत्रकारिता ने जनसाधारण की भाषा में स्वतंत्रता, स्वाभिमान, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता की भावना को विस्तार दिया। एक जिम्मेदार पत्रकार की कलम केवल शब्द नहीं लिखती, वह इतिहास का प्रथम प्रारूप लिखती है। इसी भावना को कुछ पंक्तियों में, कलम उठे तो सत्य का सम्मान साथ हो, प्रश्न उठे तो जन जन की आवाज़ साथ हो, खबर सिर्फ खबर बनकर गुजर न जाए कहीं, उसमें समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हो। रेडियो शब्द और विश्वास का आत्मीय रिश्ता। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता की चर्चा करते हुए रेडियो की भूमिका को भला कैसे भुलाया जा सकता है। रेडियो एक ऐसा माध्यम रहा है जिसने भाषा को केवल पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे आवाज़ बनाकर घर घर तक पहुंचाया। शहरों से लेकर दूरस्थ गांवों तक समाचार, साहित्य, संगीत, नाटक, वार्ता, कृषि संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संदेश और जन जागरूकता, रेडियो ने अनेक रूपों में समाज की सेवा की है। रेडियो की सबसे बड़ी शक्ति है आवाज़ का विश्वास। यहाँ सब दिखाई नहीं देते, फिर भी मन में चित्र बना देते हैं। एक कुशल उद्घोषक की आवाज़ और श्रोता के बीच एक अदृश्य आत्मीय संबंध बन जाता है, और शायद इसीलिए रेडियो हमें यह सिखाता है कि संचार केवल देखने का विषय नहीं, महसूस करने का अनुभव भी है। न चेहरा सामने, न कोई चित्र दिखाई देता है, फिर भी स्वर मन के यागन तक चला आता है। यही तो रेडियो के शब्दों की सुंदर पहचान है। दूर बैठा कोई अपना सा सुनाई देता है। डिजिटल युग में सूचना का विस्तार और सत्य की चुनौती। आज हम सूचना क्रांति के युग में हैं। मोबाइल फोन की एक छोटी सी स्क्रीन पर समाचार पत्र भी है, पुस्तकालय भी, रेडियो भी, टेलीविज़न भी, और पूरी दुनिया से संवाद करने की सुविधा भी। यह तकनीकी की असाधारण उपलब्धि है। आज किसी छोटे शहर या गांव का युवा लेखक भी अपनी रचना दुनिया भर के पाठकों तक पहुंचा सकता है। किसी दूरस्थ क्षेत्र की समस्या राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन सकती है। हिंदी के लिए यह बड़ा अवसर है, लेकिन हर अवसर अपने साथ कुछ चुनौती भी लाती है। आज समाचार बहुत तेजी से फैलता है, कभी कभी उसकी सत्यता की जांच से

0: अधिक तेजी होती है। अधूरा सूचना, भ्रामक शीर्षक, कृति रूप से तैयार चित्र, वीडियो तथा बिना पुष्टि के प्रसारित संदेश समाज में भ्रम पैदा कर सकते हैं। ऐसे में पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी केवल गति नहीं, विश्वसनीयता ही है। समाचार सबसे पहले देना अच्छी बात है, लेकिन समाचार देना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि झूठ की रफ्तार चाहे आंधी के समान हो, सत्य की चाल फिर भी अपना सम्मान हो। खबर वही जो तथ्य की कसौटी पर खरी उतरे, कलम वही जिसके हृदय में जनहित का ध्यान हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा का नया भविष्य। आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर चुके हैं। मशीनें अब भाषा को समझने, लिखने, अनुवाद करने और आवाज़ उत्पन्न करने तक में सक्षम हो रही है। यह परिवर्तन साहित्य और पत्रकारिता दोनों के सामने नए अवसर, नए प्रश्न लेकर आया है। तकनीकी लेखक की सहायता कर सकती है, पत्रकार को बड़ी मात्रा में उपलब्धि सूचनाओं के विश्लेषण में मदद कर सकती है, भाषाओं के बीच की दूरी कम कर सकती है। लेकिन तकनीकी कितनी भी विकसित क्यों न हो जाए, मानवीय विवेक, नैतिकता और संवेदना का महत्व समाप्त नहीं हो सकता। मशीन शब्दों को जोड़ सकती है, लेकिन उन शब्दों के सामाजिक प्रभाव की जिम्मेदारी अंततः मनुष्य को ही समझनी होगी। इसीलिए आने वाला समय तकनीक और मनुष्य के संघर्ष का नहीं, बल्कि तकनीक के विवेकपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग का समय होना चाहिए। हिंदी परंपरा से भविष्य तक। आज हिंदी के सामने केवल अपनी विरासत बचाने का प्रश्न नहीं है, उसके सामने भविष्य की भाषा बनने का अवसर भी है। हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और जनसंचार की सशक्त भाषा है। डिजिटल माध्यम ने इसकी पहुंच को और व्यापक बनाया है। अब आवश्यकता है कि हिंदी ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, कानून, प्रशासन, प्रबंधन और आधुनिक तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी सहज और प्रभावी अभिव्यक्ति का माध्यम बने। हमें ऐसी हिंदी चाहिए जो अपनी जड़ों से जुड़ी हो, लेकिन नए शब्दों और नए विचारों से भयभीत ना हो। जड़ों से जुड़ी रहे, आकाश से संवाद करे। हिंदी नए युग के हर प्रश्न से मुलाकात करे। परंपरा का दीप भी उसके हाथ में जलता रहे और नई तकनीक के संग भविष्य की शुरुआत करे। साहित्य और पत्रकारिता दोनों धाराएं एक उद्देश्य। साहित्य और पत्रकारिता की कार्यशैली अलग हो सकती है, लेकिन दोनों के केंद्र में मनुष्य और समाज है। पत्रकारिता हमें बताती है आज क्या हुआ, साहित्य हमसे पूछता है जो हुआ उससे मनुष्य पर क्या बीती। पत्रकारिता घटना को दर्ज करती है, साहित्य उसकी अनुभूति को। पत्रकारिता तत्काल समय का दस्तावेज बनती है, साहित्य उसी समय की दीर्घकालीन स्मृति। एक तथ्य को बचाता है, दूसरा संवेदना को। और जब तथ्य और तथा संवेदना दोनों साथ चलते हैं, तभी एक जागरूक और मानवीय समाज का निर्माण होता है। शब्दों की जिम्मेदारी। शब्द हैं तो सोचकर संसार को सौंपिए, शब्द में विश्वास का उजियार भी रखिए। कलम की नोक पर केवल अभिव्यक्ति ही नहीं, मनुष्य के प्रति थोड़ा प्यार भी रखिए। अंत में कुछ पंक्तियाँ। बदलेंगे युग, बदलेंगे साधन, बदलेंगे संवाद, फिर भी शब्दों में जीवित रहेगा मन का अनुवाद। सत्य की लौ लेकर पत्रकारिता चलती रहे, संवेदना बन साहित्य हृदय में पलता रहे। हिंदी केवल भाषा नहीं, जनमन की अभिव्यक्ति है, बीते कल की स्मृति और आने वाले कल की शक्ति है। शब्द जब सत्य और संवेदना का हाथ थाम लेते हैं, तभी समाज अपने लिए बेहतर भविष्य लिखता है। इसी विश्वास और आशा के साथ धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आपने सुना जयपूर्णा विश्वकर्मा की वार्ता, विषय था बदलते समय में हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का योगदान। और अब बातें करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर, जो कि आज है, यानी कि हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में शुरू किया गया था। जी हाँ बहनों, इस साल का विषय है यानी थीम जो है 2026 का है, इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरीडे, यानी शांति में निवेश करें सभी के लिए हर जगह हर दिन। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहेंगे कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना है और संयुक्त राष्ट्र इस दिन 24 घंटे के लिए युद्ध विराम और अहिंसा का पालन करने का आग्रह करता है। तो इस तरह से आज जो है हम लोग 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं और इसी के साथ अब घर आंगन कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। नेता प्रतिपक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वर्ष 2023 से 2026 तक झारखंड में हुई नियुक्तियों की सीबीआई जांच जरूरी है। गिरिडीह में भाजपा नेता ने कहा कि सरकार बिचौलियों को गिरफ्तार कर रही है जबकि बड़े अधिकारी को बचा रही है। श्री मरांडी ने आधे दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लेते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की। जमशेदपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर ट्रैफिक डीएसपी और डीटीओ ने ऑटो और ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक की। चालकों को जरूरी कागजात दुरुस्त रखने, निर्धारित ड्रेस पहनने और सड़क किनारे वाहन नहीं खड़ा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। राजमहल के झामुमो सांसद विजय हांसदा ने कांग्रेस नेता योगेंद्र साव की ओर से सरकारी अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने कहा कि सरकारी कार्यों में बाधा डालने वाले के साथ सरकार सहयोग नहीं करती। लोहरदगा पुलिस ने मैना बगीचा चटपटी चौक के पास छापेमारी कर 18 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों में नदिया शनि मंदिर के पीछे रहने वाला एक युवक और दूसरा गुमला जिले के घाघरा बस्ती का रहने वाला है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सहयोग से माय भारत पोर्टल पर CSIR विज्ञान और नवाचार प्रश्नोत्तरी शुरू की है। युवाओं के लिए तैयार यह प्रश्नोत्तरी 20 से 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रकृति पर्व करम कल पूरे राज्य में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज पूर्व संध्या पर मोरहाबादी के दीक्षांत मंडप में करम पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ट्राइबल फैशन शो मुख्य आकर्षण है। रांची नगर निगम की ओर से राजधानी के सभी 289 सरना स्थलों और अखाड़ा में साफ सफाई और पेयजल की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

0: तमाम ग्रामीण भाई बहनों को प्रतिमा वर्मा का नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में सबसे पहले बातें जैविक खेती की। भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती है। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए और आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है, जिससे सीमांत और छोटे कृषक के पास कम जोत में अत्यधिक लागत लग रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की जितनी सारी समस्याएं हैं, इसे निपटने के लिए गत वर्षों से निरंतर टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर खेती करने पर बल दिया जा रहा है।
1: आपने सही कहा, और इस पद्धति से खेती करने में शरीर तुलनात्मक रूप से अधिक स्वस्थ रहता है, औसत आयु भी बढ़ती है। कीटनाशक और खाद का प्रयोग खेती में करने से फसल जहरीला होता है। जैविक खेती से फसल स्वास्थ्य और जल्दी खराब भी नहीं होता है।
0: इसके कई लाभ भी हैं। हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है और बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है।
1: और इसके साथ ही जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। किसान भाइयों, भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। भूमि के जल स्तर में वृद्धि क्रियाशील होता है। मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में भी कमी आती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है। अर्थात जैविक खेती मृदा की उर्वरकता और कृषकों की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने में पूरी तरह सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधि और भी अधिक लाभप्रद है।
1: और जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है और इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे भी उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में कृषक भाई अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
0: आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह बहुत लाभदायक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित ना हो, शुद्ध वातावरण रहे और पौष्टिक आहार मिलता रहे। इसके लिए हमें जैविक खेती की कृषि पद्धतियां को अपनाना होगा, जो कि हमारे नैसर्गिक संसाधनों और मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर समस्त जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी और हमें खुशहाल जीने की राह दिखा सकेगी। किसान भाइयों, कार्यक्रम में हम बातें कर रहे थे जैविक खेती की
1: और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए भेंट वार्ता।
2: अपने खेतों से घर वापस आए गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती बाड़ी में। जी हां ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम खेती बाड़ी में आज हम बातें करेंगे जाड़े की अगेती सब्जियों की खेती की। चूंकि हमारे किसान भाई अगर अगेती सब्जियां की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से वो पहले बाजार में पहुंचते हैं सब्जियां लेकर के और मौसम के अनुकूल मुंह मांगा दाम उनको प्राप्त होता है। और जाड़े की अगेती सब्जियों की खेती से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आज आपके साथ हैं गढ़वा जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: नमस्कार आपको और मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं को जो इस कार्यक्रम को बड़ी लगन से सुनते हैं। जब अगेती खेती की बात आती है तो मुनाफा और लोगों का स्वास्थ्य, ये दोनों मुख्य विषय होती है।
2: जी,
3: जैसे हम लोग इस बात को मानते हैं कि जब स्वस्थ रहना है तो अपने भोजन में सब्जी का जितना से ज्यादा हम लोग प्रयोग करें उतना ही फायदेमंद होता है।
2: जी।
3: जब सब्जी की बात आती है तो सब्जी हमेशा आप देखेंगे कि बाजार में किल्लत रहती है। जब भी मौसम थोड़ा खराब होता है तो सबसे ज्यादा भाव बढ़ता है किसी का तो सब्जी का बढ़ता है।
2: जी।
3: और जब जाड़े की मौसम शुरू होती है, जब हमारे पास सब्जी का अथाह प्रोडक्शन होना शुरू होता है तो भाव गिर जाता है। लेकिन यदि जब हम अगेती सब्जी उगाते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा मिलता है। जब अगेती सब्जी की बात करेंगे तो इसमें दो चीज सबसे मुख्य होता है। एक, ठंड से बचाव, यदि ठंड शुरू हो गया तो ठंड से कैसे बचाव करेंगे, और प्रभेद जो हम सब्जी लगा रहे हैं वो कौन सा सब्जी लगा रहे हैं और उसका कौन सा प्रभेद लगा रहे हैं
2: जी,
3: तो ये तीन बातें मुख्य रूप से होती है। जब हम लोग एडवांस में सब्जी उगाने की बात करते हैं तो जिनका बाजार मूल्य बहुत अच्छा कॉन्स्टेंट रहता है उन सब्जियों का चुनाव करना चाहिए
2: जी।
3: जैसे हम लोग बोलेंगे गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, अभी आप देखेंगे कि ब्रोकली का अच्छा डिमांड रहता है और हमेशा से बाजार में रहता है। मटर, गाजर, आलू, इसके अलावा शिमला मिर्च, पालक, जिसका कि सालों भर डिमांड रहता है, तो इसको अगेती के रूप में और सालों भर डिमांड के रूप में भी हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा जो पत्ती वाली सब्जी होती है, मूली हुई, पालक, धनिया, मेथी, इसके बाजार को भी हम अगेती जब उपज करते हैं तो अच्छा बाजार मूल्य मिलता है। तो इनका आपको अगेती फसल का चुनाव करना है। अब आती है कि वेराइटी पे, तो वेराइटी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखता है
2: जी, बिल्कुल।
3: अगेती फसल में क्या होता है कि जो नॉर्मल दिन से जो उसका होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग आलू की बात करें तो आलू का फसल हम देखेंगे कि 120 दिन में तैयार होता है
2: जी हाँ।
3: लेकिन जब हम अगेती आलू की बात करेंगे तो उसका फसल कम से कम 80 दिन में तैयार हो और उसको हम सितंबर महीना में लगा लें तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो जैसे आलू की वैरायटी की हम बात करें तो जैसे कुफरी अशोक, कुफरी पुखराज और चंद्रमुखी, ये तीन ऐसा वैरायटी है कि ये 80 दिन में आपको उपज दे देगी और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है
2: जी जी।
3: बाकी से ये आलू की वैरायटी का चुनाव हो गया। इसी तरीका से हम लोग गोभी की बात करें, अर्ली मार्केट में आ पाए तो उसके लिए पूसा, केतकी, अर्ली कुआरी, पूसा दीपाली, ये वैरायटी और अर्ली सिंथेटिक, ये सब जो है बहुत अच्छी वैरायटी है
2: जी।
3: और इसका बाजार मूल्य भी मिलेगा, कम दिन में होगा भी, 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है। पत्ता गोभी की बात करें तो गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड, प्राइड ऑफ इंडिया, ये वैरायटी ये भी 60-65 दिन में तैयार हो जाती
2: है, हो जाती फसल।
3: तो इसमें जो तैयार होने का बात है, नर्सरी एक चीज होता है कि नर्सरी से जब हम खेत में जब लगाते हैं तो खेत में लगाने का समय 60-65 दिन में होता है, लेकिन यदि हम इसको नर्सरी में अभी के समय में जब हल्का बरसात का समय है उसी दिन में 30-35 दिन हम लोग नर्सरी ट्रे में इसको लगाएं तो हमारा 30 दिन इधर हो रहा है और 60 दिन खेत में हो गया। तो ये जो 30 दिन का समय है नर्सरी में, इसको हम बचा ले रहे हैं। ब्रोकली की बात करें तो ब्रोकली में लकी, फैंटेसी, F1, ग्रीन मैजिक, ये इम्पोर्टेंट वैरायटी है।
2: अच्छा,
3: ये भी आपका बाजार में 60-65 दिन में हम लोग आराम से पहुंचा सकते हैं।
2: अच्छा,
3: और इसमें फायदा क्या होता है कि ब्रोकली का एक ऊपर से आप हेड काट रहे हैं तो इसके बाद नीचे से 20 दिन के अंदर में दूसरा हेड तैयार हो जाता।
2: अच्छा,
3: है इसका भी अच्छा मुनाफा मिलेगा, कभी भी बाजार में 60-65 रुपये के जी से नीचे नहीं जाएगा
2: जी।
3: मटर की बात हम लोग करें तो मटर जो कम दिन में तैयार होता है, जैसे आरकेल है, PM 113 है, आजाद मटर 1 है, तो ये सब वैरायटी जो है 60-65 दिन 70 दिन में आप बाजार में आराम से आ जाती है। तो ये वैरायटी का चुनाव मुख्य रूप से है। इसी तरीका से हम लोग गाजर का बात करें तो गाजर की पूसा केसर वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है। मूली की पूसा चेतकी वैरायटी है, ये भी 30-40 दिन में तैयार हो जाती है। यहाँ तक यदि अच्छा खाद आप दिए हैं तो 25-30 दिन में इसका फसल तैयार हो जाता है। आलू की बात हम लोग किए हैं, टमाटर में झारखंड के लिए स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि बहुत अच्छी वैरायटी है। शिमला मिर्च की बात हम लोग करें तो कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, भारत, इंदिरा, ये वैरायटी है, ये बहुत कम दिन में तैयार हो जाती है और इसको हम लोग अर्ली वैरायटी के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं
2: जी।
3: तो ये वैरायटी मुख्य बात है। दूसरा चीज इसमें क्या होता है, हम लोग जो नर्सरी इसका जब तैयार करें पौधे की, जिसका नर्सरी तैयार करना है, उस नर्सरी के लिए हम लोग जो ट्रे होता है
2: जी जी,
3: उस ट्रे में उगाएं और ट्रे में क्या करें कि आधा कोकोपीट और आधा वर्मी कंपोस्ट मिला करके उसको भर करके और बीज से उगाएं और इसके बाद तब इसको हम लोग खेत में लेकर के जाएं।
2: अच्छा,
3: कोकोपीट और इसमें लगाने से पौधा स्वस्थ होता है, बीज का उपचार भी हम लोगों को जरूर करना चाहिए
2: समय समय पर।
3: हाँ, समय समय पे बीज उपचार हम शुरुआत में कर सकते हैं, जैसे बेबिस्टिन तो एक पुराना सिस्टम है ही, उसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जैविक विधि से भी इसका कर सकते हैं।
2: अच्छा,
3: जिसकी हम लोग समय समय पर चर्चा किए हैं कि 5 ml जो हम लोग बीज उपचार के लिए ऑर्गेनिक मटर से बनाते हैं बीजामृत, तो बीजामृत से भी हम लोग प्रत्येक केजी में मात्र 5 ml चाहिए। करना कुछ नहीं है, बीज को फैला दिए, उसके ऊपर जितना जरूरत है उतना जो अमृत को हम लोग गिराते हैं और उसको मिला करके धूप में नहीं रखेंगे, छाया में आधा घंटा के लिए सुखा लेंगे और बीज की बुआई करते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि बीज स्वस्थ पैदा लेता है, और जब बीज स्वस्थ होता है तो खेत में स्वस्थ रहेगा। दूसरा चीज आती है, खेत जब हम लोग बनाते हैं तो खेत में मिट्टी का भुरभुरापन जरूर हो, तो भुरभुरापन के लिए हम जितना भी हो सके उतना कम से कम कंपोस्ट हम लोग खेत में मिला सके। ऐसे वैज्ञानिक ढंग से हम लोग बोलते हैं कि 8 से 10 टन प्रति एकड़
2: के हिसाब से चलिए
3: कंपोस्ट आप मिलाइए, लेकिन यदि हमारे पास उतना मौजूद नहीं है तो जितना भी मौजूद है उतना कंपोस्ट हम लोग मिलाने की कोशिश करें खेत में। दूसरा चीज, जब 2 से 3 बार हम लोग खेत में पट्टा दे लें, पट्टा के साथ जुताई करें, पट्टा दे लें और एक स्लोप जैसा बना दे कि किसी कारण से यदि पानी हो रहा है तो वो निकल जाए।
2: अच्छा।
3: या हम लोग जो भी सब्जी लगा रहे हैं उसको मेड़ बना के लगाएं, सीधा प्लेन में नहीं लगाएं। जब भी अर्ली जो भी किसान करते हैं तो मेड़ बना के करेंगे, जिसके लिए जो निर्धारित दूरी है, जैसे आलू हम लोग, तो आलू को हम लोग 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे मेड़ बनाएंगे। इसी तरीका से टमाटर की हो तो उसका जब हाइब्रिड हम लोग लगाएंगे, ये सब हाइब्रिड की ही हम लोग बात किए, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएंगे। तो जब भी बनाएंगे तो मेड़ पे ही लगाएंगे।
2: अच्छा।
3: उससे क्या होता है कि कभी कभी आप देखेंगे कि किसी कारण से पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और एक बाई एक फसल पूरी मारी चली जाती है, लेकिन जब मेड़ पे हम करते हैं तो पानी आसानी से निकल जाती है, हवा भी पौधे को लगता है और जो उसका सही तापमान होना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जाड़ा से बचाना है, तो जाड़ा से ये बचता भी है। जैसे मेड़ पे आप जब लगाएंगे पौधा
2: तो पानी उतना
3: तो पानी तो निकल ही जाता है, लेकिन जैसे धूप आया तो धूप भी मेड़ को गर्म करके रखता है और पौधे को जितना गर्मी चाहिए गर्मी मिलता है और वो क्या होता है कि जाड़ा का कम प्रभाव पड़ता है। तो मेड़ पे लगाना बहुत जरूरी है। जो भी निर्धारित दूरी किसान इसका मेंटेन करते हैं, बस उनको एक काम करना है कि मेड़ पे जरूर लगाएं। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे जैसे सल्फर का प्रयोग, तो सल्फर का प्रयोग किसान को जरूर करना चाहिए।
2: अच्छा।
3: कुछ नहीं है, किसान भाई अपने खेत में जैसे 24 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर का डोज किसान भाई दे सकते हैं। यदि कट्ठा में किसान भाई देना चाहते हो तो 300 ग्राम प्रति कट्ठा के हिसाब से आप सल्फर दे सकते हैं
2: जी।
3: इस तरीका से मेंटेन करके किसान भाई अपने खेत को उचित पोषण देते हुए एक काम कर सकते हैं। अब दूसरा बात आती है कि यदि किसी कारण से ज्यादा जाड़ा पड़ने लगे तो वैसी स्थिति में किसान भाई क्या करें? तो वैसी स्थिति में किसान भाइयों को जैसे अपने जो है लो, हम लोग लो प्लास्टिक टनल बनाते हैं। लो प्लास्टिक टनल कुछ नहीं है, वो बस केवल प्लास्टिक से उस सब्जी को ढक देना है और उसके लिए एक टनल जैसा बना लेते हैं। टनल मतलब उसके भीतर जैसे टनल होता है, हम लोग घुस के पार होते हैं, तो उतना ही ऊंचाई से।
2: अच्छा।
3: उतना ही ऊंचाई, जैसे 1 meter की ऊंचाई पे।
2: अच्छा।
3: जो पौधा है यदि पत्तीदार पौधा है तो उसको 60 cm की ऊंचाई पे हम लोग लकड़ी बांध करके और उसको प्लास्टिक से ढक देते हैं जब ज्यादा ठंडा का समय आ रहा है। तो इससे दोनों चीज होता है, सर्दी से उसका प्रभाव कम होगा, ठंडा हवा से भी बचाव कम होगा और जो ऊपर से गर्मी होता है वो ट्रैप हो जाता है। तो ट्रैप होने से क्या होता है कि गर्मी मिलती है और कम दिन में फसल हमारी तैयार होकर के बाजार तक पहुंचने के लायक हो जाती है।
2: तो ये बातें हुई जाड़े की अगेती सब्जियां हम किस प्रकार से करें, अधिक से अधिक उत्पादन करें, पौधों में बढ़वार किस प्रकार से हम करें, खाद्य का व्यवहार कैसे करें, इन सारी बातों से संबंधित जानकारी साझा कर रहे थे गढ़वा जिला के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी। सर, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और अगेती सब्जियां, जाड़े की अगेती सब्जियां से संबंधित बातें हमारे किसान भाइयों के साथ की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए पलामू जिला के सफल किसान से की गई भेंट वार्ता। तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पाटन प्रखंड के ग्राम सहदेवा जिला पलामू के सफल किसान शंकर कुमार मेहता। सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: अभी आप किस किस फसल की खेती कर रहे हैं?
4: अभी धान और मक्का का खेती कर रहे हैं, जिसमें मक्का है, धान तो बारिश के वजह से धान का बिहन तो तैयार है लेकिन उसका बुआई नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया है। और इसके बाद सब्जियां हैं।
1: हाँ, सब्जी में क्या क्या उगाए हैं अभी आप?
4: सब्जी में अभी भिंडी है, नेनुआ है, करेला है।
1: अच्छा,
4: यही सब है सब्जियां में अभी।
1: मक्का की क्या स्थिति है और उसमें क्या क्या बीमारियां लगती है?
4: मक्का का स्थिति अभी ठीक है, उसमें बीमारियां पता उसका पीलापन हो जाता है और धावा टाइप का हो जाता है, तो उसमें हम लोग कुछ घरेलू उपचार भी करते हैं।
1: क्या करते हैं घरेलू उपचार में?
4: घरेलू उपचार राख छिड़कते हैं, राख हो गया उसका छिड़काव करते हैं। हम लोग घर बना करके अधिकतर जैविक खाद का यूज करते हैं इसी तरह का, और जो मान लो राख छिड़कने से नहीं ठीक होता है उसको मार्केट से दवा मंगवा के छिड़काव करते हैं।
1: और सब्जियां में जो आप घरेलू उपचार क्या करते हैं, जो सब्जी में अगर कीड़ा लगता है उसके?
4: घरेलू उपचार हम लोग के पास सब्जियां के लिए वही है, राख है। हम लोग कीड़ा लगता है राख ही डाल देते हैं।
1: अच्छा, सब्जी में आप करेली नेनुआ सब कितने में आप लगाए हैं?
4: भिंडी लगभग 4 डिसमिल में है और नेनुआ भी 1 कट्ठा के लगभग है और करेला आधा कट्ठा 2 डिसमिल के लगभग में ये खेती है।
1: अच्छा, इन सब सब्जियों की देख रेख आप कैसे करते हैं?
4: देख रेख वही, उसको समय से उसको कोड़ते हैं, जो घास है घास नहीं लगते हैं, कीड़ा वगैरह के देखते हैं, साप्ताहिक राख का छिड़काव करते ही रहते हैं कीड़ा ना लगे। घरेलू उपचार यही सब करते हैं। खैर पतवार निकलता है तो ये निराई कोड़ाई वगैरह करते हैं।
1: इसके अलावा आपने और क्या क्या चीज लगाए हैं?
4: इसके अलावा मैंने बहुत ही पौधा लगाए हैं,
1: जैसे
4: अंजीर का फल हो गया, उसका भी पौधा है मेरे पास, लीची है।
1: अच्छा।
4: जामुन है, कटहल है, पपीता है, नारियल है और नाशपाती है, शरीफा भी है, दालचीनी और गरम मसाला गोलकी जो होता है। हाँ, वो भी मैंने लगाया है।
1: अच्छा, आपने तो बहुत सारे चीजें लगाई हैं।
4: हाँ, लगाया है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा विकसित पौधा अंजीर, लीची, नाशपाती, पपीता, ये सब ठीक ठाक है। हम लोग का पलामू का मिट्टी जैसे बोला जाता था ये सब फल नहीं होगा, इसीलिए मैं ट्राई किया लगाकर।
1: अच्छा।
4: तो विकास तो हमको लगा, फल भी दिया हुआ है, फल है अभी।
1: अच्छा, इसकी खेती में क्या संभावना आपको नजर आती?
4: इस खेती में संभावना हमको यही आती है, अभी तो मान ले 1-2 पौधा लगाए हैं, जिस तरह से अभी विकास है अगर इस तरह से हम इसको ज्यादा मात्रा में लगाए तो हमको इसे हम लोग किसान को आगे बढ़ने की हमको राहत मिलेगा, घर परिवार चलेगा, यही सब।
1: अंजीर का अधिक उत्पादन के लिए आप क्या क्या करते हैं और इसकी देख रेख आप कैसे करते हैं?
4: अंजीर के पौधा के लिए ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करना पड़ता है।
1: अच्छा।
4: हम लोग का इसका पौधा अनेकों प्रकार के कंपनी वाले घूमते हैं गांव में, तो उन्हीं से मैंने आज के 2 साल पहले पौधा लिया था अंजीर का। उसको अंजीर लगाने का नियम है जो अंजीर लगाने से पहले 1-1.5 माह पहले उसका दर मार देना रहता है। दर मारने से फायदा ये होता है जो दर और उसका गहराई कम से कम 1.5 फीट उसको मार करके छोड़ देते हैं और पौधा मिट्टी जो अंदर है लगाने से फूल का टाइप का हो जाता है। जो लगाते हैं तो उसका शोर नीचे जमीन मिट्टी को ज्यादा जोड़ को असर ना करे, जहाँ थोड़ा मने गीला ढीला रहेगा तो जल्दी पकड़ता है जड़।
1: और आप बोले कि पपीता भी लगाए हैं, नाशपाती भी लगाए हैं, इन सब फलों की देख रेख आप उसी तरह करते?
4: हाँ, उसी तरह सब करते हैं।
1: अभी तक आपने अंजीर का उत्पादन लिया कि नहीं?
4: नहीं, अभी तो फल लगा लिया नहीं, अभी तो 2 साल हो ही रहा है। अच्छा। फल निकला है, अभी तैयार नहीं हुआ है।
1: किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई है, इसका लाभ आपने लिया है?
4: जी, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया है।
1: इसको कैसा मानते हैं आप?
4: किसान क्रेडिट कार्ड किसान भाई के लिए बहुत ही अच्छा है।
1: अच्छा।
4: बहुत सुविधा है। किसान क्रेडिट कार्ड लेने से हमको खेती करने के लिए सहयोग हो जाता है, इससे हमको आगे बढ़ने की रास्ता देखता है। और KCC अकाउंट है, ये योजना बहुत सही चीज है। इसको समय से सिर्फ ट्रांजेक्शन करना है, अगर समय से आप ट्रांजेक्शन लेन देन करते हैं तो KCC के मेरे हिसाब से कोई इसका इंटरेस्ट नहीं है।
1: इसको कैसा मानते हैं आप?
4: बहुत अच्छा।
1: अभी तक आपने KCC से कितना लाभ लिया है?
4: अभी तो करवाया है इसी वर्ष 73,800 का KCC मेरा स्वीकृति हुआ है।
1: अच्छा।
4: हमको नवम्बर महीना 2021 में KCC प्राप्त हुआ है।
1: अच्छा। उससे आप किस किस फसल का उत्पादन ले रहे हैं?
4: उससे अभी मक्का है, भिंडी है, नेनुआ है, करेला है और धान का भी बीज वगैरह किए थे। बिहन तो तैयार है लेकिन बारिश के कारण बिहन सूख रहा है। उसको अभी तक तो हम लोग मोटर से बोरिंग से पानी चला करके बिहन को रखे हैं। हम लोग पास पानी नहीं है जो हम लोग मोटर से उसको सिंचाई कर रोप सके धान को।
1: यहाँ आहरा पोखरा वगैरह की क्या स्थिति है?
4: आहरा पोखरा का स्थिति उतना नहीं है, मीडियम साइज में है। जो आरा पोखरा होना चाहिए उस तरह से हम लोग के पास सुविधा नहीं है, और कुछ है भी तो उसमें पानी नहीं है, और जो हम लोग तरह

0: बार निकलता है तो ये निराई गुड़ाई वगैरह करते हैं।
1: इसके अलावा आपने और क्या क्या चीज़ लगाया है?
0: इसके अलावा मैंने बहुत ही पौधा लगाया है,
1: जैसे
0: अंजीर का फल हो गया, उसका भी पौधा है मेरे पास, लीची है,
1: अच्छा,
0: जामुन है, कटहल है, पपीता है, नारियल है, और नाशपाती है, शरीफा भी है, दालचीनी और गरम मसाला।
2: चीज़ें अपने पास रखें।
1: जिस जमीन का नमूना लेना हो उस क्षेत्र पर 10 से 15 जगहों पर निशान लगा लें। चुनी गई जगह की ऊपरी सतह पर यदि कूड़ा करकट या घास इत्यादि हो तो उसे हटा दें। खुरपी या फावड़े से 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं। इसके एक तरफ से 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत ऊपर से नीचे तक उतारकर साफ बाल्टी या ट्रे में डाल दें। इस प्रकार शेष चुनी गई 10 से 15 जगहों से भी उप नमूने इकट्ठा कर लें।
2: और अब पूरी मिट्टी को अच्छी तरह हाथ से मिला लें और साफ कपड़े या टब में डालकर ढेर बना लें। उंगली से इस ढेर को 4 बराबर भागों में बांट दें। आमने सामने के 2 बराबर भागों को वापस अच्छी तरह से मिला लें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक लगभग आधा किलो मिट्टी ना रह जाए। इस तरह एकत्र किया हुआ नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा।
1: किसान भाइयों, नमूने को साफ प्लास्टिक की थैली में सबसे पहले डाल दें और इस नमूने के साथ नमूना सूचना पत्रक, जिसमें किसान का नाम और उसका पूरा पता, खेत की पहचान, नमूना लेने की तिथि, जमीन का ढलान, सिंचाई का उपलब्ध स्रोत, पानी निकास, अगली ली जाने वाली फसल का नाम, पिछले 3 साल की फसलों का ब्यौरा और कोई अन्य समस्या आदि का विवरण कपड़े की थैली में रखकर इसका मुंह बांधकर मिट्टी जांच प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजना चाहिए।
2: किसान भाई, नमूना लेते समय कुछ सावधानियां आप रखें, जैसे मिट्टी का नमूना इस तरह से लेना चाहिए जिससे वह पूरे खेत की मिट्टी का प्रतिनिधित्व करे। जब एक ही खेत में फसल की बढ़वार में या जमीन के गड़न में रंग और ढलान में अंतर हो, या फसल अलग अलग बोई जानी हो या प्रबंध में अंतर हो, तो हर भाग से अलग नमूने लेने चाहिए। यदि ये सभी स्थिति खेत में एक जैसी हो तब एक ही नमूना लिया जा सकता है। आप ये ध्यान रखें कि एक नमूना ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर से लिया जा सकता
1: है। मिट्टी का नमूना खाद के ढेर, पेड़ों, मेड़ों, ढलानों और रास्तों के पास से और ऐसी जगहों से जो खेत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है वहाँ से बिल्कुल ना लें। मिट्टी के नमूने को दूषित न होने दें। इसके लिए साफ औजारों से नमूना एकत्र करें और साफ थैली में डालें। वैसी थैली काम में न लाएं जो खाद और अन्य रसायनों के लिए प्रयोग में लाई गई हो। मिट्टी का नमूना बुआई से लगभग 1 माह पहले कृषि विकास प्रयोगशाला में भेज दें, जिससे समय पर मिट्टी की जांच रिपोर्ट मिल जाए और उसके अनुसार उर्वरक और सुधारकों का भी उपयोग किया जा सके।
2: जिस खेत में कंपोस्ट खाद, चूना, जिप्सम और अन्य कोई तत्काल डाला गया हो तो उस खेत से नमूना ना लें।
1: किसान भाइयों, कार्यक्रम में ये हुई बातें मिट्टी जांच की, और कार्यक्रम से अब हमारा समय विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज बस यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागनी कुमारी और
2: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति।
2: नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी।

0: तमाम किसान भाइयों को रागनी कुमारी का नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में बातें फव्वारा सिंचाई से लाभ की। किसान भाइयों, सिंचाई की विभिन्न विधियों में फव्वारा सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जिसको अपनाकर जल प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और यह सिंचाई की उन्नत एवं आधुनिक विधि है। इस विधि में सिंचाई क्यारियों में न करके पाइपों एवं नोजलों के माध्यम से वर्षा के रूप में की जाती है। इस पद्धति में प्लास्टिक या एल्युमिनियम पाइपों को खेत में जाल बिछाकर ऊंचे नीचे रेतीले पहाड़ी और पथरीली किसी भी प्रकार की जमीन में सहजता से सिंचाई की जा सकती है।
1: यह विधि जल संरक्षण के साथ साथ मृदा अपरदन रोकने और भू संरक्षण में भी सहायक है, क्योंकि इस विधि से सिंचाई करते समय जल बहकर बाहर नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त क्यारी विधि की तुलना में फव्वारा सिंचाई पद्धति कई तरह से लाभकारी है।
0: इस विधि द्वारा सिंचाई करने से क्यारियों में की गई सिंचाई की तुलना में 30-40% पानी की बचत होती है और इस बचत का उपयोग उतना ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाने, भूमिगत जल स्तर सुदृढ़ करने, अधिक जल दोहन के कारणों से होने वाली हानि को भी रोका जा सकता है।
1: सतही विधि से सिंचाई के लिए क्यारी और नाली बनाने में लगने वाले श्रम, समय और व्यर्थ जमीन को बचाया जा सकता है। फव्वारा सिंचाई विधि अपनाने से भूमि को समतल करने में होने वाले समय और व्यर्थ जमीन को बचाया जा सकता है, क्योंकि इस विधि से उबड़ खाबड़ और ऊंचे नीचे सभी तरह के भूभागों में सिंचाई संभव है। रेतीली क्षेत्रों सतही विधि से सिंचाई करने पर अधिकांश जल पौधों की जड़ों की पहुँच से काफी बाहर और गहराई तक चला जाता है, जबकि फव्वारा सिंचाई की नियंत्रित पद्धति है।
0: इस विधि द्वारा सफल उत्पादन और फसल सघनता में वृद्धि और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार संभव है। फव्वारा संयंत्र को चालू करने के बाद यह सुनिश्चित कर लें कि सभी नोजल घूम नहीं रहा है तो अवश्य इसमें कचरा फंसा हुआ हो सकता है, इसलिए आलपीन और सुई की नोक से नोजल को साफ कर लेना चाहिए।
1: यह भी सुनिश्चित कर लें कि नोजल द्वारा फेंका जाने वाला पानी यदि खेत से बाहर जा रहा है तो आखिरी पाइप को छोटा कर लें। सिंचाई के लिए पानी के पाइपों को सीधा लगाना चाहिए। राइजर पाइप जिस पर नोजल लगे होते हैं सदैव सीधे खड़े रहने चाहिए। चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में फव्वारा लगातार न चलाकर पानी बहने की स्थिति से पूर्व ही बंद कर देना चाहिए।
0: किसान भाइयों, कार्यक्रम में ये हुई बातें फव्वारा सिंचाई से लाभ।
1: अब आइए हम सुनते हैं भेंटवार्ता।
2: अपने खेतों से घर वापस आए गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में बातें मोटे अनाजों की खेती की, और मोटे अनाजों में खासकर रागी, ज्वार, सामा, इन सभी की खेती हमारे ग्रामीण बंधु किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से करें जिससे कि अधिक उत्पादन हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ उन्हें प्राप्त हो, इसके संदर्भ में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के सहायक कृषि विशेषज्ञ अभिषेक पटेल। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
2: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण बंधु को ये बताया जाए कि अभी जो रागी की जो खेती हमारे किसान भाई करने जा रहे हैं, बहुत से लोग रोपाई कर दिए होंगे, बहुत से लोग रोपाई की शुरुआत कर रहे हैं, तो किस प्रकार से उनको वैज्ञानिक देखरेख करनी चाहिए, इसके किस्में क्या हैं?
3: जैसा कि रागी जो कि मोटा अनाज में आता है, जो कि बहुत ही लाभप्रद है, अगर किसान इसका लगा रहे हैं तो इसमें सर्वप्रथम इसका खेत की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करनी पड़ती है। जैसे कि आप इसको 2-3 बार उसका जोत कर दीजिए, उसके बाद आप उसमें लाइन से लगाएं और उचित दूरी पे, दूरी अगर देखें तो उसमें लाइन से लाइन 20 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर लगाएं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें फर्टिलाइजर का जो मैनेजमेंट है, जो कि खाद हो, खाद का जो है कि आप DAP यूरिया तो देते हैं, उसमें पोटाश नहीं देते हैं। उसके साथ पोटाश का क्या काम है कि उसको दाने को बोल्ड करेगा, वजन बढ़ाएगा, चमक बढ़ाएगा। तो किसान भाई DAP यूरिया के साथ साथ पोटाश भी डालें, और जब लगाने लगे मड़ुआ को तो उसके साथ साथ DAP और पोटाश जो मात्रा होगी उसको लगाते ही वक्त दे दिया जाए। बाकी जो यूरिया है, यूरिया की मात्रा हम रख लेंगे। यूरिया की मात्रा जब हमारा फसल 20-25 दिन के बाद हम जब पटवन करेंगे तो उस समय यूरिया का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होता है कि उसको टाइम पे भोजन मिलता रहेगा, तो जिससे फसल का बढ़वार अच्छे से होगा और उसके जो कल्ले निकलते हैं कल्ले अच्छा से निकलेगा, तो जिससे उपज में वृद्धि होगी। अगर हम बात करें कि वेराइटी की, तो वेराइटी में जैसे बिरसा मड़ुआ 1, बिरसा मड़ुआ 4, ये हमारे वेराइटी हुई इसका, जो कि यहाँ

0: पलामू क्या पूरे झारखंड में बहुत ही अच्छा कर रहा है।
1: अच्छा अच्छा ये उन्नत किस्म है
0: जी, अगर इसका बीज दर की बात करें तो 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर अगर लाइन से लगा रहे हैं, अगर किसान छिटकवा विधि से लगा रहे हैं तो वही लगभग 8 से 10 केजी।

0: सिंचाई की बात अगर आए तो
1: सिंचाई की अगर बात की जाए तो जैसे कि पलामू क्षेत्र में बीते 2 साल से बारिश नहीं हो रहा है, उसके लिए किसानों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि ये सिंचाई इसमें बहुत ही कम, जैसे पलामू में अभी बीते 2 साल से 500 से 600 mm बारिश हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही सूटेबल है क्रॉप है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको 1 से 2 पटवन में हो जाता है। एक पटवन आपको जर्मिनेशन के टाइम पे अगर हो जाए तो हो जाएगा, दूसरा का जब इसमें ब्रांचिंग आता है उस समय एक पटवन हो जाए तो ये आपका फसल अच्छे से हो जाएगा। जबकि धान के अपेक्षा इसमें बहुत ही कम पानी लगता है, तो इसलिए इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही हाई है धान के अपेक्षा, क्योंकि इसमें जो ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन इसमें लगभग 8 से 10% पाया जाता है, जो कि पाचन क्रिया में बहुत ही लाभप्रद होता है। और प्रोटीन वेरी रिच होता है, इवन कि गेहूं से भी ज़्यादा प्रोटीन आपके मड़ुआ में मिलता है। इसलिए अभी हाल में ही केंद्र सरकार ने इस पे प्रोत्साहन राशि दिया, देने का वादा किया है, अगर कोई भी किसान 1 एकड़ से ज़्यादा मड़ुआ की खेती करना है तो को 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा।
0: अच्छा,
1: अगर खेती बढ़ाते ही जा रहे हैं 1 एकड़ से ज़्यादा का, तो वो राशि बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को, जब आप अपना फसल लगा लीजिए, उसके बाद आप किसी भी नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाइए, आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन आपका स्वीकार हो जाएगा, उसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी आएंगे, आपके खेत में निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, उसके बाद आपके अकाउंट वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई होने के बाद आपके अकाउंट में 3,000 ट्रांसफर हो जाएगा।
0: ऐसा भी
1: प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है कि जिससे कि मोटे अनाज के प्रति लोग जागरूक हो, मोटा अनाज के प्रति आए लोग।
0: अच्छा, हम खर पतवार की अगर बात करेंगे मड़ुआ में तो फिर उसके क्या?
1: अगर खर पतवार की अगर बात करते हैं तो मड़ुआ में ज्यादातर मोथा घास और जंगली क्या बोलते पार्थेनियम ये बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पेंडीमेथिलीन जो दवा है इसको 1.5 ml पर लीटर में घोल के लगाने के 1 से 2 रोज के बाद छिड़काव करें, और अगर उससे ज्यादा दिन के बाद छिड़काव करते हैं तो उस पर फसल पे भी आपके प्रभाव करेगा, क्योंकि उसके बाद फसल जर्मिनेशन होने लगता है, क्योंकि ये इसका दाना बहुत छोटा होता है और इसका बहुत जल्दी ही जर्मिनेशन हो जाता है, हल्का भी नमी पाया तो जर्मिनेट हो जाता है, तो इसलिए 1 से 2 दिन के अंदर में ही दवा प्रयोग कर दें।
0: ये तो हुई बात उर्वरक की और रासायनिक उर्वरक की बात हुई, अगर जैविक खेती से हमारे किसान भाई अगर करना चाहे तो क्या करेंगे?
1: अगर जैविक खेती से करना चाह रहे हैं तो जैसे कि DAP यूरिया पोटाश हम उसमें तब नहीं देंगे, उसके जगह पे हमको देना होगा कि नीम का खली या करंज खली या तो गोबर खाद या तो बर्मी कंपोस्ट। जैसा कि बर्मी कंपोस्ट पे अभी बहुत ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में खेत हमारा धीरे धीरे बंजर की हो जा रहा है, क्योंकि यूरिया DAP का प्रयोग निरंतर करने से खेत का उपज भी कम होने लगता है धीरे धीरे, और उसका जो बंजर कर देता है जमीन को,
0: पोषक तत्व
1: तो उसका सब छीण हो जाता है, उसका मृदा जो कटाव होता है ज्यादा होने लगता है, तो उसके रोकथाम के लिए क्या है कि आप बर्मी कंपोस्ट यूज करिए या गोबर खाद के उपयोग करिए। बर्मी कंपोस्ट गोबर खाद के उपयोग करने से इसमें एक तो जल धारण क्षमता बढ़ जाता है, जल धारण क्षमता बढ़ने से आपका जैसे आप सिंचाई करिए तो 10 रोज उसमें नमी रहेगा, नहीं तो अगर वो इससे रहता है तो उसमें नमी आज सिंचाई कर रहे हैं तो 1-2 रोज के बाद नमी उड़ जाता है। साथ में जैसे कि किसी भी फसल के लिए 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें से 3 तो हमको प्राकृतिक रूप से मिल जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और 3 हम लोग दे देते हैं DAP यूरिया पोटाश के थ्रू, बाकी जो हमारे बचे 11 माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग नहीं दे पाते। जबकि अगर हम बर्मी कंपोस्ट या FYM दे रहे हैं तो उसके में ये सभी मात्राएं पूर्ति कर देता है, बाकी DAP यूरिया पोटाश ये मात्राएं नहीं पूर्ति करता है, तो ये हम किसान के लिए हम कहना चाहते हैं कि वो लोग बर्मी कंपोस्ट अगर नहीं उपयोग कर पा रहे हैं तो FYM जो गोबर खाद है इसको जरूर से जरूर खेत में डालें। इसका प्रभाव एक ही क्रॉप में नहीं रहता है, इसका 1 से 2 क्रॉप में प्रभाव दिखता है, जबकि DAP यूरिया पोटाश है ये एक ही क्रॉप में दिखेगा एक बार में।
0: तो मतलब एक फसल लेने के बाद दूसरी फसल भी लेते हैं तो उनको लाभ पहुंच सकता है।
1: हाँ, अगर गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं तो इस
0: मात्रा नीम की खली की बात अगर हम करें तो प्रति हेक्टेयर कितना देंगे?
1: नीम की खली की अगर बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर 150 से 200 kg अच्छा। प्रति हेक्टेयर में डालना होगा।
0: और ये तो हुई बात मड़ुआ की, अगर ज्वार की बात की जाए तो?
1: ज्वार की बात की जाए तो इसका जो खेत की तैयारी उसी तरीके से होगा, बस

0: इसका जो बीज दर है, बीज दर इसका थोड़ा सा इसका दाना बड़ा रहता है ज्वार का, तो इसलिए इसका बीज दर लगभग अगर लाइन से सोइंग कर रहे हैं तो इसका बीज दर आपका हो जाएगा 10 से 12 केजी, अगर छिटकवा विधि से कर रहे हैं तो 15 से 20 केजी समथिंग जाएगा। और अगर इसमें उर्वरक की बात की जाए तो उर्वरक लगभग सेम ही रहता है, पानी का भी इसमें सेम ही रहता है। अगर उन्नत किस्म की बात किया जाए तो CSV 20 और CSV 21 बिरसा जार 2 ये इसके उन्नत किस्म है, जो कि आपके अभी झारखंड में CSV 20 बहुत ही अच्छा कर रहा है। इसमें यह है कि CSV 20 जो है कि इसकी लंबाई लगभग 7 से 8 फीट होती है। अच्छा। इससे ये फायदा है कि अनाज के साथ साथ हमको पशुपालन के लिए चारा भी मिल जा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्योंकि हमारा प्रेजेंट टाइम धान और गेहूं तो हो नहीं पा रहा है, हमको तो खाने के लिए मिल जा रहा है पर हमारे जो पशु हैं उसको चारा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए ये जो CSV 20 है ये 7 से 8 फीट होता है, तो इसमें हमको चारा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो इसलिए ये वेरायटी यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा है CSV 20। इसका उपज भी लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
1: और सिंचाई
0: 1 से 2 सिंचाई, एक सिंचाई वही जर्मिनेशन समय, अगर जर्मिनेशन हो जा रहा है तो वही जब इसका कल्ला निकलने लगता है, गांठे बनने लगती है, उस समय एक सिंचाई करना होगा।
1: अच्छा
0: जी।
1: और कोदो सामा की अगर हम बात करें तो
0: कोदो सामा ये एक आपका माइनर मिलेट है, आता है ये, इसका दाना बहुत ही छोटा होता है, ये अधिकतर घास के रूप में होता है, लोग घास समझ के इसको कबार के फेंक देते हैं, जबकि ये बहुत ही हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है इसका, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, ये हर एक मायने में आपके जितने भी फसल है उससे बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। इसका लगभग लगाने का ये सबसे उपयुक्त समय है।
1: अच्छा।
0: अब प्रेजेंट टाइम अभी आज अभी भी बारिश नहीं हुआ है, जहाँ तक है कि धान का आसार एकदम कम हो गया है, तब किसान भाई उसके जगह वैकल्पिक रूप में या तो मड़ुआ लगा दें, अगर मड़ुआ ज्वार नहीं लगा रहे हैं तो सावा और कोदो,
1: इसकी कुछ किस्में भी होंगी।
0: हाँ, इसकी किस्में है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा है, बिरसा सावा 3 और इसका कोदो का है बिरसा कोदो 5, जो कि यहाँ के लिए उन्नत प्रभेद है। अभी इसका सीड तो यहाँ तो प्लामू में नहीं मिल पाएगा, इसके लिए आपको बिरसा से ही कंटेक्ट करना पड़ेगा। जी। और इसका जो लगाने के है समय, ये एक्चुअल यही समय है, ये जुलाई से 1 जुलाई से लास्ट जुलाई तक के लगता है।
1: मतलब हमारे किसान भाई को अगर संपर्क करना होगा तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय।
0: इसमें क्या है कि जो सिंचाई है, सिंचाई इसमें नाम मात्र होता है, केवल ये जर्मिनेट कर जाए ये सर्वाइव कर जाएगा। इसमें उपज आपको 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाएगा उपज इसका। इसका आपका आजकल बहुत ही ज्यादा, जैसे बड़े बड़े होटल में पहले ये पुअर मैन भोजन हुआ करता था, पर आज के समय में ये रिच मैन भोजन हो चुका है। इसका बड़े बड़े होटलों में इसके कई डिशेज बनता है, जैसे हलवा हुआ, ब्रेड हुआ, मीठा हुआ, बर्फी हुआ, ये सब कई प्रकार के इसके डिशेज बन रहा है जो कि मार्केट में अवेलेबल है बड़े बड़े मॉल में।
1: तो इसका लगाने की क्या विधियां होती हैं?
0: इसका लगाने की विधि है कि इसको जो गांव में हम लोग किसान छिटकवा विधि, उस विधि से खेत जोत के छिट दे, उसके बाद पाटा दे दे, या तो पहले खेत को जोत के पाटा दे ले, उसके बाद डछो या कुदाल से लाइन खींच दे, उसके बाद लाइन से बो दे। अगर लाइन से लगा रहा है तो लगभग 22 से 25 सेंटीमीटर दूरी लाइन से लाइन रखे, और पौधे से पौधा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका दाना बहुत ही महीन रहता है, तो इसलिए जब गिराने लगेंगे तो काफी घना हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: तो उसके लिए क्या करिए, अगर इसका सीड लेके बालू ले लीजिए या तो राख ले लीजिए, बालू या राख में इसको मिला दीजिए तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो गिराएंगे तो एक निश्चित मात्रा में गिरेगा, प्लस ज्यादा घना नहीं होगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, किसान ये विधि अपना सकते हैं जो कि बहुत ही उपयुक्त होगा।
1: जी। और कोई बातें जो छूट गई हो?
0: जैसे कि मड़ुआ, मड़ुआ जो आता है कि ग्रेन जो होता है, अनाज दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। निगेटिव ग्रेन में हमारा आपका आ जाता है चावल, गेहूं, ये हमारा निगेटिव ग्रेन में है, जबकि पॉजिटिव ग्रेन में

0: पॉजिटिव ग्रेन में जितने भी प्रकार के मिलेट होते हैं, जैसे उसमें आ जाएगा आपका फावा, कोदो, ककनी, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा। अब ये सब फसल हैं, इस सब में आपका जो ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन इसमें 8 से 10% होता है, जबकि धान या गेहूं, सबसे ज़्यादा गेहूं में हो पाया जाता है, गेहूं में लगभग 70 से 80% पाया जाता है, जो
1: जी,
0: कि एक प्रकार से बहुत ही अपचय होता है। इसमें क्या है कि पहले किसान इसका मड़ुआ का खेती बहुत ही अच्छे ढंग से करते थे, पर
1: अब थोड़ा
0: अब
1: निम्न
0: धीरे
1: स्तर पे
0: धीरे
1: चला गया।
0: कम होता जा रहा है। तो इसके बढ़ावा के लिए अभी जैसे हमने बताया कि सरकार 3,000 आपको प्रोत्साहन राशि देगी, और धीरे धीरे इसका आप डेली सेवन में भी लाइए, खेती ही नहीं इसको सेवन भी करिए। क्योंकि अगर आप गेहूं का आटा खा रहे हैं, तो उसमें आपको सलाह हम देंगे कि किसान भाइयों को कि उसको अगर 5 केजी गेहूं के पिसा रहे हैं, तो उसमें 2 केजी मड़ुआ डालिए, 2 केजी मक्का डालिए, 2 केजी ज्वार डालिए, उसका रोटी आप मिक्स करके खाइए। शुरुआत में आपको दिक्कत होगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा, स्वाद नहीं आएगा, वो टेस्ट जो रोटी का आ चुका है गेहूं का, पर आपके लाभप्रद के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें क्या है कि आपका मोटापा कम कर देगा, डायबिटीज कम कर देगा, और जो कि हार्ट हार्ट पेशेंट और कैंसर, ये दो प्रेजेंट टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अब शुगर, शुगर तो प्रेजेंट टाइम हमको लगता है कि घर पीछे एक घर छोड़ेंगे तो दूसरे के घर में शुगर के मरीज मिल जाएंगे। इस सब का सेवन करने से जो शुगर लेवल है ये मेंटेन रहेगा आपका, और जो मोटापा है, डायबिटीज का जो बीमारी आ रहा है, इसको भी कंट्रोल करेगा। इसका डिशेज जो बन रहा है, हलवा हुआ, ये हुआ, इसके थ्रू आप लोग अच्छा बिजनेस भी, अभी मल्टी ग्रेन के नाम से मिलता है अनाज, आपके ग्रेन मांगिए तो मल्टी ग्रेन आपको मिलेगा। और उसमें यही रहेगा आपका, बाजरा रहेगा, मड़ुआ रहेगा, ज्वार रहेगा, सांवा, कोदो, यही सब मिक्स रहेगा। तो आप अपने ही खेत पे उगाइए, उसको खाइए।
1: अभी और कौन से मोटे अनाज की खेती की जा सकती है?
0: मोटे अनाज में आप अभी कर सकते हैं इस सांवा, कोदो, ये सब के साथ साथ एक आता है पोर्सो मिलेट, उसका भी खेती किया जा सकता है अभी समय में। वो भी इसी तरीके से माइनर मिलेट में आता है, उसका भी दाना एकदम महीन सरसों के दाना जैसे जैसा रहेगा, मड़ुआ के एकदम कह सकते हैं ब्राउन कलर में जी। और उसका खेती करने का भी यही टाइम है, पर इसका अभी सीड तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि इन्वेस्टिंग भी लगभग खत्म हो चुका है। तो इसलिए इसके
1: तो
0: लिए
1: हमारे बहुत से किसान भाई भी इसकी खेती कर रहे होंगे।
0: अभी इधर तो नहीं कर रहे हैं, पर उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी पलामू क्षेत्र में ज़्यादातर मड़ुआ का प्रोत्साहन बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इसका क्या बोलते हैं, ज्वार का,
1: ज्वार का जी।
0: ये दो मड़ुआ ज्वार बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हमारे अगर झारखंड में बात करें तो सबसे ज़्यादा मड़ुआ अभी इधर क्या बोलते हैं, गुमला साइड में बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने में लगा रहा है किसान जी। अभी पलामू क्षेत्र में अभी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रहा है इसमें, क्योंकि बीते 2-3 साल में पानी न मिलने के कारण हम लोग को मजबूरन बस वैकल्पिक खेती की तरफ जाना पड़ा। अब वैकल्पिक खेती मड़ुआ से अच्छा वैकल्पिक खेती कुछ
1: हो ही
0: नहीं
1: नहीं
0: है।
1: सकता।
0: ज्वार, ज्वार और अरहर का मिक्स भी खेती, दो को दोनों मिल जाएगा, क्योंकि अरहर जो होता है हमारा 210-220 दिन का क्राप होता है, और जो हमारा ज्वार होता है, ज्वार हमारा 110 से 115 दिन का क्राप होता है। तो किसान क्या करे कि एक लाइन अरहर का लगाए तो एक लाइन ज्वार का लगा दें, और दोनों की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर रहता है अरहर का, तो एक लाइन इसको लगाने, एक लाइन उसमें क्या रहता है कि अरहर का जो मेचोरिटी टाइम आते आते आपका जो ज्वार है
1: वो
0: ये
1: निकल जाता है।
0: निकल जाएगा, तो एक ही खेत में आपको दोनों मिल गया,
1: दोनों मिल गया।
0: उपज में भी कोई घटोत्तरी नहीं होगी, वैसा ही उपज भी मिल जाएगा आपको। अभी हम लोग के यहाँ जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे ये अपनाया गया टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छे पैमाने पे रिजल्ट आया इसका।
1: वाह, आप थे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी के सहायक कृषि विशेषज्ञ अभिषेक पटेल। आप कार्यक्रम से जुड़े और मोटे अनाजों की खेती से संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद
2: किसान भाइयों, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब बातें बकरी पालन की। वर्षों से कृषि के साथ साथ विभिन्न प्रकार की पशुओं का पालन होता आया है। देश के बंजर, दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भेड़ और बकरियों का पालन विशेष रूप से किया जाता है। इन्हें पालने वालों में मुख्यतः भूमिहीन सीमांत किसानों, घुमंतू खानाबदोश जातियों के लोग हैं।
3: बकरियों को पालने का उद्देश्य इनमें दूध और मांस प्राप्त करने के साथ साथ इनके विक्रय से आय प्राप्त करना होता है। इस तरह बकरियां

0: अपने देश में करोड़ों लोगों को जीविका रोजगार प्रदान करती है। देश के विभिन्न भागों की भिन्न जलवायु में बकरी जैसा छोटे आकार का पशु आसानी से पाला जा सकता है। इसके पालने में न किसी विशेष प्रकार के आहार आदि की आवश्यकता होती है और न ही किसी खास किस्म के बड़े आवास या विशेष जलवायु की जरूरत पड़ती है।
1: बकरी पालन महिलाओं की सहायता से बड़ी सुगमता से किया जा सकता है।
0: इस समय देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बकरी जैसे लघु आकार के पशु बहुत अधिक योगदान दे रहे हैं। पिछले 2-3 दशकों से बकरियों का मांस के लिए वध किए जाने की ऊंची सालाना दर होते ग्रामीण आजीविका का स्रोत बकरी पालन हुए भी विकासशील देशों में बकरियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह बकरियों के सामाजिक आर्थिक महत्व को भी दिखाता है। इसके विकास में प्राकृतिक रूप से अधोलिखित कारक सहायक सिद्ध भी हो रहे हैं।
1: कई नस्लों में एक से ज्यादा मेमने पैदा करने की क्षमता होती है। ये ब्याने के बाद अन्य पशु प्रजातियों की अपेक्षा पुनः प्रजनन के लिए शीघ्र तैयार हो जाती है।
0: बकरियों की सबसे बड़ी विशेषता मनुष्य और पशुओं के लिए गैर उपयोगी पदार्थों को बहुत उपयोगी उत्पादों जैसे दूध और मांस, दूसरे उत्पाद में रेशा, बाल, खाल, खाद आदि में बदलने की सामर्थ्य एवं क्षमता है। किसान भाइयों, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम से अब दीजिए रागनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति।
1: नमस्कार।

सुन रहे थे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
1: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जाँच और उपचार कराएं।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
3: अनक्लेम डिपॉजिट मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
2: RBI कहता है जानकार बनिए,
3: सतर्क रहिए।
4: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
5: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
4: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
5: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
4: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
6: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
9: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
10: कंडोम,
9: गर्भ निरोधक गोलियां,
11: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
7: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गढ़वा के बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, 85 विद्यार्थियों को सौंपी उपाधि। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने MMDR संशोधन विधेयक पर झारखंड सरकार के विरोध को बताया बेबुनियाद। प्रदेश कांग्रेस ने प्रोफेशनल्स कांग्रेस के संगठन का विस्तार पंचायत स्तर तक करने के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष को सौंपा विजन डॉक्यूमेंट। रांची में NIA मामलों की सुनवाई के लिए 2 और विशेष अदालतों का हुआ गठन। और कल पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा प्रकृति पर्व करम, साज सज्जा के साथ अखरों की तैयारी को दिया जा रहा अंतिम रूप। और अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिले के फरठिया स्थित बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 85 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की, साथ ही सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 2 व्यक्तियों को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को केवल डिग्रियां हासिल करने तक ही सीमित नहीं रहकर नई तकनीक और शोध कार्य पर भी ध्यान देना चाहिए।
13: ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे सांस्कृतिक और आस्थापूर्ण भूमि पर एक विश्वविद्यालय नई पीढ़ी का भविष्य का निर्माण कर रहा है। बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय को क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए।
12: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने MMDR संशोधन विधेयक पर झारखंड सरकार के विरोध को बेतुका और बेबुनियाद बताया है। हजारीबाग पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि MMDR का विरोध केवल देश को गुमराह करने एवं असली मुद्दों को से ध्यान भटकाने की साजिश है।
14: झारखंड राज्य में जिस प्रकार से MMDR कानून का विरोध लोग कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि कोयला चोरी बंद होना प्रारंभ हो गया। तो कोयले की कमाई से जो उनकी तिजोरियां भरती थी काली कमाई से, तो उन तिजोरियों में पैसा जाने वाला नहीं है।
12: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस के प्रभारी आदित्य विक्रम जायसवाल ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष मधु यास्की गौड़ से मुलाकात की। श्री जायसवाल ने झारखंड प्रदेश में प्रोफेशनल्स कांग्रेस को और अधिक सशक्त एवं मजबूत बनाने तथा संगठन का विस्तार पंचायत स्तर तक करने को लेकर तैयार विजन डॉक्यूमेंट को उन्हें सौंपा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत खूंटी जिले में मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने की प्रक्रिया जारी है। खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के नेतृत्व में सभी मतदान केंद्रों पर नोटिस, सुनवाई, दावा आपत्तियों के निस्तारण और दस्तावेजों के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। रांची में NIA मामलों की सुनवाई के लिए दो और विशेष अदालतों का गठन किया गया है। न्यायिक आयुक्त रांची के आदेश के अनुसार अपर न्यायिक आयुक्त संजीव झा और अपर न्यायिक आयुक्त अरविंद कुमार द्वितीय की अदालतें अब NIA मामलों की सुनवाई करेंगी। इन दोनों विशेष अदालतों का अधिकार क्षेत्र पूरे झारखंड में होगा। नई व्यवस्था के बाद रांची सिविल कोर्ट में NIA मामलों की सुनवाई के लिए दो अतिरिक्त अदालतें उपलब्ध होंगी। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने समाहरणालय सभागार में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल अंतर्गत जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की सफलता गांव-गांव तक स्वच्छ जल एवं स्वच्छता सुविधाओं के प्रभावी विस्तार पर निर्भर करती है, इसलिए सभी पदाधिकारी

अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर निर्धारित समय सीमा में कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे आकांक्षी जिला और जीवंत ग्राम से जुड़े सरकार के निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में।
1: साथियों, सरकार ने 2014 से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी है। हमने 1000 ITI संस्थानों को अपग्रेड करने और 5 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का ऐलान किया है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारी इंडस्ट्री की जरूरतों पूरी कर सके।
0: झारखंड के सभी आकांक्षी जिलों में सरकार की ओर से युवा श्रमिकों के लिए अलग अलग हुनर में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लातेहार जैसे आकांक्षी जिले में जहां पलायन बड़ी समस्या रही है, यहां इस तरह का प्रशिक्षण पलायन को रोकने में कारगर साबित हो रहे हैं। इसका संचालन लातेहार प्रखंड के जालिम खुर्द ग्राम में SGRS संस्था की ओर से किया जा रहा है।
2: मेरा नाम सोनम कुमारी है। मेरे को सिलाई सीखने का मिलता है, कंप्यूटर मिलता है, खाना मिलता है, और मैडम लोग रहती है, आकर से कुर्सी काट करने के लिए सीख रहे हैं।
3: मेरा नाम राष्ट्रीय कुमारी है। मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, मैं यहाँ सीखने आ रही हूँ। यहाँ पे सारे सुविधा है, मशीन है, कंप्यूटर है, और मैडम दो मिस है, दो सर है, खाना भी बहुत अच्छा है, यहाँ सिलाई भी सिखाया जा रहा है, सारे अभी सुविधा बहुत अच्छे चल रहे हैं।
0: जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त जनसमस्याओं को लेकर वार्ड पार्षदों ने निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। पार्षदों ने क्षेत्र में साफ सफाई, गंदगी और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। पार्षदों का कहना है कि मानगो के कई इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और पेयजल की समस्या भी लगातार बनी हुई है।
4: शहर का ट्रैफिक देखा है, सुचारू रूप से चले और जहाँ कमी है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप लोग लगातार अभियान चलाइए, जहाँ चौक चौराहा में जाम रहता है वहाँ पे भी मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करना है ताकि लोगों में डर हो। हम लोग तय किए हैं कि सप्ताह में 3 दिन संयुक्त रूप से चलाएंगे अभियान, जिसमें जो भी वाहन पकड़ जाएगा उसको फाइन के अलावा जो लोग गाड़ी रोड में खड़े कर देते हैं उसको मरम्मत करवाते हैं।
0: प्रकृति पर्व करम कल पूरे राज्य में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर सभी पूजा अखाड़ों में को सजाने का कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पूर्व आज शाम को मोरहाबादी के दीक्षांत मंडप में करम पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ट्राइबल फैशन शो मुख्य आकर्षण है। रांची नगर निगम की ओर से राजधानी के सभी 289 सरना स्थलों और अखाड़ा में साफ सफाई और पेयजल की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के निदेशक छवि रंजन ने सरायकेला के दुगनी आर्चरी अकादमी के निरीक्षण के दौरान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट तीरंदाजों के प्रशिक्षण के लिए अलग व्यवस्था शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि इस वर्ग के खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। इस दौरान उन्होंने अकादमी में खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने की भी बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गढ़वा के बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, 85 विद्यार्थियों को सौंपी उपाधि। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने MMDR संशोधन विधेयक पर झारखंड सरकार के विरोध को बताया बेबुनियाद। प्रदेश कांग्रेस ने प्रोफेशनल्स कांग्रेस के संगठन का विस्तार पंचायत स्तर तक करने के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष को सौंपा विजन डॉक्यूमेंट। रांची में NIA मामलों की सुनवाई के लिए 2 और विशेष अदालतों का हुआ गठन। और कल पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा प्रकृति पर्व करम। साज सज्जा के साथ अखड़ों की तैयारी को दिया जा रहा अंतिम रूप। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
5: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
6: माँ मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
7: नहीं तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
8: अरे अरे आप ये क्या कर रही हैं?
9: बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
8: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
9: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
8: माहवारी प्रारंभ होती है,
9: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
8: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
11: बहन मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं।
12: अरे बहन 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
11: 104 नंबर वो क्या है बहन?
12: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
13: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
14: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
15: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
14: अरे क्यों?
15: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
14: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
8: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
14: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
15: अरे भाई
16: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही।
17: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के अनुपालन को लेकर हजारीबाग सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी एवं ओपी प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है। सदर एसडीओ आदित्य पांडे बताते हैं,
2: ध्वनि नियंत्रण जो रूल्स है नियम के तहत, ये बहुत क्लियर है कि रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक जो अगर डीजे बजाते हैं या किसी भी ध्वनि वर्धक यंत्रों का अगर उपयोग करते हैं और यूज में पाए जाते हैं तो उन पर बिल्कुल ही विधि सम्मत कार्रवाई होगी।
1: झारखंड के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता योगेंद्र साव के ऊपर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का मामला प्रकाश में आया।

0: जिला प्रशासन ने उक्त जमीन पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया है। हजारीबाग के सदर अंचल पदाधिकारी आशुतोष बताते हैं,
1: ऊपर शेड का निर्माण किया गया था उसको खोला जा रहा है और ऊपर से अभी जो लोहा का जो स्टैंड था उसको भी काटा जा रहा है। पीसीसी रोड इसको आधा से ज्यादा जो तोड़ दिया गया है और बाकी बचा हुआ भी उनके द्वारा हटा लिया जाएगा।
0: पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक डीपी गर्ग ने धनबाद रेल मंडल के विभिन्न स्टेशन का निरीक्षण किया। इसी क्रम में महाप्रबंधक हजारीबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे। इन्होंने निरीक्षण करते हुए बताया,
2: हजारीबाग ही नहीं पूरे सेक्शन का जायजा ले रहा हूं कि कहां पे हमें क्या इश्यूज हैं और कैसे हम अपना मूवमेंट बेटर कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी तो एक समझने की दौरा चल रहा है कि समझ ले क्या कहां पे क्या चीज है, पैटर्न क्या है मूवमेंट का, कहां से क्या हो रहा है और हमारे किस डायरेक्शन में ज्यादा मूवमेंट है, कहां हमें ज्यादा और हमें सुधार करने की जरूरत।
0: विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में 17 सितंबर को 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा बताते हैं,
3: हमारा सौभाग्य है कि हम विनोबा भावे विश्वविद्यालय हैं और उनके नाम पर जो विश्वविद्यालय है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गांधी और विनोबा के विचारों पर ही आधारित है कि शिक्षा के साथ साथ कुल और हमारा लगातार प्रयास है। हमने पिछले साल स्नातक के कार्यक्रमों को जो किया था, करिकुलम को रिवाइज किया था और उसमें हमारा दो ही उद्देश्य था, भारतीय ज्ञान परंपरा और स्किलिंग, दोनों चीजों को लगाया है। इस साल हम अब स्नातकोत्तर के कार्यक्रमों में को सुधारने जा रहे हैं या बदलने जा रहे हैं और उसमें भी हमारा प्रयास होगा कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा और स्किल हाथ से काम करने की कला, केवल दावी ज्ञान नहीं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में एक महीने तक चलाने वाले सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। हजारीबाग में इस अभियान को लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद बताते हैं,
4: और जितने हमारे देशवासी हैं उनके पास ज्यादा के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो सेवा संकल्प का जो भी मेन मुख्य उद्देश्य है वो बताने का काम करेंगे।
0: इस अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर, पौधरोपण, स्वास्थ्य निरीक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न सामाजिक और रचनात्मक गतिविधि आयोजित की जाएगी। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी दिया जाएगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
5: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप हमारे नाची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आप लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से सोमवार का दिन है और आपके लिए बुनियाद कार्यक्रम लेकर आ गया। बुनियाद कोई नया नाम नहीं, सोमवार का दिन ही इस वक्त अलॉटमेंट है। ऑल इंडिया रेडियो से ये कार्यक्रम सुनते हैं और इसमें हम युवा साथियों, उनके माता पिता, अभिभावक और छोटे छोटे भाई बहनों से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई करने से आपके लिए आज के दौर में रोजगार मिलना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टेक्निकल पढ़ाई कर लेते हैं कोई भी, तो ज्यादातर टेक्निकल पढ़ाई में आप स्वरोजगार भी तलाश सकते हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।

0: हॉस्पिटल, हाँ, जहाँ MBBS की करीब 250 सीटें हैं। पूरे भारत से हाँ लड़के लड़कियाँ, युवक युवतियाँ आकर यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, PG करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल पढ़ाई की, तो इंटरमीडिएट बायोलॉजी जिन्होंने किया है उनके लिए सारा कुछ है यहाँ। मेडिकल तो है ही अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल की पढ़ाई है, फार्मेसी की पढ़ाई है, नर्सिंग की पढ़ाई है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई है, हर पढ़ाई यहाँ उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है ना कि कैंपस में रहने की सुविधा भी है, सेफ कैंपस है। अगर हम बात करें जिन्हें लिखने पढ़ने का बोलने का शौक है, तो जर्नलिज्म की पढ़ाई भी है, इसके अलावे यहाँ लॉ की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई, ढेर सारी पढ़ाई है जिसे इस रेडियो के माध्यम से बता पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं होगा। हम इसीलिए नंबर बताते हैं कि आप जाकर के बात कर ले इस नंबर पर, कार्यक्रम खत्म हो और लगाइए नंबर 9431899002 और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800120051 1800120051। और अगर जो तफसील पूरी जानकारी चाहते हैं तो एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in, इस पर जाकर के आप जानकारियां ले सकते हैं। रही बात पैसे की, तो पैसे के लिए तो हमारी बिहार सरकार ने इतना अच्छा इंतजाम कर दिया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जी हाँ, जिसमें 4,00,000 रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लोन मिल सकता है पढ़ने के लिए, और जब नौकरी लग जाए तब आसान किश्तों में इसे चुकाया जा सकता है। और लड़कियों के लिए तो और भी ज्यादा सुविधाएं हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हर एपिसोड में हम किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं और उस कोर्स के विषय में जानकारी देते हैं। आज हमारे साथ होंगे यहाँ कुमार आलोक प्रताप, जी हाँ, जो कि रजिस्ट्रार हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। इनसे आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि बीएड स्पेशल एडुकेशन अभी एक नया कोर्स आया है जो सिर्फ यहीं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में है। आप चाहें तो इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आप प्लेन बीएड करते हैं ना, हाँ बीएड करते हैं, इसमें स्पेशल है, मतलब चैलेंज लोगों के लिए भी आप पढ़ा सकते हैं, स्कोप बढ़ सकता है, अपना अपना अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है। हमने कहा ना कि बुनियाद में हम वैसी जानकारियां देते हैं जो आपके जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम कुमार आलोक प्रताप जी से कहते हैं, स्वागत करते हैं सर आपका, और आप रजिस्ट्रार हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के। अपना परिचय, संक्षिप्त परिचय आप थोड़ा सा दे दीजिए।
1: मैं कुमार आलोक प्रताप गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार का कार्यभार देख रहा हूँ। मैं कुल सचिव का कार्यभार देख रहा हूँ। मैं प्रबंधन विभाग का अध्यक्ष था जब मैं परीक्षा नियंत्रक था, अब जब मैं कुल सचिव हूँ। यह सब एक शैक्षणिक यात्रा में बच्चों से इंटरेक्शन तो होता ही है, उनके माँ बाप आते हैं और हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है।
0: वाह क्या बात है, मुझे भी मौका मिलता है इतने बड़े बड़े लोगों से बातचीत करने के लिए। इतने लंबे समय से इतनी लंबी यात्रा रही है, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जब शुरू हुआ और आज की स्थिति में, हाँ बहुत सारा समय निकल गया, बहुत सारी चीज़ें हुई और आपने बताया और मुझे भी पता है कि सबसे पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला था और धीरे धीरे धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला गया, पूरा बिहार और झारखंड, जी हाँ, इस कार्यक्रम बुनियाद को सुन रहा है। सबसे पहले हाँ कुमार आलोक प्रताप जी, हम चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में, हाँ इसके दर्शन के बारे में, है ना, अपनी वाणी से, अपनी आवाज से लोगों को परिचित करवाइए। सबसे पहले
1: भगवान की ईश्वरीय, मैं सौभाग्य कहूँगा कि मैं गोपाल नारायण सिंह जी को इस मामले में बहुत मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी एक यह जिद ही थी कि मैं कुछ भी करूँगा तो गाँव में करूँगा। उसका मतलब असर हम देख रहे हैं इस इलाके में और आज तो खैर हमारा विश्वविद्यालय हमारे कुछ मेहनत के परिणाम हैं। हमारे शुभ चिंतकों का परिणाम है, हमारे मीडिया का परिणाम है, हमारे

0: लुमनाइज का सहयोग है कि बिहार के कोने कोने में हमारे विश्वविद्यालय को लोग जानते तो हैं। वहाँ वहाँ अब पैन इंडिया से बच्चे और फैकल्टी आते हैं, और मेडिकल में तो शुरू से ही नीट के थ्रू बच्चे आते ही हैं। हमारी मेडिकल की पहचान करीब करीब भारत भर में भी है, और अन्य जो हमारे फैकल्टी हैं आज के प्रतियोगिता के इस युग में धीरे धीरे अपना एक जगह बना रहे हैं। और बिहार में हम लोग जितनी अपने क्वालिटी पर फोकस्ड है, हमारे चेयरमैन चांसलर गोपाल नारायण सिंह जी क्वालिटी के मामलों में जितनी उनमें जागरूकता है, दिल्ली में 25 साल के अपने करियर में मैंने वैसा कमिटमेंट नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी का 4 कॉलेज हैं, किसी के 10 व्यवसाय हैं, सब लोग वहाँ बड़े बड़े हाउसेज हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिजनेस क्लास के लोगों का एक साइड पोर्टफोलियो है, तो वो स्टेटस के लिए चलाते हैं। दे नेवर विजिट, वो कभी आते नहीं हैं। उनके लोग हैं, आते हैं, पर इनका जो है सो आत्मिक लगाव है। 7 बजे सुबह वो 8 मतलब अपने घर से 7:30 तक निर्माण कार्य हो, शिक्षण कार्य हो, क्लास चल रहा है कि नहीं, चले आते हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद। मैं हूं राजेश, और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम के रजिस्ट्रार कुमार आलोक प्रताप। बातें हो रही हैं, अगर टेक्निकल पढ़ाई करनी है, खास करके बीएड स्पेशल एजुकेशन, और भी बहुत सारे कोर्स हैं, तो 9431899002 ये नंबर है, 1800121051 ये टोल फ्री नंबर है, और www.gnsu.ac.in ये हमारा वेबसाइट का पता है, इस पर जाकर आप जानकारियां ले सकते हैं। रजिस्ट्रार साहब, यहाँ पर हाँ लड़के और लड़कियों को रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था है, लेकिन अगर देखें तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों से यूनिवर्सिटी के अंदर। ये यूनिवर्सिटी की कहानी कहती है कि यहाँ कितना सुरक्षित और कितना बेहतर माहौल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: वाकई देखिए, हमारा विश्वविद्यालय जो है उसका जो कैंपस है वह सासाराम और डिहरी एक दो ट्विन सिटी के बीच में है। अब ये मतलब बहुत अच्छे शहर हैं, और दोनों की दूरी करीब करीब 7-8 किलोमीटर है। अब देखिए इससे क्या फायदा है कि यह जो ग्रामीण परिवेश में विश्वविद्यालय है तो बच्चे ज़्यादातर शहर नहीं जा पाते हैं। रविवार के दिन सुरक्षित रूप से विश्वविद्यालय के बस जाती है, उससे अपनी खरीदारी वगैरह करने जाते हैं। आप एक चीज बताएं, ये गर्ल्स स्टूडेंट का तो अभी हम देखते हैं कि पूरे राष्ट्र में, मेरा तो बहुत लंबा 37 साल का करियर हो गया, सभी जगह बच्चियों का पढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जब हम विश्वविद्यालय नहीं थे गोपाल नारायण सिंह, और केवल नारायण मेडिकल कॉलेज चलता था, तब भी मेडिकल कॉलेज में छात्राओं की संख्या ज़्यादा थी। और अब क्या है, उस समय हम लोग बाहर टीचर को नहीं रख पाते थे, हमारे पास खुद फ्लैट भी कमी थी। युद्ध स्तर पर फ्लैट का निर्माण हुआ। आज के तारीख में हमारे पास शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, 2000 पूरे फ्लैट होने की वजह से सभी लोग यहाँ रहते हैं। और बच्चे भी हमारे जो आसपास के गांव के हैं, जो आसानी से विश्वविद्यालय में आ सकते हैं, वही आते हैं। बाकी बाहर के जितने बच्चे हैं, 5000 बच्चे करीब करीब, सब के लिए छात्रावास उपलब्ध है। और कुछ छात्रावास जैसे हमारे नए जो डिपार्टमेंट खुले हैं, फैकल्टी खुले हैं, जैसे कि आपको रिहैबिलिटेशन साइंस या एलाइड हेल्थ साइंसेज, या कुछ नर्सिंग में बच्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यह सब के लिए हम लोग और भी बहुत सारे 2-3 छात्रावास निर्माणाधीन है, जिसमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और साथ साथ गांव के कुछ और लोगों ने भी अगल बगल कैंपस

0: बात छात्र ही नहीं, बहुत सारे कर्मचारी भी किराए पर कमरे लेके रहते हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉय है, वार्ड आया है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो अगल बगल की अर्थव्यवस्था में एक एक एक मतलब अनएक्सपेक्टेड उछाल आया है, और जमीन की भी कीमतें बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे भवन निर्माण का कार्य हो रहा है, और यह बहुत मतलब एक बदलाव है, यह सब विश्वविद्यालय की ही वजह से हो रहा है।
1: अच्छा चलिए, अब कोर्स पर आते हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आप रजिस्ट्रार साहब, आपसे 1-15 मिनट में तो बात हो नहीं सकती, तो हम वैसे बातों को शामिल करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपके यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स आया है, उस कोर्स के बारे में थोड़ा हमें बताइए, लोगों को बताइए।
0: अब देखिए, बीएड जो शुरू होगा वो बीएड बहुत ही रोजगार के दृष्टिकोण से स्पेशल होगा, रोजगार, क्योंकि आज हर स्कूल में ये टीचर स्पेशल मतलब स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों के लिए, या किसी तरह के जो आज मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ विकसित बच्चे नहीं हैं, उनको सिखाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए एक मतलब अति विशिष्ट, बहुत ही जटिल मतलब यह कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है, उसके लिए कुशल प्रशिक्षित शिक्षक ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जो निकलेंगे, इंटीग्रेटेड बीएड की मैं, वो बहुत बड़ा योगदान देंगे। यह एक मानवीय जरूरत तो है ही, साथ साथ समाज का यह वर्ग, यह कोना, जो कि जिसका कि रेड्रेसल करना बहुत आसान नहीं है, और वो उच्च शहरों में सब कुछ फैसिलिटी रहने के बावजूद भी उनको जाके वहाँ पर, क्योंकि इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है, थेरेपी होती है, उनको साल भर 2 साल कोई नियमित रूप से दिल्ली या बॉम्बे या बेंगलोर कितना जा पाएगा, इसलिए यह हम लोगों की कोशिश है, हम लोग की शुरुआत है, हम लोग की बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हम टीचर लोग अपॉइंट कर रहे हैं, कल ही हमारे पास 2-3 एक्सपर्ट ज्वाइन किए, लगातार इंटरव्यू चल रहा है, और हम बाहर से कोशिश कर रहे हैं हम कि इसके लिए और एक्सपर्ट लाएं, और इसमें एक अपनी बिहार में एक अलग तरह की मतलब कार्य कर।
1: तो साथियों, अभी हमारे साथ बुनियाद कार्यक्रम में कुमार आलोक प्रताप थे, जानकारियां दे रहे थे, रजिस्ट्रार हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के। नंबर नोट करें, 9431899002, 9431899002, और 1800121051 ये नंबर है। टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, राजेश चलते चलते यही कहेगा, आज के बुनियाद कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ चाहता है, अगली मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आ जाइए, हम सुनते हैं एक ही फिल्म एक दूजे के लिए के कुछ गीतों को। तो आइए ये पहला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और SP वाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: सिर्फ बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
2: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग, और इस कार्यक्रम में आज आपने सुना एक ही फिल्म एक दूजे के लिए से कुछ गीतों को। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम के तहत आ जाइए सुनते हैं गढ़वा के दंत चिकित्सक डॉक्टर ताहा रियाज से ली गई भेंटवार्ता। विषय है दांतों में सड़न, कारण और बचाव। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
3: तमाम श्रोताओं को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम कल्याणी में। श्रोता मित्रों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे दांतों की देखभाल की, और विशेषकर दांतों में सड़न, कारण एवं बचाव की। और सड़न से संबंधित विस्तृत जानकारी आज आपके साथ साझा करने के लिए स्टूडियो में हैं गढ़वा जिला के दंत चिकित्सक डॉक्टर ताहा रियाज, जिनसे आज विस्तृत बातें होंगी दांतों को सड़न से कैसे सुरक्षित करें हम। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
4: जी नमस्कार।
3: सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि दांतों में जो सड़ने का जो कारण बनता है, आखिर मुख्य कारण इसमें कौन कौन से हो सकते हैं?
4: देखिए, जहाँ तक दांतों की सड़न की बात है,
3: जी,
4: आदमी दांतों को सड़न को कब समझता है?
3: जी,
4: जब आपको वो प्रैक्टिकली या क्लिनिकली दिखने लगे, यानी कि कालापन दिखने लगे।
3: अच्छा।
4: या पूरा तरीके से दिखता है वो, जब आप शुरुआती वक्त में देखेंगे ना, तो आपका उसका शुरुआत होता है सनसनाहट से, झिनझिनाहट से, जिसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। एक छोटा सा पिट पॉइंट आपको अगर कहीं काला दिखेगा, ठीक है, तो उस पर आदमी क्या है ना, आमतौर पर उस पर ध्यान नहीं देता है। परंतु वही कारण जो है ना, आपको धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होते रहता है, प्रोग्रेस होकर ना एक बड़ा रूप ले लेता है, तो फिर हम लोग उसको दांतों का सड़न बोलने लगते हैं। दांत जो दो पार्ट में है, एक तो ऊपर में जो दिख रहा है उसको क्राउन पोर्शन बोलते हैं।
3: अच्छा,
4: नीचे जो है वो रूट पोर्शन है,
3: ठीक है।
4: और जो पूरे दांत में है ना, दांत के नीचे से हम लोग जैसे खाना खाते हैं, दांतों को भी तो आहार चाहिए, वो ब्लड वेसल्स और नर्व से जुड़े हुए हैं।
3: बिल्कुल
4: ठीक है। हम लोग जब खाना खा रहे हैं तो क्या होता है, कुछ भी खाते हैं तो हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते। दांतों के, दो दांतों के बीच में ना स्पेस होता है हल्का हल्का, उसमें धीरे धीरे फूड एक्यूमुलेट करती है, जमा होती है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और छोड़ने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे वहां पर प्लैक बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं, जो ऊपरी परत होती है वो जमा होने लगता है। और धीरे धीरे ना वो क्या कहा जाता है, जो दांत के ऊपर के इनेमल जो है ना, वो केरीज वगैरह लगते लगते वो कम होने लगते हैं, जिसके कारण हम लोग को ये पहले सनसनाहट, झिनझिनाहट महसूस होगी।
3: बिल्कुल।
4: फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सड़न का रूप लेने लगता है।
3: जी।
4: इसका मतलब अगर देखेंगे तो दो तीन लेयर होता है। पहला इनेमल होता है, इनेमल जो होता है सबसे ऊपर लेयर होता है दांत का, लेकिन जो ही वो डेंटिन इनेमल लेयर घिस जाता है, तो जब डेंटिन के पास पहुंचता है तो उसमें सेंसिटिवल ट्यूब्यूल्स होते हैं, उससे सेंसिटिविटी ज्यादा होती है।
3: अच्छा, ऊपर वाले से नहीं?
4: ऊपर वाला तो आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत अच्छा।
3: दांत घिसने की बात जहां तक आ रही है, इसकी शुरुआत कहां से होती है?
4: देखिए, घिसने की बात है ना, जब तक आदमी प्रॉपर वे ऑफ क्लीनिंग, प्रॉपर वे ऑफ टेक केयर, सबसे पहली चीज होती है जो आदमी ब्रश करते हैं हम लोग। नॉर्मल आदमी क्या करता है, ब्रश जो करता है ना डेली, अगर आप करेंगे तो लेकर रगड़ने लगता है, प्रॉपर तरीका पता नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा होता है कि ब्रश लेते हैं और यहाँ से अगर कोई काम है तो यहाँ मुंह में लिए और चले गए, वहाँ 1 से 5 किलोमीटर दूर वहां तक रगड़ रहे हैं।
3: जी जी।
4: और उसको एक मतलब प्रॉपर वे में कर नहीं पा रहे, जैसे रगड़ रहे वैसे रगड़ रहे, उसके क्या होता है धीरे धीरे ऊपर के लेयर उससे रगड़ते रहते
3: हैं
4: डेली डेली। कुछ लोग क्या होता है कि अभी भी गाँव वगैरह इलाके में देखेंगे कि दातून यूज करते हैं, दतवन बोलते हैं, तो दतवन को ऐसे चबाते हैं, चबाते रहते, उसको मुलायम करते हैं पहले, ताकि उसको मोड़ कर रगड़ा जाए और रगड़ के और उससे दांत साफ किया जाए।
3: जी।
4: तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसको रगड़ता है और ऊपर का जो लेयर आपका धीरे धीरे, जो इनेमल जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो धीरे धीरे कम होता है। और कारण अगर जानेंगे तो कुछ लोगों को दांत किटकिटाने की आदत होती है।
3: जी बिल्कुल।
4: उससे क्या होता है, वो भी ऊपर का लेयर है, किटकिटाएंगे तो बार बार टकराएगी, टकराने से कोई भी चीज घिस रही है, और बार बार जब घिस रही है तो वो कम होगी। ये यहां से जब तक इनेमल आपका ऊपर का लेयर कम होते जाता है सर, तो उससे क्या होती है, सेंसिटिविटी वगैरह चालू हो जाती है।
3: जी जी। इस प्रकार सबसे प्रमुख बातें हमारे सामने आती है कि दांत का ऊपर का जो लेयर है, जो अस्तर है, उसे आप सुरक्षित रखिए। दांतों में 3 लेयर होते हैं, 3 अस्तर होते हैं। अब बात यह उठती है कि 0 से 10 वर्ष तक के बच्चों में दांतों में सड़न के क्या कारण हो सकते हैं?
4: देखिए, दांत है, बच्चों में 20 दांत होते हैं, बड़ों में 32 दांत होते हैं। बच्चों को भी तो एक समय आएगा कि कब तक वो दूध पीकर रहेगा। धीरे धीरे दांत की जरूरत तो उनकी भी है। जब आप बोल रहे हैं 10 साल तक, तो 10 साल बहुत लंबा फेज होता है। खाना चबाना तो है उनको, तो खाना चबाना जब आहार लेंगे तो उनके लिए दांतों की जरूरत है। हम बच्चों में देखे सर, तो 6 महीने से ना दांत आने चालू कर हो जाते हैं, ठीक है। और 6 महीने से जब दांत आते हैं ना, तो सबसे पहले सामने वाला दांत नीचे वाला आता है,
3: जी,
4: इसको सेंट्रल इंसाइजस बोलते हैं। मतलब बच्चों में ये कैविटी या केरिज लगना, सड़न लगना बहुत ज्यादा है। अब लोग क्या करते हैं ना, कि अभी क्या है, सबसे पहली चीज कि बच्चे चॉकलेट्स हो गए, ठीक है, पैक्ड आइटम्स हो गए, सुगरी आइटम्स, जितना भी सुगर का चीनी वाला योग बहुत ज्यादा खा रहे हैं। और बहुत ज्यादा जब उस चीज को खा रहे हैं, बैक्टीरिया का जो स्रोत होता है ना,
3: जी,
4: बैक्टीरिया का जो खाने का स्रोत होता है, फूड सोर्स, वो होता है सुगर। और सुगर को फिर वो एसिड में कन्वर्ट करता है, और एसिड ना फिर वो जो ऊपर वाला लेयर है ना, उसको सड़ाता है, बाद ना फिर आपको उसमें क्या कहा जाता है, सड़न होती है,
3: सड़न में परिवर्तित कर दिया। इसलिए चॉकलेट से जो भी बच्चे हैं उन्हें दूर रहने की आवश्यकता है,
4: कम करने की
3: कम
4: जरूरत
3: करने की आवश्यकता है,
4: कम करने की जरूरत है, सफाई रखने की जरूरत है, ठीक है। खाकर मुंह में छोड़ देते हैं, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहे, पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। जो 2-3 साल तक बच्चे हैं जो खुद से नहीं क्लियर कर पा रहे, फिर धीरे धीरे उनको सिखाएं, ठीक है। और एक लिमिटेशन सेट करनी होगी धीरे धीरे, कि हाँ भाई साहब आपको इतना करना है।
3: यहाँ तक क्योंकि हमारे श्रोता भी समझ चुके कि दांतों के 3 लेयर होते हैं, अब प्रश्न ये उठता है कि हम उसे सुरक्षित कैसे रखें।
4: जी बिल्कुल, देखिए दांत आप देखते हो कि बहुत ही मतलब स्ट्रांग चीज मानी जाती है, ठीक है, और सुरक्षित रखना बहुत ही आसान है
3: जी।
4: सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ब्रशिंग, ब्रश करना है आपको। अभी भी देखा जाए तो बोला जाता है हम लोग के यहाँ कि आपको 2 बार ब्रश करिए, कोई भी पेशेंट्स आते हैं
3: जी।
4: पर जनरली क्या होता है, सुबह उठते हैं लोग, लेते हैं ऐसे 1-1.5 मिनट जितना हुआ, मतलब ऐसे होता है कि कोलगेट से जितना फेन बन जाए,
3: हाँ, हाँ,
4: वो उतना अच्छा है, लेकिन ये गलत है। तो उसको क्या करना है ना, उसको प्रॉपर 2 मिनट तक डेली यूजेज में हम लोग को करना है, और उसका एक टेक्निक है, उसको सही तरीके से करना है। और दूसरी चीज कि जब उसको करेंगे तो आप रात वाला चीज छोड़ दे रहे हैं, और रात में क्या होता है ना कि हमारे मुंह में सलाइवा का अमाउंट कम हो जाता है सर,
3: अच्छा,
4: लार कम गिरता
3: हाँ,
4: है
3: हाँ,
4: तो उसमें बैक्टीरिया को ना समय ज्यादा मिलता है,
3: अच्छा,
4: और उस वक्त ना वो क्या करता है कि आपका शुगर को अपने जो मुंह में शुगर है उसको ज्यादा वो अपना इंगल्फ करेगा, वो अपना ज्यादा काम करने का उसको समय हम लोग दे देते हैं, हाँ, तो वो चीज है। दूसरी चीज है, हम लोग फ्लॉस नहीं करते हैं। फ्लॉस क्या होता है कि हम लोग ना दांतों को सिर्फ ब्रश एक देख लिए हैं, कि जब तक वो प्रचार देख लेते हैं ना कि हमारे चमकते दमकते दांत वगैरह, ठीक है, एक्टर एक्ट्रेस को, वहां तक चीजें नहीं है, आपको फ्लॉस भी करनी होगी दांतों के बीच के स्पेस। जनरली आपका केरिज वहीं से स्टार्ट होगा, सड़न जो है, अब जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जब एक्सरे करेंगे तो देखेंगे कि साइड से एक छोटा सा पिन है, पिन पॉइंट, लेकिन वो जब एक्सरे करते हैं तो देखते हैं ये तो दोनों साइड से पूरा इंगल्फ कर लिया,
3: एक्सरे में जाके पता चलता
4: जी
3: है।
4: तो वो छोटी सी चीज है ना, बहुत ही खतरनाक हो जाती है
3: जी।
4: तो बहुत सारा चीज है इसमें,
3: ब्रश पर ध्यान दें हमारे श्रोता,
4: ब्रश पे, प्रॉपर क्लीनिंग पे, प्रॉपर ओरल हाइजीन पे,
3: अच्छा,
4: ध्यान देना होगा, पूरी तरीके से ध्यान देना होगा।
3: और वैसी चीजों का सेवन अभिभावक अपने बच्चों को कराएं जो दांतों में चिपके नहीं,
4: अक्सर स्टिकी अमाउंट, हाँ, आपका हाँ, कहना सही है,
3: हाँ,
4: स्टिकी अमाउंट मतलब कि जो चिपक जाए,
3: हाँ,
4: चिपक कर और ज्यादा देर तक रहे। वैसे चीजों को आप देखिए, सुगरी आइटम्स जितना भी हो गया, चाहे वो पैकेट में हो चाहे वो नॉन पैकेट, ठीक है, उससे बचा जाए। ऐसे भी आजकल जमाने में जो हेल्थ केयर का लाइफ स्टाइल है ना हम लोग का, वो बहुत ही चेंज हो रहा है दिन ब दिन, तो जितना चीजों से बचा जाए, बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है।
3: तो रात्रि के समय में हमारे श्रोता क्या कर सकते हैं?
4: रात्रि के समय में बिल्कुल मैं तो वही कहूंगा कि सबसे पहले कि आप अगर जब भी खाते पीते हैं उसके बाद आप जरूर एक बार ब्रश करें जी। ब्रश करने के बाद और एक बार आप क्या करें, अगर बहुत ज्यादा जिनका देखिएगा कि मसूड़े का प्रॉब्लम होता है, जनरली हमारे गांव वगैरह इलाके में जाइएगा तो मसूड़ा फूला हुआ है वगैरह वगैरह, तो आपको क्या करना है कि मैं एकदम प्रॉपर घरेलू उपाय बता रहा हूँ, गुनगुना पानी लेना है, चुटकी भर नमक लेना है, और उससे ना दिन में आप 3 से 4 बार कुल्ला करिए, महीने भर आप करिएगा, दिन से मतलब महीने भर में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। सुने होंगे ना कि कोई कोई क्या होता है कि आपको लवंग लगा दबा लेता है, कुछ कुछ घरेलू उपाय हैं जिससे काम होता है, ठीक है। मैं कहूंगा कि इन सारी चीजों को कब आपको इस्तेमाल करना है, जब आपका ट्रीटमेंट का ये नहीं है। एक और चीज है, आजकल लोग दांतों के ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, कब तक ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं?
3: जब तक पूरी तरह सड़ नहीं,
4: जब तक आपका पूरी तरीके से दांत सड़ नहीं जाए, जब आप उससे खा नहीं पाए, असहनीय नहीं हो जाए,
3: तब पहुंचते हैं,
4: तब पहुंचते हैं, और वो बहुत गलत चीज है। आपको पहले बचाना है उस चीज को, और बचाएंगे कैसे, बचाएंगे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। एक कहा जाता है कि हर 6 महीने

0: के निकालने से आंखों की रोशनी जा सकती है, या कहाँ तक सच है?
1: ये बहुत सही सवाल किया आपने।
0: जी
1: ये मतलब अभी भी ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनका यही डर होता है।
0: अच्छा
1: उनका डर ये होता है ना, अगर आप बोले कि ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं है, कई लोग जैसे गार्जियन आ गए या फिर जो भी आते हैं उनका कहना होता है कि दांत निकलवाने से क्या आंख का रोशनी चला जाता है क्या?
0: हाँ
1: वो ऐसे डर के पूछते हैं ना कि
0: हाँ
1: मतलब बहुत असहनीय चीज है।
0: हाँ हाँ
1: लेकिन इसका असल बात यह है कि आप सबसे पहले कि दांत निकालने के कंडीशन में आए तब तो
0: बिल्कुल
1: ठीक है, दांत एकदम सड़ जाता है, जो एक्सरे देखकर बताते हैं कि किस कारण नहीं दांत बच नहीं पाएगा उसमें निकालते हैं। हम लोग का तो अब ऐसा ट्रीटमेंट हो गया है, एडवांस ट्रीटमेंट डेंटल
0: हाँ
1: में, कि आपको दांत को बचाना हम लोग सबसे पहले समझते हैं। दांत मतलब बचाने का 99% लेते हैं, कि
0: अच्छा
1: हम लोग 99% नहीं 100% ट्राई करेंगे कि आपका दांत बच जाए। पर अगर नहीं होता है, अगर वैसा चांस ही नहीं है कि आपका दांत बचे, तो हम लोग को मान लीजिए एक्सट्रैक्ट भी करना है, उस दांत को निकालना भी है सर, तो उसमें क्या है ना, लोगों का ये मिथ हो बन गया है कि दांत निकलवाएंगे ना तो आंख का रोशनी चला जाएगा।
0: जी
1: तो ये देखिए दोनों चीज ना एक अलग एनाटॉमिकल पार्ट्स है, दोनों अलग हैं, ऑर्गन दोनों अलग हैं। ये बात सच है कि ऊपर के जो दांत हैं उनके जो नर्व्स हैं वो आसपास थोड़े बहुत इधर कोरिलेटेड हो सकते हैं, पर वो ऐसा कुछ ऐसा मतलब ये मिथ है,
0: मिथ है।
1: टोटली मिथ है। ऐसा कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आपके एक दांत निकालने से यहाँ का रोशनी वगैरह चला जाएगा। इस बात को सारे लोग जान जाएं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपको इसीलिए बोला जाता है कि हर 6 महीने बाद एक बार आप दांत के डॉक्टर के पास आइए।
0: जी
1: उससे क्या होगा ना कि आपको वहां से डर हटेगा।
0: जी जी
1: मैं तो सभी पेरेंट्स से सबसे ज्यादा गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे को जब वो बच्चा पढ़ने वढ़ने जाने लगे या फिर जब कुछ जानने लगे, तो एक बार डेंटल क्लिनिक, जहां पे भी आप हो, डेंटल क्लिनिक में जाइए और डेंटल क्लिनिक में उनको एक बार हर 6 मंथ पे उनके चेकअप कराइए कि उनकी दांत की कंडीशन क्या है, कैसा है। आप देखते होंगे ना कि किन्हीं लोगों का बचपन में क्या होता है, ग्रोइंग फेज में जनरली
0: जी
1: दांत ना एक साथ आपको बोलेंगे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और वो टेढ़े मेढ़े आप देखेंगे तो फिर उसको आप आते हैं कि 20-25 साल के बाद, तो 20-25 साल के बाद बोलेंगे सर सर इसको ठीक कर दीजिए।
0: जी
1: अब दांत होता है हड्डी के अंदर सर, उसमें एक वो जो ऑर्थो ट्रीटमेंट बोली जाती है उसमें लंबा वक्त लगता है, ठीक है।
0: लेकिन वो भी ठीक कर दिया जाता है।
1: बिल्कुल कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो हो नहीं सकता है ट्रीटमेंट। इसीलिए डेंटल एक आप समझ लीजिए कि एक जनरल फिजिशियंस अलग होते हैं और फिर एक BDS करके MDS करके डेंटल डिपार्टमेंट अलग, इसीलिए स्पेशलाइज्ड अलग बनाया गया है कि इतना स्पेशल चीज है, इस चीज को इतनी खूबसूरत चीज है कि जब इंसान समझेगा, क्योंकि सारा सिस्टम आपके मुंह से चालू होता है
0: बिल्कुल
1: और मुंह में आपको जितना भी आहार लेना है दांतों की वजह से लेना है। और एडवांस ट्रीटमेंट आ गई है सर, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल पे काम होता है, एकदम पेनलेस होता है, बिल्कुल दर्द नहीं होता है। आप जैसे आपने पूछा सवाल एक कि आंख की रोशनी, दूसरा ये आते हैं आपको मैं बता दूं, क्लिनिक में हॉस्पिटल में आप जाएंगे कि दांतों में गंदगी जमी रहती है।
0: जी
1: सच बात तो ये है सर कि पान गुटखे के आदि हैं इस क्षेत्र में लोग, बिल्कुल, तो उससे बहुत ज्यादा गंदगी जमी रहती है। वो लोग आते हैं और आने के बाद कहेंगे कि दांत साफ कर दीजिए,
0: जी
1: तो उस पे दो लेयर होता है, एक को कहते हैं प्लैक, एक को कहते हैं कैलकुलस। वो गंदगी जमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लैक कैलकुलस, तो वो दांतों के ऊपर होता है, दांतों के चारों तरफ होता है। तो उसकी जब हम लोग सफाई करने की बात बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं नहीं, इससे क्या होता है कि दांत हमारा हिल जाएगा। उनको
0: ये
1: ऐसा लगता है कि हम लोग दांतों को वहां से साफ कर रहे हैं।
0: अच्छा
1: नहीं सर, वो दांतों की सफाई
0: गंदगी
1: नहीं होती है, दांतों के ऊपर की गंदगी जो प्लैक और
0: गंदगी है
1: कैलकुलस है,
0: जिसे काई कह सकते हैं आप।
1: जी अगर आप लोकल लैंग्वेज में बोले तो काई कह सकते हैं, उस चीज को हटाकर हम लोग उसको बेहतर कर सकते हैं।
0: जी,
1: जी
0: खास करके ये आपको पान गुटखा में ज्यादा
1: देखिए
0: शिकायत है।
1: पान गुटखा खैनी वगैरह ऐसे भी, आप जब पान गुटखा खैनी की आपने बात की ना, तो सबसे ज्यादा अगर आप अभी देखेंगे ना तो माउथ ओरल कैंसर, आपको किसी का भी कैंसर दिखेगा ना तो ज्यादातर मुंह का कैंसर दिखता है सर,
0: जी बिल्कुल
1: और ओरल कैंसर का कारण यही होता है, गुटखा पान तंबाकू। वहां पे देखिए सर पैकेट पे लिखा हुआ रहता है कि ये आपको हानिकारक है, पर आदि जो हो जाते हैं लोग उनको मैं समझाना चाहूंगा कि ये चीज छोड़िए, ये आपको रोज ना रोज जिंदगी को, आपके जिंदगी को कम कर रहा है।
0: जी
1: आप बोलते हैं कि सिर्फ सिगरेट से होता है, सिगरेट तो नुकसान है, फेफड़े में आपके जा रहा है उसका धुआं, लेकिन आप देख रहे हैं खैनी है, पान है, गुटखा, कोई भी ऐसा नशा का चीज, मतलब वो आपके पूरे हेल्थ पे असर कर रहा है सर, हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, उससे बचा जाए।
0: दांत निकालने के बाद कैंसर हो जाना, यह कहां तक सच है?
1: देखिए अभी जैसे अभी हम लोग मिथ पे डिस्कशन कर रहे थे,

0: दांत निकालने के बाद कैंसर होना, ये एक तरह से ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। कोई रिलेशन ही नहीं है सर। जब आप दांत का ट्रीटमेंट कराने जाते होंगे तो आपको डॉक्टर पहले डायग्नोस करता होगा, देखता है, उसके बाद एक्सरे करता है,
1: बिल्कुल
0: ठीक है। एक्सरे में आपको कंडीशन बताता होगा कि हाँ भाई पेशेंट जो भी है, ब्ला ब्ला पेशेंट है, उनको क्या है कि आपका ये पेशेंट इस कारण वजह ये इन्फेक्शन है, ये केरीज है, ठीक है, यहाँ सड़न है, इसके वजह से हमको दांत निकालना पड़ रहा है,
1: जी
0: ठीक है। अगर कोई वैसा केस होता है कि नहीं इसमें आपको कैंसर का चांस है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे टेस्ट होते हैं, बायोप्सी वगैरह, FNAC वगैरह टेस्ट होते हैं सर, ठीक है। तो डॉक्टर भी नहीं रिस्क लेगा इस कंडीशन में,
1: अच्छा
0: ठीक है, कि आपके दांत के, आपको दांत निकालने से पहले वो चीज़ बताएगा,
1: अच्छा
0: ठीक है। किसी के लाइफ से बड़ा ट्रीटमेंट तो नहीं है ना।
1: और निकाल देने के बाद
0: ट्रीटमेंट जो है वो बचाने के लिए है।
1: जी बिल्कुल
0: तो आपका कहना बिल्कुल, आपका जायज क्वेश्चन है कि क्या निकाल देने के बाद कैंसर होता है? नहीं,
1: नहीं देता
0: बिल्कुल इसकी कोई चांस नहीं है। मैं आपको बता दूं, पहला एक मिथ ये हुआ कि दांत निकलवाने से आंख की रोशनी
1: जी
0: नहीं जाती है, आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा, दांत साफ कराने से आपके दांत हिलते नहीं हैं,
1: जी
0: ठीक है,
1: बिल्कुल
0: ऊपर की गंदगी हटती है। तीसरा, दांत निकालने से कोई कैंसर नहीं होता है सर, ऐसा कोई कैंसर नहीं होता है, ठीक है।
1: अच्छा
0: तो ये सारे मिथ हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरे को खुशी हो रही है कि आज हजारों लोग मेरे द्वारा इस चीज़ की भ्रांति को, मिथ को अपने आप को दूर करें। और बिल्कुल एक बार जहाँ पे भी हैं आप, एक बार जाइए और कंसल्ट करिए और अपनी दांतों की हालत को देखिए।
1: जी, बहुत से हमारे श्रोता हैं जो दांतों की बातों को अनदेखा कर देते हैं और वो तब पहुंचते हैं रोग काफी फैल चुका होता है और उस स्थिति में फिर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे

0: ठीक है। और अगर बोलूँ तो फिर आपको जो ऐसे क्षेत्र में, हमारे जो क्षेत्र है उसमें लोग पान गुटखा वगैरह, ठीक है, तो पान गुटखा वगैरह से लोग बचें, ये सारी चीज़ हैं जो आप ध्यान दें और इन सारी बातों पर ध्यान दें। हर 6 महीने में एक बार आप डॉक्टर के पास जाइए, डेंटल सर्जन के पास जाइए, डेंटिस्ट के पास जाइए, ठीक है, और उनसे अपना कंसल्ट कराइए। कंसल्टेशन होगा तो बेहतर होगा सर।
1: जी,
0: जी बिल्कुल।
1: आपसे गढ़वा जिले के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर ताहा रियाज, आप हमारे स्टूडियो में आए और दांतों की सुरक्षा से संबंधित, उसकी सड़न से संबंधित जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।
0: धन्यवाद, धन्यवाद ऑल इंडिया रेडियो, धन्यवाद।

दांतों में सड़न, कारण और बचाव। इस विषय पर अभी आपने सुना डॉक्टर ताहा रियाज से ली गई भेंटवार्ता, जो कि गढ़वा के दंत चिकित्सक हैं। इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। इसी भेंटवार्ता के साथ कल्याणी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं बाजीगर फिल्म के गीत से, जिसे गाया है विनोद राठौर और अलका याग्निक ने। गीत के बोल जफर गोरखपुरी के हैं, संगीत दिया है अनु मल्लिक ने।

आज का गुंडा राज। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के बोल थे, संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। अब आइए सुनते हैं दिल का क्या कसूर। इस फिल्म का गीत कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में। मदन पाल के बोल हैं, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अब आइए सुनते हैं जतिन ललित के संगीत निर्देशन में महेंद्र देहलवी और देव कोहली की रचना, आवाज़ें कुमार सानू, अलका याग्निक और जॉली मुखर्जी की है और फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन।

खूबसूरत फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। संजय छेल के गीत थे, संगीत दिया था जतिन ललित ने। अब आइए सुनते हैं फूल और कांटे। इस फिल्म से आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया

0: तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमेरिका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
1: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा, तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल

0: परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है यूपीआई के जरिए। तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखे तो यूपीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
1: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India-New Zealand free trade agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to

0: प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सिलियरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। इस माहदे पर महकमा दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र के शहर पुणे में कायम इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की एक भारतीय फर्म है। ऑक्सिलियरी पावर यूनिट APUs आग को कंट्रोल करने के निजाम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाईजेशन सिस्टम और टैंक के दीगर आलात के लिए बिजली पैदा करने का एक मुतबादिल वसीला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उसूलियाबी के सिलसिले में ये माहदा मुसल्ला प्लेटफॉर्म्स के लिए कलीदी नौयत के ज़ैली निज़ामों की मुल्क में ही तैयारी की जानिब एक अहम कदम है और ये सनत की क़यादत वाली तहकीक तरक्की के मेक टू को जाहिर करता है। मुल्क में ही तैयार APUs की शमूलियत भारतीय फौज की मैकेनिकल तश्कील की कार्रवाई पर मबनी तैयारी, भरोसेमंदी और पायदारी को मजीद मुस्तहकम करेगी। इससे निज़ाम की मुल्की इख्तिरात को पैदावार और शमूलियत में तब्दील करने की असर पजीरी का इजहार होता है। ये माहिदा हुकूमत के विकसित भारत 2047 के विजन से वाबस्ता है और दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता की हुसूलियाबी की जानिब एक काबिल जिक्र संग मील है। साथ ही ये एक मुजाहिमत खुदकफील और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय दिफाई सनत की तश्कील की जानिब भी एक अहम संग मील है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए कौनैन हैदर।
0: भारत की कौमी शाहराओं की अथॉरिटी NHAI ने इंतहाई तेज रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराओं की मनसूबाबंदी और डिजाइनिंग के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने बताया कि इन रहनुमा खतूत का इतलाक आने वाली तमाम 4 और 6 लेन वाली ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इंतहाई तेज रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराओं पर होगा। इन रहनुमा खतूत के तहत इंतहाई तेज रफ्तार कौमी शाहराओं की राहदारी की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की तैयारी के लिए मेयार में यकसानियत लाने की बात कही गई है। इनसे कौमी शाहरा के पूरे नेटवर्क में तकनीकी मेयार के एतबार से ज्यादा इस्तकलाल, सड़क तहफ्फुज में मजबूती और ऑपरेशनल सलाहियत में बेहतरी भी आएगी। वजारत ने कहा कि ये रहनुमा खतूत हुकूमत के तवील मुद्दती कलीदी लाहे अमल से मुताबिकत रखते हैं, जिसके तहत विकसित भारत 2047 के तहत रसाई को कंट्रोल करने वाले इंतहाई तेज रफ्तार 50,000 किलोमीटर राहदारी की तैयारी की बात कही गई है, जिससे कनेक्टिविटी को फरोग मिलेगा और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वो दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के भाई थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मुआशरे की खिदमत अंजाम देने के लिए उनकी कोशिशों को आने वाली नस्लें हमेशा सराहेंगी। वज़ीर आज़म ने दुबई के शाही ख़ानदान और आवाम से ताज़ियत का भी इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि भारत दुबई के शाही खानदान और आवाम के इस गम में शरीक है। ये आकाशवाणी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफ़र जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अनथक अज़्म से इबारत है, जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के ज़रिए ये अज़्म लोगों की ज़िंदगियों में तब्दील ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खुसूसी सीरीज के तहत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के जरिए लाई गई तब्दीली का जायजा पेश किया जा रहा है।
2: डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा मुल्कों के हुक्मरानी लेन देन और खिदमात की फराहमी के तरीक़ेकार को नई शक्ल दे रहा है। भारत डिजिटल सिस्टम के सबसे बड़े इस्तेमाल करने वाले से लेकर आबादी के तनासुब के मुताबिक डिजिटल आर्किटेक्चर के मेमार के तौर पर उभरा है। भारत ने मुश्तरका डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 सतहें तश्कील दी हैं और हर सतह को दूसरों के जरिए तामीर के लिए खुला रखा है। इसके तहत पहली सतह आधार है, जो काबिल तस्दीक शनाख्त फराहम करता है। वहीं UPI रकम की 2 बैंक खातों के दरमियान फौरी मुंतकली को मुमकिन बनाता है और अदायगी करने वाले शख्स पर किसी तरह का चार्ज आयद नहीं होता। इसी तरह अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क शहरी को अपने मालियाती रिकॉर्ड अपनी मर्जी से कर्ज देने वाले या बीमा करने वाले के साथ साझा करने की भी इजाजत देता है। मुंबई में इस महीने मुनाकिद हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट

0: 2026 से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 साल काबिल जिक्र सफर और उसकी बढ़ती आलमी पहुंच को नुमाया किया था। डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के साथ भारत का सफर डिजिटल दौर में तरक्की और हुक्मरानी की जानिब बड़े पैमाने पर मुंतकली को जाहिर करता है। जो कभी मालियाती शमूलियत और पहचान तक रसाई के लिए शुरू हुआ था, वो आज जामे और इंटर ऑपरेबल तरीक़ाकार बन गया है, जो इकतसादी सरगर्मी, अवामी खिदमत की फराहमी और इदारा जाती सलाहियत को मुमकिन बना रहा है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरीन 90 स्टेट दूमा के लिए हुए इंतखाबात में बरसर इख्तदार यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 57.83% वोटों के साथ कामयाबी हासिल की है। ये इंतखाबी नतीजे सदर व्लादिमिर पुतिन को इख्तदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। मॉस्को में आज अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन की चेयरपर्सन एला पामफिलोवा ने कहा कि 95% वोटों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों से आगे है। दूसरे मकाम पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन है, जिसने तकरीबन 14% वोट हासिल किए हैं। तीसरे मकाम पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया है, जो तकरीबन 9% वोट ही हासिल कर सकी। रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन के मुताबिक जुमे से इतवार के रोज तक हुए इन इंतखाबात में 59% राय दही हुई, जो कि साल 2021 के तकरीबन 52% से ज्यादा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 3 रोजा दौरे पर आज गुजरात पहुंच गई हैं। अपने दौरे में सदर जमहूरिया केवड़िया के एकता नगर और वडोदरा में अहम तकरीबात में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया कल शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म इनामात अता करेंगी। एकता नगर इन बावकार इनामात की पहली मरतबा मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इत्तला तो नशरियात की वजारत ने भारतीय फिल्मों की गुनागुनियत को जश्न मनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के तहत मुल्क के आला तरीन फिल्म इनामात अता किए जाने की तकरीब को कौमी राजधानी से आगे ले जाते हुए दूसरे मकाम पर मुनक़द करने का तारीखी फैसला लिया है। भारत ने जापान के एची नागोया में जारी एशियाई खेलों में निशानेबाजी में 3 तमगे जीते हैं। मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल इंफरादी मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने चांदी का तमगा, जबकि रुद्राक्ष पाटिल ने कांसे का तमगा जीता। भारत ने मर्दों के टीम मुकाबले में भी चांदी का तमगा जीता है। कल एलाविनिल वलारिवन ने ख्वातीन के इनफरादी 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया था। भारत ने ख्वातीन के टीम मुकाबले में भी चांदी का तमगा जीता है। इस तरह निशानेबाजी में 4 चांदी के और 1 कांसे के तमगे के साथ कुल 5 तमगे जीते हैं। सुचिका तरियल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में तमगा जीता, जो भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर हिमांशु ढिल्लन को मुबारकबाद दी है। भारत ने आज जापान के इचिनोमिया सिटी म्यूनिसिपल जिम्नेजियम में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त देकर मर्दों के बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में अपना मकाम बना लिया है। लक्ष्य सेन ने अयमिन एमन इब्न को 21-4, 21-12 से, आयुष शेट्टी ने गौरव सिंघा को 21-4, 21-13 से और किदांबी श्रीकांत ने जुमारुल अमन को 21-15 और 21-9 से शिकस्त दी। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती माहिदा अगले माह की 20 तारीख से नाफिज होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इससे MSMEs में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और किसानों को फायदा होगा। भारत और कनाडा ने जामे इक्तसादी शराकत दारी माहिदे के लिए तेजी के साथ मुजाकरात करने से इतफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। वजारत दिफा ने पुणे में कायम एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक माहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सिलियरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। NHAI ने तमाम कौमी शाहराओं के लिए सड़क तहफ़ और सलाहियत को फरोग देने की गरज से नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: यह है विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी अभिनेत्री जो टिपिकल बॉलीवुड के रोल भी उतनी ही कुशलता से करती हैं जितनी कुशलता से वो गंभीर भूमिकाएं निभाती हैं।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें करीना कपूर की। करीना कपूर जाने माने अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता की बेटी हैं। उनके दादा राज कपूर शोमैन के नाम से विख्यात थे, यानी कपूर खानदान का रोशन चिराग हैं करीना। उनकी बहन करिश्मा कपूर पहले ही फिल्मों में आ चुकी थीं और करीना कपूर का फिल्मों में आगमन अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ सन 2000 में हुआ, जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी के जरिए।

जैसा कि मैंने आपसे कहा, करीना कपूर ने एक तरफ टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन वाली भूमिकाएं बहुत खूबी से निभाई हैं, दूसरी तरफ उनकी कुछ गंभीर फिल्में भी आई हैं, जैसे सुधीर मिश्रा की फिल्म चमेली, जिसके जरिए पहली बार वो एक गंभीर अभिनेत्री के तौर पर जानी गईं।

विशाल भारद्वाज की फिल्म ओंकारा में उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार बड़ी खूबी से निभाया था। साल 2007 में आई वो फिल्म कैसे भूल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। इस फिल्म के निर्देशक थे इम्तियाज अली। इस फिल्म में करीना कपूर के साथ नायक थे शाहिद कपूर और ये फिल्म थी जब वी मेट।

रिफ्यूजी के बाद करीना कपूर की फिल्म आई मुझे कुछ कहना है। इसके अलावा उनकी कुछ और महत्वपूर्ण फिल्में हैं अजनबी, यादें और कभी खुशी कभी गम।

करीना कपूर ने अपने अभिनय के जरिए अपना लोहा मनवाया है और आज वो मुंबई फिल्म जगत की एक प्रतिभाशाली चोटी की अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।

0: बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो।
1: करीना कपूर अपनी भूमिकाओं का चुनाव बहुत सोच समझकर करती हैं। जाहिर है कि ऐसे में उनकी गिनी चुनी फिल्में आ रही हैं, लेकिन इन फिल्मों में वो अपने चाहने वालों को निराश नहीं कर रही हैं। जैसे धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म कुर्बान में उन्होंने बहुत सशक्त अभिनय किया।

साल 2009-2010 की बेहद चर्चित फिल्म रही है थ्री इडियट्स। विधु विनोद चोपड़ा का निर्माण और राजकुमार हीरानी का निर्देशन। थ्री इडियट्स जहां आमिर खान के लिए जानी जाती है, वहीं करीना कपूर की एक मस्त भूमिका के लिए भी याद की जाती है।

करीना कपूर ने बड़ी मेहनत के साथ कपूर खानदान के अभिनय की परंपरा को आगे बढ़ाया है। वो फिल्म संसार की सिर्फ सजीली हीरोइन नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए बिल्कुल जाना जाता है। एक मैं और एक तू, जिसमें वो इमरान खान के साथ नजर आईं, शाहरुख खान की फिल्म रावण, निर्देशक अनुभव सिन्हा।

फिल्म सत्याग्रह। इसे प्रकाश झा ने निर्देशित किया है। साल 2014 में करीना कपूर की फिल्म आई सिंघम रिटर्न्स। इसके निर्देशक थे रोहित शेट्टी।

सैफ अली खान से ब्याह रचाने के बाद करीना कपूर अब जरा चुनिंदा फिल्में ही करती हैं। उनकी धूम धड़ाका मचाने वाली फिल्म रही है सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान।

2016 में करीना कपूर ने फिल्म उड़ता पंजाब में काम किया। इस फिल्म के निर्देशक थे अभिषेक चौबे और इस फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। साल 2018 में करीना कपूर ने शशांक घोष की फिल्म की वीरे

0: साल 2020 में करीना कपूर ने फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नैना की भूमिका निभाई थी। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री करीना कपूर पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईची नागोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का

0: शानदार निशाना। 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशू में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपिक टेक्रो में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगू के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया। अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईची नागोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारतीय एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेइन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसीलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुख करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
1: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ माने। इसी कंपटीशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कंपटीशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वाज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कंपटीशन टू चाइनाज जांग जियाओ। मगर रुद्राक्ष पाटिल हैड टू बी सैटिस्फाइड विद द ब्रॉन्ज, वाइल हिमांशु ढिल्लन जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे थे, उनका स्कोर 252.4 से उनको मिला एक सिल्वर मेडल। सो अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द इंडियन शूटर्स सो फार। दे हैव बीन सेटिंग आईची नगोया ऑन फायर और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं। याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून, होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नगोया एशियन गेम्स 2026।
0: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
2: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया। आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है। कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला। वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की। भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है। भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं। भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था। इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है।
0: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट।
3: द इंडियन शटलर्स गेव अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 टू हेल्प इंडिया एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स। लक्ष्य सेन गेव इंडिया द परफेक्ट स्टार्ट अगेंस्ट बांग्लादेश इन द मेन्स टीम फर्स्ट राउंड टाई, डिफीटिंग एमान जमान इन स्ट्रेट गेम्स 21-4, 21-12 एंड thereby putting इंडिया अहेड इन द टाई। Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurab Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
0: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
2: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 2 मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 2 मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने 1-1 गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने 1 गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में 2 गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार 2 मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
0: चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
3: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10 swimmer medal race. China's Zhao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh, failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4 into 200 meter freestyle relay mein bhi Bharatiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. To agar dekhe overall, to Bharatiya swimmers ke liye aaj ka din bahut hi nirasha जनक साबित हुआ ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 में।
0: अब पानी के खेल से निकलकर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टेकराव। सेपेक टेकराव में पुरुष टीम रेगू में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
4: भारत के पुरुष सेपेक टेकराव रेगू टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टेकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगू प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टेकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीती है और हर मैच में 15-15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगू मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीतकर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टेकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगू में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टेकराव में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
0: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही है साक्षी मांडवाल।
3: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपेंड टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्री जाकुला सील्ड द विक्ट्री विद स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड देयर बाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। And then came Shreeja Kula, who was able to convert that 2-0 commanding position to a 3-0 victory, thereby sealing India's win in our favor. India will now be facing Thailand tomorrow in the pre-quarterfinal match. Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name, 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Mohammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0, and thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
0: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगनन टाम्बी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रही। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आध्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में 2 मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
1: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya, the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action mein the India ke liye aur unka group stage matches mein pehle match mein Mongolia ko haraya comfortably. Dusre match mein bhi jeet mili Adhya aur Jay ko. Unhone haraya Cambodia ko, magar jo teesra match tha wo kaante ki takkar thi South Korea ke khilaf. Us match mein haar ka samna karna pada hamari Indian team ko. Magar हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड ऑफ 16 स्टेज में। एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आद्या और जे अपना पांचवा मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
4: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है।
0: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। नीचे पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं सनम फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। समीर के बोल हैं, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

अगला गाना हमने लिया है प्रेम रोग, इस फिल्म से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ें हैं। संतोष आनंद के बोल हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब आइए सुनते हैं हम हैं राही प्यार के, इस फिल्म से। आवाज़ साधना सरगम की है, समीर के बोल हैं, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

मुझसे शादी करेगी इस फिल्म को कभी आपने सुना। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में जली शेरवानी के बोल थे, संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। अब आइए सुनते हैं। एक दूजे के लिए इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं राम अवतार इस फिल्म से अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज उदित नारायण की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।